0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक जाना।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायंतियम सामगाह ध्यानावस्थित तदगति।

मॉरिसस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्माष्टमी का महान पावन पर्व मना रहे हैं। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट जो देन है वो है भगवद गीता। श्रोताओं, साक्षात परब्रह्म के मुख से निकलने वाला ये अमृत अपने रूप में अद्वितीय है। आध्यात्मिक विकास के लिए इससे बढ़कर के कोई ज्ञानकोश नहीं है। सब कुछ छोड़ करके यदि कोई भगवद गीता की ही आराधना करे तो श्रोताओं, संसार की कोई शक्ति उसे अतिक्रांत नहीं कर सकती। भारतीय आस्तिक जन तो इसका समादर करते ही है, नास्तिक भी इसके सामने नतमस्तक होते हैं। श्रोताओं, जो हिंदू नहीं है वो भी भगवद गीता के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। विदेशी भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके गौरव को देखते हुए भगवद गीता तथा उसके उपदेशक के आविर्भाव काल के संबंध में अनेक लोगों को भ्रम हो जाता है। कुछ विदेशियों ने तो लिखा है कि भगवद गीता जो है और श्री कृष्ण या भगवान राम से पहले, भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान राम से पहले हुए थे। ये कोरी कल्पना का आधार है श्रोताओं, इस पर जो है और किसी भी तरह से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार सतयुग में नहीं हुआ था, उनका अवतार तो द्वापर युग में हुआ था। भगवद गीता का उपदेश भी और उसी समय हुआ था, क्योंकि भगवान राम का अवतार तो त्रेता युग में हुआ था, एक युग पहले। लेकिन फिर भी यदि वे भगवद गीता का आदर करते हैं, जिसका आदर करना अपरिहार्य है, तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भगवद गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ये भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। यदि गीता ज्ञान सत्य है तो श्रोता, महाभारत अर्जुन और वेदव्यास को झुठलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार समय की श्रृंखला अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि महाभारत के बाद महाराज परीक्षित राजा हुए, उनके समय में ही कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग को प्रारंभ हुए अभी 5000 और 100 कुछ वर्ष बीते हुए हैं। इसके पश्चात, इसके पूर्व श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में और महाभारत के बाद का समय जो है पंचांगों में भी तो प्राप्त होता है। पंचांग में युधिष्ठिर संवत लिखा हुआ रहता है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण को और कुछ लोग जो है अवतार न मान करके महापुरुष मानते हैं, फिर भी उन्हें योगीराज, नीतिज्ञ, शिरोमणि, उच्च कोटि के दार्शनिक कहते हैं। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता की महत्ता के सामने नतमस्तक तो वे भी होते ही रहते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम जयंती मना रहे हैं। श्रोताओं, ये हमारे लिए और बहुत दिव्य बात है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका जो बुद्धि कौशल्य है ना, वो बहुत अद्भुत है। जो उनका बुद्धि जो धर्म को सुलझाने में कितने, और वो पटु थे, ज्ञान उनके और मस्तिष्क में और कूट कूट करके भरा हुआ था। ऐश्वर्य उनका जो तीसरा रूप है, वैराग्य जो है और वो जो बुद्धि का चौथा रूप है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण राग द्वेष के और विरोधी रूप है। श्रोताओं, वैराग्य बुद्धि की पूर्णता तब होती है जब संसार में रहता हुआ भी सब में अनासक्त रहे। जैसे कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है, संसार छोड़ करके अलग हो जाना अभ्यासवश अपेक्षाकृत कुछ सरल है, परंतु संसार

में रहते हुए उसमें एकदम निर्लिप्त रहना अत्यंत कठिन है। यही है शुद्ध ऐश्वर्य धर्म। एक तरफ तो वे नंद यशोदा के स्नेह पास और गोपियों के प्रेम में इस प्रकार बंधे हुए प्रतीत होते हैं और उनके बिना एक क्षण भी रहना कठिन प्रतीत होता है श्रोताओं, किंतु दूसरी ओर अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद एक बार भी वृंदावन वापस नहीं आए। ये जो है और ये आदर्श है, उनसे जो है एक बार गोपी प्रेम नहीं करता उसका क्या है? जब उन्होंने अपने कुटुंबी यादवों को भी उदंड होते हुए देखा, उनके द्वारा अशांति की संभावना हुई तो उनका भी और उन्होंने विनाश तत्काल विनाश कर दिया। श्रोताओं, राग द्वेष शून्यता का दूसरा नाम समता है, जो उनके चरित्र में ओतप्रोत है। हर एक यही समझता है कि भगवान कृष्ण मेरे हैं, किंतु वे किसी एक के नहीं थे श्रोताओं, सबके थे और सबसे स्वतंत्र भी थे। महाभारत युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मांगने के लिए जाते हैं और दोनों का ही जो है और भगवान कृष्ण जो है मनोरथ परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है श्रोताओं कि भगवान के जो लक्षण बतलाए गए हैं वे सब भगवान कृष्ण में ही मौजूद हैं। कहा भी गया है कि वैराग्यम ज्ञानम ऐश्वर्यम धर्म चेत्यात्म बुद्धयः बुद्धिश्री यश्चैव षड्वे भागवतो भगाः। इसमें यश और श्री दो बाह्य लक्षण हैं, ये भी उनके अनुगामी हैं। अन्य की चर्चा भी अभी मैंने संक्षिप्त रूप में कही, तो भगवद गीता में श्रोताओं इन सब विषयों का विशद वर्णन है कि बुद्धि योग ही भगवद गीता का मुख्य विषय है, जिसमें वैराग्य योग, ज्ञान योग, ऐश्वर्य योग और धर्म योग क्रम पूर्वक आ गए हैं। योग साधना से जीवों में भी सात्विक बुद्धि के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किंतु किसी मात्रा में होते हैं और प्रयत्न करने पर होते हैं श्रोताओं, परंतु ईश्वर में स्वतः सिद्ध और पूर्ण होते हैं। भाई, भगवान के योग साधन रूप का वर्णन तो कहीं भी नहीं है, अतः यही कहना पड़ता है कि बुद्धि लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध है, इसलिए उन्हें अच्युत भगवान ईश्वर का पूर्ण अवतार और साक्षात परमेश्वर मानना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण में अव्यय पुरुष का आचरण है, अव्यय पुरुष के पांचों लक्षण उनमें सन्निहित हैं श्रोताओं। भगवद गीता में उन्होंने अपने को अव्यय पुरुष भी कहा। अव्यय पुरुष की मुख्य पांच कलाएं हैं आनंद, विज्ञान, मन उनमें सन्निहित हैं। वाक शक्ति से उन्होंने अनेक बार काम किया। भगवद गीता की घटना प्रसिद्ध है, युद्ध से पलायन करते हुए अर्जुन को उनकी वाक शक्ति ने ही स्वधर्म पालन में लगाया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह कह करके भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन की बुद्धि को पलट करके रख दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता का हम अनुशीलन करें, उनका अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही शांति।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 2 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं।
2: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
3: नमस्कार आदाब। कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद द्वारा पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब या ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को नए कानून के तहत इस जुर्म के लिए गाड़ियों को भी जब्त किया जा सकता है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने

0: कहा कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना नहीं या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है और इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी और पुलिस अफसरों के पास कैमरे भी होंगे। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेक्सा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई है। 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। हर साल की तरह हजारों मॉरिशन 8 सितंबर को सेंट क्वामे फौतलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों का मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय ऑसामाविक पेलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजिस एक फ्रैटर्निल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पोलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टली के बिशप के संदेश से प्रेरित है। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकम ने कहा कि अब नए हुरमुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई और एक बच्चा शामिल था। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की बारिश होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो तथा पूर्व के एक हिस्से में रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:17 पर और आज शाम को 6:01 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
4: बुधवार 2 सितंबर सवेरे के 6:04। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें और भोर की बेला इस प्रोग्राम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। चलिए साथ मिलकर इस नए दिन का आरंभ करते हैं। मन में यही आशा, यही प्रार्थना लिए कि ईश्वर की अपार कृपा हमारे जीवन पर सदा बनी रहे और ईश्वर जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और आप सभी श्रोताओं का एक बार दिल से स्वागत हम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों में हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि इस सवेरे की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी आप सभी के लिए और ईश्वर की कृपा से आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हो। आपको बता दें कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, फिर जो है उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो आइए, आज है बुधवार, तो इस बुधवार की भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, जिसे हम सुनेंगे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।

आलयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्घ रात्रि के समय वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। ये सभी योग सर्वदा नहीं मिलते, अतः अधिकांश उपासक इनमें से अपने अपने अभीष्ट योग का ग्रहण करते हैं, परंतु सिद्धांत रूप से अर्घ रात्रि में मिलने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। यह त्यौहार हिंदू समाज का अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। इसकी लोक प्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि केवल जन्माष्टमी कहने पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बोध हो जाता है। सनातन धर्म अनुयायी नर नारी अबला वृद्ध इसका पालन कर अपने को पवित्र मनाते हैं, अपने को पवित्र मानते हैं। जिस समारोह और भक्ति मय उत्साह के साथ यह महोत्सव मनाया जाता है वह सचमुच दर्शनीय होता है। मंदिरों में विचित्र झंकियां, भगवान की मूर्ति का मनमोहक श्रृंगार, भक्ति भावना विभोर नर नारियों का अखंड कीर्तन, भागवत कथा प्रवचन और श्री कृष्ण चरित्र संबंधित विविध नाटकों का आयोजन आदि इस प्रकार के कार्य करते हैं। जिन्होंने इस धार्मिक पर्व को जन साधारण का सुरुचि संपन्न त्योहार बना दिया है। महीनों पहले से लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं कि जन्माष्टमी के समय कौन सा रूप से हम मनाएंगे, सत्संग नाटक आदि किस रूप से किस भाव से उस रात्रि का जागरण करते हैं और अति उत्तम से मनाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रमुख 10 अवतारों में सर्व प्रमुख है। अन्य अवतार पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार नहीं माने जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 12 कलाओं का अवतार माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण जी को 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा जाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए 10 अवतार में भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख अवतार माना जाता है। वो 10 अवतार मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, पशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार के समान 10 होता है। उनके पूर्व ब्रह्म घोषित किए जाने का आधार नर रूप में किया गया उनका क्रिया कलाप भी है। उन्होंने अधर्म का उन्मूलन कर धर्म की स्थापना की, अन्याय और असत्य को दबाकर न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा की। गीता में स्वयं

कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युग्धानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की उन्नति होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण जी का अवतार अद्वितीय रूप से हुआ। यह उस समय की हत्याचार का ज्वलंत उदाहरण है कि उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। उनके माता पिता बहुत दिन पहले से ही जेल में याचना भुगत रहे थे, जबकि वे कंस के बहन और बनहोई थे। जन्मते ही उन्हें चुपचाप गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचाया गया। अर्घ रात्रि के समय चारों ओर भयानक सन्नाटा, आकाश में घंघोर घटाओं का राज्य इस प्रकार प्रतीत हो समाज का काला चित्र प्रस्तुत कर रही थी। कुशल की काली माँ चारों ओर व्याप्त थी। जनता के हृदय में निराशा की घटाएं घिरी हुई थी। लोग असहाय होकर के सन्नाटे की दशा में पड़े हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और अर्घ रात्रि में जब कारागार में भगवान अवतरित हुए तब वहाँ से लेकर के गोकुल में उसको ले गया गया। और जब गोकुल में नंद के पास जा रहे थे तो रात्रि में नदी पार करना पड़ा और उस नदी में जब नंद महाराज के पास जाने के लिए वसुदेव जी महाराज ने टुकड़ी में भगवान को लेकर के जा रहे थे यमुना पार करने के लिए, जैसे जैसे नदी में प्रवेश कर रहे हैं नदी उमड़ रही थी, तब वहाँ पर एक बहुत सुंदर भजन है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं और किस प्रकार से जब नदी उमड़ रही हैं तो वसुदेव जी महाराज उसके मुखड़ा पर जल आ रहा है, तो भगवान ने सोचा ये तो डूब जाएगा और डूबने को बचाने के लिए वो अपना पैर को लेकर के जल में छुआते हैं तब जा कर के नदी जो है शांत होती है। तो वहीं पर वो प्रस्तुत सत्संग में बहुत सुंदर से कहा गया, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, यह मंत्र सदा सामरते जा, आए हैं तू यह संसार में सफल जन्म तू करते जा, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, यह मंत्र सदा सामरते जा, आए हैं तू यह संसार में सफल जन्म तू करते जा। इस प्रकार से यमुना पार करने के बाद वसुदेव जी महाराज ने अर्घ रात्रि के समय नंद महाराज के यहाँ गया। चारों सभी लोग सोए हुए थे। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण को रख करके योग माया को लेकर के पुनः पात्र कारागार में चले आते हैं। और इसी प्रकार से जितने वैष्णव लोग हैं एक दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि अर्घ रात्रि में कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जब अर्घ रात्रि में तो इसीलिए दो तिथि में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, नंद महाराज के यहाँ गोकुल में और वहाँ पर कारागार में। कारागार में अर्घ रात्रि को मनाया जाता है और गोकुल में एक दिन बाद सुबह पता चलता है कि भगवान का जन्म हुआ है। इस दो तिथि में हम सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन अनेक अलौकिक विशेषताओं

तत्वों से युक्त है। अन्य अवतारों में किसी एक आदर्श की स्थापना की गई है, किंतु भगवान श्री कृष्ण जीवन, कौशला, सौंदर्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज, सामान्य जन तथा ज्ञानी पुरुष आदि से संबंधित विविध क्षेत्रों में समान रूप से व्याप्त है। वे सत्य के अवतार पर सुंदरता के साथ कल्याण के नियामक थे। उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत समन्वय था। उनके व्यवहार की गहना और आचरण की रहस्यात्मकता समझ पाना सबके वश की बात नहीं है। वे हमेशा कल्याण धारा में थे। सबके कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति।

0: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। क्लोजेल फिनिक्स, यहाँ पर, यहाँ के आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, खासकर एवेन्यू रेमी ओलिए, इंदिरा गांधी रोड, क्लोजेल रोड, क्लोजेल लेन नंबर एक, इंडिपेंडेंस स्ट्रीट, शिवानंदा एवेन्यू, महंत कबीर रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शुक्रवार 4 सितंबर को, यहाँ पर शुक्रवार 4 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच, सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सैंखवा के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, सैंखवा के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक एमिली बासेट, सैमारी, एपास सैमारी, रूट नंबर एक नंबर दो, मौसलमा लावाली, सोफिया लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 2 सितंबर को दिन के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रॉयल रोड फिनिक्स और आसपास के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 3 सितंबर को दोपहर के 1 से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

जी हाँ, जीवन है तो जीवन में सुख भी है, दुख भी है, जीवन में हंसी भी है तो जीवन में कभी आंसू भी है, और ऐसे ही जिंदगी का ही सफर कटते रहता है।

लेकिन इन सब के चलते ज़िंदगी में समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है, और कभी कभार हमें भी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस गाने के साथ भोर की बेला इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सबने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। हम आपसे मिलेंगे सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। थोड़ी देर में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार आदाब, सुबह 6:30 है। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। कल रात राष्ट्रसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। इस नए कानून के तहत सड़क जुर्मों के लिए सजा और सख्त। प्रधानमंत्री

0: स्पष्ट किया कि मकसद जुर्माना के पैसों को जमा या गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। ईडीबी के तहत करीब 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें कुल 634 बिलियन रुपए निवेश किए गए। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान इसका उल्लेख किया गया। रूस के निर्यात अच्छी राह पर, धीमी बढ़ोतरी के बावजूद मेक्सा सकारात्मक है। साल के पहले 6 महीनों के दौरान 54 बिलियन रुपए का कारोबार। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच हमलेबाजी फिर से शुरू। नमस्कार, आदाब। राष्ट्रसभा में कल सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पेश किया गया। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब या ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को। नए कानून के तहत जुर्मों के लिए गाड़ियों को भी जब्त किया जा सकता है। कल रात इस विधेयक को पारित किया गया। मंत्री उस्मान मोहम्मद को सुनते हैं।
1: Road rage is not simply a matter of discourtesy or frustration on our roads. Aggressive behavior can escalate rapidly into violence, threats, damage to property, and serious breaches of the peace. The bill defines at long last road rage to cover a range of conduct, including assaulting or threatening to assault another road user. Firstly, it's defined as follows. Using aggressive, threatening, violent, abusive or insulting words or behavior, using an offensive weapon with the intention of causing harm, damaging the property or vehicle of another road user, causing public fear, or committing an act likely to trigger an offense of public order or a breach of the peace.
0: रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी और पुलिस अफसरों के पास भी कैमरे होंगे। प्रधानमंत्री को सुनती है।
2: The right culture, the right attitude. Government can provide leadership, but every road user must accept his or her responsibility. The bill before the House today, Madam Speaker, addresses some of the most serious risks on our roads, including driving under the influence of alcohol or drug or intoxicating substance, dangerous and careless driving resulting in death, driving without a license, resulting in death, illegal road racing, road rage, distracted driving, and failure to comply with police directions. At the same time, the bill modernizes our traffic administration through measures such as the digital driving license. It is a big step forward. Road safety relies heavily on mindful driver behavior and a collective commitment to protecting all road users. There is a common principle which runs through all these provisions. Whether we are dealing with drink driving or drug driving or dangerous driving or unlicensed driving, road racing, road rage, the underlying issue is responsibility. We need to change the way we think about road safety. We should not be asking what is the penalty if I'm caught. We should be asking what risk am I creating for myself and others. This is why we say that there has to be a change in attitude and mentality. Government has a responsibility to provide the framework for that change. We are strengthening the law where the existing framework is not sufficient, providing the police with preventive powers where there is an immediate danger, and therefore we are also modernizing the tools that the state can give them. The objective is not to collect more fines or to disqualify more drivers. The objective is not to seize more vehicles. The objective is to save lives. The ultimate measure of success will not be the number of fines issued, but will be the number of lives saved.
0: राष्ट्रसभा के कार्य 20 अक्टूबर 2026 को लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करीब 500 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और इन परियोजनाओं में कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। परियोजनाओं के मुकम्मल होने के बाद 25,000

0: से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रसभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल ये जानकारी दी। इस दौरान विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2025 की तुलना में हालात में सुधार हुआ, हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार पर दबाव अभी भी बना हुआ है। सिल्वाना पारी मामन की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: उपलब्धता और डॉलर की मांग पर सांसद रुकनी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार देखा गया। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। देश में कंपनियों और परिवारों के पास मौजूद विदेशी मुद्रा की मात्रा तथा 2025-2026 में निर्यात उन्मुख कुछ प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए दिखाई दे रही विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रोक कर रखना भी हो सकता है, जिससे लेन देन के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति सीमित हो जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में एक संरचनात्मक असंतुलन भी मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में आयात में हुई तेज वृद्धि, जो पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई उपभोग आधारित आर्थिक मॉडल का परिणाम थी, ने विदेशी मुद्रा की मांग में ज्यादा और लगातार बढ़ता हुआ अंतर पैदा किया। विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में वृद्धि इस मांग की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाई, जिसका असर घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। पहला, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम के तहत विला की बिक्री से प्राप्त राशि में से कम 85% राशि को मॉर्शन रुपए में परिवर्तित करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, ऐसी कंपनियों के लिए जिनके कारोबार का कम से कम 50% हिस्सा विदेशी मुद्रा में होता है, अपने सभी टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना अनिवार्य किया गया। तीसरा, 1 अक्टूबर 2025 से प्रति पर्यटक प्रति रात 3 यूरो का पर्यटन शुल्क लागू किया गया, जिसने बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने में योगदान दिया। चौथा, आवास सेवाओं पर प्राप्त वीएटी का 50% विदेशी मुद्रा में जमा करना अनिवार्य किया गया। सांसद एडुआने रॉड्रिक्स के लिए आवंटित बजट और धन के फिर से आवंटन के बारे में सवाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल में रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली ने वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए 548 मिलियन रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, क्योंकि उसके पास उपलब्ध संसाधन समाप्त हो चुके थे। इस मांग की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय ने रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली को 300 मिलियन रुपए की अतिरिक्त राशि देने पर सहमति जताई। वित्त मंत्रालय ने रीजनल असेंबली के विकास बजट की भी समीक्षा की और पाया कि बजट के क्रियान्वयन की दर कम थी। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि रीजनल असेंबली संभवतः चालू बजट वर्ष के अंत तक अपने पूरे विकास बजट का उपयोग नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भी यही रुझान देखने को मिला, जब रीजनल असेंबली अपने विकास बजट का औसतन लगभग 73% ही खर्च कर पाई थी। सांसद जोआना बेलांजे ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के स्तर पर निजी निवेश परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि ईडीबी के पास 523 परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इन 523 परियोजनाओं में से 512 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। बाकी 11 परियोजनाएं जिनकी कुल राशि 15.7 बिलियन रुपए हैं, या तो निलंबित हैं या रद्द कर दी गई हैं। अनुमान है कि पहले से पूरी हो चुकी और वर्तमान में लागू की जा रही परियोजनाओं से लगभग 18,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं के पूरे होने और पूरी तरह चालू होने पर 7,800 और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सांसद बिचुक ने फिल्म रिबेट स्कीम के बारे में सवाल उठाया। 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस अवधि में 102.1

0: 1 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान किया गया। 2026 में 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 9.3 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने इस परियोजना के तहत वापस की जाने वाली राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की संभावना का भी उल्लेख किया। बजट संबंधी सीमाओं और सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए वापस की जाने वाली राशि पर एक अधिकतम सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुरूप फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक संख्या में परियोजनाओं को इस योजना का लाभ देने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि उनसे ठोस आर्थिक लाभ मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की पहचान तथा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी आकर्षकता और मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने सदन को ये भी याद दिलाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना में कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने आलान गोविंदन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के करीबी मित्र थे और उन्होंने उनके लिए नामधारी अथवा ऋणदाता के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार गोविंदन ने प्रवीण जगनाथ की अंगुश रोड स्थित संपत्ति के संबंध में बिलेश्वर एस्टेट को 20 मिलियन रुपये का भुगतान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी आलान गोविंदन की फिल्म प्रिजनर्स ऑफ पैराडाइज उस समय बन रही थी, जिसके लिए ईडीबी ने उन्हें 66 मिलियन रुपए का भुगतान किया था, जिसमें से 21.6 मिलियन रुपए टैक्स के रूप में काटे गए थे। उन्होंने कहा कि अब ईडीबी का बोर्ड उन फिल्मों को मंजूरी देता है जिन्हें सहायता मिलनी है और ये प्रक्रिया नियम आधारित प्रणाली पर है। इसके विपरीत पिछली सरकार के दौरान ईडीबी के सीईओ अकेले ही इन सहायता राशि को मंजूरी देते थे। अब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ईडीबी के नेतृत्व के लिए जल्द ही एक नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
1: विवरण करुणा लालू का रहा। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेगजा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई, 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। प्रणव बिहारी, अदिति गनवफ्तार।
2: मेक्सा की निदेशिका लीलावती राजमन जूसरे के अनुसार उन सामानों में 27% की भारी गिरावट आई है जिन्हें आयात किया जाता है और फिर आमतौर पर फ्रीपोर्ट के जरिए बिना किसी खास प्रोसेसिंग के पुनः निर्यात कर दिया जाता है। हालांकि कुल निर्यात के 2 अन्य हिस्से हालात को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। पहला, विदेशी विमानों और जहाजों को बेचे जाने वाले ईंधन की बिक्री, जिसमें 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। फिर घरेलू निर्यात यानी स्थानीय स्तर पर बने और दूसरे देशों को भेजे जाने वाले सामान, जिनमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये कुल 28 बिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं। इस साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने राहत की सांस ली है। मेक्सा की निदेशिका कहती हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले साल अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू किए जाने के कारण काफी परेशानियां हुई थी। हमें उम्मीद थी कि इस साल परफॉर्मेंस बेहतर होगा, क्योंकि इस बार हमारे निर्यातक नए यूएस टैरिफ के अनुरूप खुद को ढाल पाए हैं। अच्छी बात यह है कि इस साल प्राइवेट सेक्टर और सरकार के मिले जुले प्रयासों की बदौलत हम पर यूएस टैरिफ लागू नहीं हो रहा है। मेक्सा की निदेशिका का मानना है कि अमेरिकी बाजार में ड्यूटी फ्री प्रवेश का और भी ज्यादा सकारात्मक असर साल की दूसरी तिमाही में देखने को मिलेगा।
1: हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर को सेंट क्वामी फौदलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों के मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय असामाविक प्यालावाल पू एन सुसिटी प्लीजीस एक फाते अनिल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैथ्रिक पोलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टलू के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसे जो मिकाइल जोहन ने एक न्यायपूर्वक मुर्शस की इच्छा दर्ज यानी व्यक्त की जिसमें किसी को भी पीछे नहीं।

0: ਹੋ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਖਾ ਕਰੁਣਾ ਲਾਲੂ
1: Ensemble avec Père Laval pour une société plaisir et fraternelle, il y a 2024 mais bienheureux Père Laval qui se marie qui tirte yatra qui thème hai. ये तीर्थयात्रियों को पहलावाल के पच्चीन हो पर चलने का निमंत्रण है उन्होंने अपना पूर्ण

0: प्रयास किया था। 8 सितंबर को पहली प्रार्थना सभा रात 8 बजे होगी और उसके बाद रात 11 बजे। तीर्थयात्रा आयोजन समिति के पेयर पैट्रिक पुलिडो ने कहा, मोंसेनियर जुरोन ने अपने संदेश में ये याद दिलाया कि कैसे एक ज्यादा न्यायोचित और भाईचारे वाले समाज की मांग की गई है। यदि न्याय न हो तो शांति नहीं होगी। इस समाज का निर्माण चल रहा है, रास्ते पर है। इस वर्ष भी कई एनजीओ तीर्थयात्रियों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे, खासकर जरूरतमंदों के लिए। माइकल रामस्वामी ने कहा, ये एनजीओ आत्महत्या, ड्रग्स, शराब, घरेलू हिंसा आदि का निरोध करते हैं और कैदियों का समर्थन भी करते हैं। 2026 की इस तीर्थयात्रा का संदेश स्पष्ट है, मिलकर ऐसा मॉरिशस बनाना जहां हर व्यक्ति के लिए जगह हो, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।
1: विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अब नए हुर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था। जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, दोपहर बाद सेंट्रल प्लेटू और हवाई ढलानों में बादल घिराएंगे और हल्की बारिश होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और सेंट्रल प्लेटू में रह रहकर वर्षा होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से पूर्व और दक्षिण वाले लगुनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। इस नए कानून के तहत सड़क जुर्मों के लिए सजा और सख्त। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मकसद जुर्माना के पैसों को जमा या गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। ईडीबी के तहत करीब 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें कुल 634 बिलियन रुपए निवेश। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल इसका उल्लेख किया गया। मॉरीशस के निर्यात अच्छी राह पर हैं। धीमी बढ़ोतरी के बावजूद मेगजा सकारात्मक है। साल के पहले 6 महीनों के दौरान 54 बिलियन रुपए का कारोबार। और विदेश में अमेरिका तथा ईरान के बीच हमलेबाजी फिर से शुरू। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी काविश पल्टन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दिन आप सभी को। थोड़ी देर आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार। शोक समाचार सुनिए। पियती लेन कास्टेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती धन कुमारी चुनी। श्रीमती धन कुमारी चुनी पैदाइशी नाम रामचैन, जो सविता चुनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके बेटे हरीश चुनी के घर पियती लेन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 10 AM। लोगाते रोड मोताई ब्लॉन्च में 35 साल के 35 years old श्री अरविंद मांकू, जो चिकोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12 बजे

12 बजे के घर लोग आते रोज मोंताई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंताई ब्लांश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो क्रिमेशन टुडे एट नून देकोम्ब रोड कारोलिन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राबी शांति भोजा, श्रीमती राबी शांति भोजा पैदाइशी नाम झरी जो शांति भोजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज 10 बजे इनके घर देकोम्ब रोड कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM बासन रोड कैथोबोन में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री बसंतराव बापामा, श्री बसंतराव बापामा जो वसंत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10 बजे इनके घर बासन रोड कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM नंबर 56 आबे डू ला काई क्यूपिप रोड में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री मुनीश्वर द्वाका जो धीरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और MBC में काम करते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज 10 बजे इनके घर आबे डू ला काई क्यूपिप रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM स्कूल ने निकवानियों में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमदत्त रामदुआ, श्री प्रेमदत्त रामदुआ जो विश्वजीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी अलका देवी रामदुआ के घर स्कूल ने निकवानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM आप्यालेन निकवानियों में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंपा कार्तिक जो बरकी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे इनके बेटे मानू कार्तिक के घर आप्यालेन निकवानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM गांधी रोड लालमाटी में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शीला सिक्किसुन पैदाइशी नाम बंधन जो शोभा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडिमास की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM प्लाटू रोड गुडलैंड में 45 साल के 45 ईयर्स ओल्ड श्री प्रवेश सिंह सुरजी जो शैलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनके घर प्लाटो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान में 46 साल के 46 ईयर्ओल्ड श्री महेंद्र लक्की जो दीपू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज एक बजे के घर लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM चांद लेन अलिता मारे पिछली त्रिविया में 76 साल के 76 ईयर्ओल्ड श्री जगदेव सुंदर जो बाज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके बेटे ओमदत्त सुंदर के घर चांदलेन आलिता मारे पिछली त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जोर्ज पिछली त्रिविया की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM नंबर 115 मागों स्ट्रीट प्लान व्यत में 99 साल की 99 ईयर्स ओल्ड बीबी शरीफा सैयद अकबर जो छोटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा कल रात 9 बजे इनके भांजे लड्डू मोहम्मद सैयद हुजैफा के घर मागों स्ट्रीट प्लान व्यत से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया गया। फ्यूनरल लॉस नाइट एट 9 शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का आप प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग में फिर से नया ट्रांसफर रिकॉर्ड बना। इस ट्रांसफर बाजार में टोटल 3.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का कारोबार हुआ, 3.4 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग। डेडलाइन डे में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रिटिश रिकॉर्ड की बराबरी की 125 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर, 125 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एंजो फर्नांडेस को साइन किया गया चेल्सी से। इससे पहले मैनचेस्टर सिटी ने एवर्टन से लिमान एंजाई को साइन किया 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। ट्रांसफर बाजार का आखिरी दिन डेडलाइन डे में टोटल 475 मिलियन

475 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का कारोबार हुआ। चेल्सी मोनाको से कमारा को साइन करना चाहता था, पर अंतिम मिनट में मोनाको ने ट्रांसफर रोका। लिवरपूल ने 18 साल के गोलकीपर लुका ब्रुगमांस को साइन किया। बेल्जियम की गेंक टीम से 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा हुआ। ब्रुगमांस इस सीजन लोन पर अपने क्लब में ही रहेगा, अगले सीजन लिवरपूल में आएगा। न्यूकासल यूनाइटेड ने लील से स्ट्राइकर माचियास फर्नांडिस पौडो को साइन किया। दाम 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। कुछ प्रमुख ट्रांसफर डेडलाइन डे में जैक ग्रिलिश मैनचेस्टर सिटी से एवर्टन में आया लोन। तोसिन अदाराबिया चेल्सी से टोटनहम हॉटस्पर में। इब्राहिम एम्बाई पेरिस सेंट जर्मे से एस्टन विला में। आर्वे एलियट लिवरपूल से वेलेंशिया में लोन पर। सो गाकपो लिवरपूल में ही रहेगा। खबर है लिवरपूल चेल्सी से राइट बैक मालो गुस्तो को साइन करना चाहता था, फ्रांस का लोन पर चेल्सी परमानेंट ट्रांसफर चाहता था, इसलिए चेल्सी नहीं ये ट्रांसफर नहीं हो पाया। और चेल्सी बोर्नमुथ के मिडफील्डर अलेक्स स्कॉट को खरीदना चाहता था, पर बोर्नमुथ ने इनकार किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कारोबार करना चाहता था। मैनचेस्टर सिटी के फुल बैक एक नूरी को साइन करना चाहता था, पर डील नहीं हो पाई। यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी के युवा खिलाड़ी पेज को भी साइन करना चाहा, पर डील नहीं हो पाई। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में कल कई मैच खेले गए। लिंकन 0 ब्लैकबर्न 0 पोर्टसमुथ 0 डर्बी 2 प्रेस्टन नॉर्थ एंड 1 ब्रिस्टल सिटी 3 शेफील्ड यूनाइटेड 3 बोल्टन 2 स्वानसी 2 वाटफोर्ड 0 वेस्ट हैम ने वुल्व्स को 4-2 से हराया। बर्मिंगहम 1 साउथैम्पटन 1 स्टोक सिटी 1 नॉर्विच 0 UEFA Women's Champions League के क्वालिफाइंग में ऑस्ट्रिया वेन 4 ब्रांड 0 जर्मन कप में HEBC 0 बोरुशा डॉर्टमुंड 5 और कोपा इटालिया के दूसरे राउंड में पाओमा 0 क्रिमोनेजे 2 टोरिनो 0 मोन्जा 1। सऊदी प्रो लीग में ओली वाटकिंस अपने पहले मैच में ही स्कोर कर पाया। अल हिलाल ने 3-0 से अल अली को हराया। 51 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर अल हिलाल ने वाटकिंस को साइन किया था एस्टन विला से। टेनिस US ओपन में कल मैडिसन कीज टेलर फ्रिट्स बेन शेल्टन नाओमी ओसाका फ्लावियो कुबोली मीरा आंद्रीवा इगा श्वातेक चियाफोए रिबाकिना मुसेती आलिया सीमे पोतापोवा मेंसिच आदि जीत पाए। आज कोको गोफ क्वालिफाई हुई, गैल मोफिस भी जीत पाया। और क्रिकेट में इस महीने टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच खेले जाएंगे। जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी भी टीम में है। अब इस सभी मैच दिल्ली में खेले जाएंगे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 2 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:05, रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी फॉरेस्ट साइड के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। फॉरेस्ट साइड के खासकर इन गलियों में रहने वाले, इन इलाकों और इन गलियों में रहने वाले ग्राहक, फॉरेस्ट साइट के लाब्रासरी, यहाँ पर और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 3 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच, सुबह के 9 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही फॉरेस्ट साइट के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, खासकर रेसिडेंस सैल्यू, बुर्ग स्ट्रीट, रेसिडेंस आटले, रेसिडेंस ला कोलम, एनएचडीसी जासमें, यहाँ पर और आसपास के गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी कल गुरुवार 3 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही

0: बुनमिया के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है बुनमिया विलाज कौ गारो बुलेरूज विनर्स बुलेरूज। यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 2 सितंबर को सुबह के साढ़े आठ बजे से सुबह के साढ़े आठ से सपहर के चार बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
0: बुधवार 2 सितंबर सवेरे के 7:07 रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। सुबह का नजराना ऐसे कार्यक्रम को लेकर हम आ गए हैं आप सभी का साथ देने के लिए अभी से लेकर सवेरे के 9 बजे तक। सुप्रभात आप सभी को, नए दिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं। नया दिन तो है ही, साथ में सितंबर का महीना भी अभी अभी शुरू हुआ है। आज 2 सितंबर है और देखते ही देखते जो है यहाँ पर समय इतने जल्दी व्यतीत हो रहा है कि क्या कहे, लेकिन चलिए समय के साथ हम भी आगे आगे बढ़ते हैं और जो है ज़िंदगी के ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और ईश्वर की कृपा सबके जीवन पर सदा रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलिए सुबह का नजराना इस कार्यक्रम को हम आरम्भ करते हैं। और आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना हम करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
3: मूल्य सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: समस्त दुखों से मुक्ति चाहने वाले संयम और तप के द्वारा अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

यकीनन ज़िंदगी के पल में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो एक बार बीत गया सो बीत गया, वो लौट कर नहीं आते। लेकिन कभी

कभार इन्हीं चीज़ों का गम लिए हम बैठे रहते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, किस लिए हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ। और इस चक्र से जब हम नहीं निकल पाते हैं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस बुरा भी हो रहा हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी भलाई है, कहीं ना कहीं ये समय जो आया है हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, हमें कुछ बताने के लिए आया है। तो बस जैसे भी हालात है इसका डटकर सामना करें। कहते हैं ना कि हर ढलते सूरज के बाद ही तो नया सूरज उगता है, हर जो है दिन ढलता है तभी ना एक नया दिन आता है, और हमेशा नया दिन एक नए जीवन के समान होता है। तो चलिए, हम सबको आज का ये सुंदर दिन मिला है तो हमें इसके लिए ईश्वर का तो धन्यवाद करना ही चाहिए। और साथ ही ये प्लानिंग भी होनी चाहिए कि इस दिन को हम कैसे बिताएं, कैसे इस दिन को बेहतर बनाएं। चलिए, अभी के लिए समय हुआ है कि आपको हम बताएं कि रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आज आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, आपके डेडिकेशन हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे, आपके फ़ोन कॉल्स हमें मिल रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 बजे से हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, खेल खेले हम। 8:50 पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को किरण जानकी जी से, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। 10 बजे होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। 11 बजे होगा समाचार और उसके बाद आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा सैयदा की पेशकश में। दोपहर के 12 बजे वंदना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 12:30 बजे आप मराठी भाषा में प्रोग्राम सुन पाएंगे प्रीति द्वारा। दोपहर के 1 बजे तमिल कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आरसी की प्रस्तुति में। 1:45 बजे गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी अमिता। 2:30 बजे से आप सुन पाएंगे आपकी पसंद इस कार्यक्रम को, जिसे प्रस्तुत करेगी उषा। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपहर के 4 बजे आप श्रीमती धर्मिया से सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। 5 बजे खेती बाड़ी पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फारे द्वारा। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका मनोरंजन करेंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 बजे हक्का भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे युवरासन द्वारा। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी ग्रीशालिनी। 7:50 पर आप नितिन बापू की प्रस्तुति में सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम। 8:10 पर रोशनी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस कार्यक्रम में। 11:00 बजे गिनीशा की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को। और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की, और अब बारी है एवरग्रीन गानों की। तो चलिए गानों का मजा उठाते हैं, साथ देने के लिए शुक्रिया।

जी हाँ, तुमने किसी से कभी प्यार किया है क्या? आपने प्यार किया है? चलिए, धर्मात्मा फिल्म का ये तराना है मुकेश साहब और कंचन जी की आवाज़ों में। और प्यार की बात करें तो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमारे भीतर होती है वही हम औरों को दे पाते हैं। अगर हमारे भीतर प्यार है, करुणा है, अच्छी भावनाएं हैं, इसी को हम औरों को दे पाते हैं। अगर जिस प्यार की हम बात करते हैं वो प्यार अगर हमारे अंदर ही ना हो, वो प्यार हमारे अपने के लिए ही ना हो, अपने आप के लिए, तो उस प्यार को हम अपनों को कैसे दे पाए? तो इसलिए हमें पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। जैसे हम अगर स्वस्थ रहेंगे तभी जाकर तो अपने पूरे परिवार का ख्याल रख पाएंगे, तभी जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे, तभी जाकर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर पाएंगे। अगर हम ही अपने आप में स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, खुश नहीं है, तो ये खुशी, ये परवाह कैसे हम औरों तक पहुँचा सकते हैं? तो जितना हम औरों का ख्याल रखते हैं उतना ही हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और चलिए, आप अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। और आजकल तो ठंड का मौसम है, आज तो सवेरे जब हम आ रहे थे तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। आप बताएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है? और मौसम चाहे जैसा भी हो, बाहर का, यहाँ का मौसम जो है बड़ा ही म्यूजिकल है और खूबसूरत गाने यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत से लोग इस गाने की फरमाइश हमारे साथ आए दिन करते हैं, मुकेश साहब और आशा जी की आवाज़ों में हम दोनों मिलके कागज़ पे दिल के। तो चलिए, जिन भी लोगों ने पिछले दिनों में इस गाने को मांगा था, हमें एक और बार इसे चलाने का मौका मिला, तो आपके लिए चला रहे हैं।

0: चलिए यहाँ पर जवाब तो नहीं, लेकिन आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस जरूर आते हैं और इसी बहाने आप लोगों से बातें हो जाती है। और कहते हैं ना कि सवेरे सवेरे अपनों से बात हो जाए, थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी खुशी हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो मानो पूरा दिन जो है इसकी एक शानदार शुरुआत हो जाती है। और फिर जो है दिन इतने अच्छे से बीतता है कि क्या कहे। तो बस आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। उम्मीद करते हैं खूबसूरत गानों को आप भी गुनगुना रहे होंगे और शुभ दिन आपको एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की ओर से।
1: नजराना।

अजी, यकीन पर तो ही ये दुनिया कायम है ना। अगर हमें यकीन है, अगर हमें विश्वास है, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। और अगर यकीन नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो वो होते हुए भी हमारे लिए नहीं होता है। तो बस जीवन में यकीन रखना, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और अभी के लिए हमें पूरा यकीन है कि इस प्रोग्राम को आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यकीन इसलिए क्योंकि आपके मैसेजेस हमें बता रहे हैं ना कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए, यहाँ से शुरुआत होती है आपके डेडिकेशंस की। बहुत बहुत शुक्रिया 4028085 पर सवेरे से इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस 5251700005 पर। तो चलिए, इस सिलसिले को हम आगे ले जाते हैं। और जहाँ कहीं से भी आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत सा मैसेज आया है, हेलो प्यारी सुमी जी, इस महीने कि पहले बुधवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन अपनेपन का एहसास हर रोज़ होता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। भले हम अपनों से कितने भी दूर रहे, दिल में ये जो नज़दीकियों का एहसास होता है ना, तो ये दूरियां मायने नहीं रखती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे, शुभ सवेरा कहेंगे, और शुक्रिया साथ देने के लिए। और ये एक और मैसेज जो है, इतना सुंदर सा जो है एक फोटो आया है, गुड मॉर्निंग, लेकिन आपने तो नाम ही नहीं लिखा। ओके, आप है साधना जी रिवेदे क्रियोल से हमारा साथ दे रही है, तो आपको भी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। अगला मैसेज यहाँ पर अनीता जी की ओर से मौदालबिया से साथ दे रही है, कह रही कि आज मौसम बरसाती है और उसके ऊपर गाने खूबसूरत है। तो चलिए, गानों को एंजॉय कर रही है और साथ में बरसात का भी मज़ा उठाइए, क्योंकि अभी हमें बरसात की बड़ी ज़रूरत है ना। तो चलिए, यहाँ पर अगला गाना आपके नाम अनीता जी, साथ में करुणा, अमृता, कविता, सभी बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। शिवरानी जी क्रॉम्बुआ से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर गीता जी क्यूपिप से साथ दे रही है, चाय बनाते बनाते हमें सुन रही है, गानों का मज़ा उठा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना हम करते हैं। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही अगला गाना हो जाए प्यारी बेटियों के नाम, श्रवीना है, अनुषा है, और सभी पूरन परिवार के नाम, और कहती है कि जितने भी गाने चल रहे हैं ना, सभी के सभी हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी इतने प्यार के लिए। चलिए, गाने तो ऐसे एक दूसरे के लिए ही हम चलाते हैं, और गानों को आप एंजॉय कर रही है, इसके लिए धन्यवाद। अगला मैसेज यहाँ पर नहीं, अगला जो है डेडिकेशन शैला जी की ओर से उनके पति साजन के नाम, साथ में उनकी प्यारी बेटी रेशमा, साथ में है खुशी, प्रिया, सभी परिवार जो इस समय बड़े ही प्यार से जुड़े हैं। और कहते हैं ना, जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है।

जी हाँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और अभी के लिए यहाँ पर आपके डेडिकेशंस का सिलसिला जारी है रेडियो मॉरिशस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और चलिए, जितने भी हमारे सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, कोई ख़ास मौका सेलिब्रेट कर रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आप सबकी खुशियों में हम भी शामिल हो रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और चलिए, यहाँ पर आज जो है बहू आशना अपना बर्थडे मना रही हैं। आशना, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी सास, आपके ससुर की ओर से आपकी सासू माँ है सुमीला, साथ में ससुर जी है गुलाबचंद, आपके पति उमेश की ओर से ढेर सारा प्यार आपके नाम और सभी हीरामन परिवार और सभी नौबत परिवारों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जयबुन जी अपना इन्होंने जो है सोमवार को अपना जन्मदिन मनाया। जयबुन जी हमेशा अपने पूरे परिवार के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए फ़ोन करते रहती है, रिक्वेस्ट करते रहती है, और उनका जन्मदिन, तो आपको भी ढेर सारी बधाई जयबुन जी, खासकर आपके शौहर कासम की ओर से, आपकी बहनों की ओर से ढेर सारा प्यार आपके नाम नाजमून, आलिमून, अंसु और नाजिमा की ओर से, और साथ में आपके नाती पोते जहीरा भी, नगमा, उर्फा, असगर, मिहाद, फैजुल्ला और हिदायत के नाम, सभी परिवारों ने आपको ढेर सारी बधाई भेजी है यहाँ पर। और चले, जितने भी सुनने वाले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पर आंच पोते आंच अपना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। आंच, आपको जन्मदिन के हार्दिक हार्दिक बधाई आपके दादा दादी की ओर से, राज और अनीता जी की ओर से, साथ में आपके पापा है अंतिश, मामा है मनीषा, फिर साथ में है हिमेशा, फिर अंकुश है, आशिमा है, आद्या है, नाना सुनील है, नानी लता है, मामू आदर्श, पूरे परिवार की ओर से आंच को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अगला मैसेज सुबी जी की ओर से आया है, काम कर रही है, हमारा साथ दे रही है रेडियो मॉरिशस पर, और सबको शुभ दिन कह रही है। सुबी जी कह रही है कि टिकटॉक पर जो हम अपने प्रोग्राम्स लाइव करते हैं वो उसमें भी बड़े ही प्यार से जुड़ती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी आपके इस प्यार के लिए। इंदिरा लौटन जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अगला तराना आपके लिए भी हम करते हैं इंदिरा जी। और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ आई है सुनीता जी की ओर से, दागोचिया से हमारा साथ दे रही है। आने वाले दिनों में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, जिसकी तैयारियों में हर कोई लगा है, तो आप सभी को भी इसकी मंगल कामनाएं अभी से।

चले एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना जन्मदिन। और यहाँ पर लक्ष्मी जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है, और आपके इस प्यार के लिए और आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और यहाँ पर अगला गाना जो है, सरिता जी आपके नाम का ट्रबोन से कह रही है कि यहाँ पर तो सूरज निकल गया है। थैंक यू सो मच। और चलिए अगला गाना आपके नाम हम करते हैं, और आपका भी दिन बहुत अच्छे से बीते ऐसी कामना हम करते हैं। और ये अगला मैसेज आया है किसकी ओर से, आपने अपना नाम नहीं लिखा, कुछ हमारे बीते हुए दिन लौटा आते, काश हमारे बीते हुए दिन लौट आते। चलिए काश ऐसा हो पाता है ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब भी आप हमें मैसेज करें तो प्लीज़ अपना नाम लिख दे तो हमें पता चले कि मैसेज किसकी ओर से आया है, क्योंकि फ़ोन पर तो बातें हो ही जाती है, नाम पता चल ही जाता है। अगला गाना विद्या जी आपके नाम यूनियन पार्क से बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी है, कह रही है गाना जो चला था जिंदगी के सफ़र में, वो गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते, उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। बस आपको अच्छा लगा, आप खुश तो हम भी खुश। तो चलिए इसी के साथ डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसे समाप्त करते हैं। लीला जी बौशेरी से हमारा साथ दे रही है, बहुत अच्छा लगा लीला जी हमें भी आपसे काफ़ी दिनों बाद बात करके। और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर। मिलते हैं हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में, ऐसे ही हमारा साथ आप देते रहे। नमस्कार, शुभ दिन।

रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजलबा। आवाज़ समाचार सुने जा। कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के पारित करल कर रहल बाटे। सड़क सुरक्षा के जस्ती मजबूर करे करने के लिए रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के पेश करल कर रहल मंत्री उस्मान मोहम्मद बोलन की ई कानून के जरिए एगो ठोस और साफ पैगाम देवता, खास तौर पर शराब और ड्रग नोशी करे होला गाड़ी चालक के। नवा कानून के तहत जुर्म खातिर गाड़ी भी जब्त करल जाल बाटे। प्रधानमंत्री बोलन की ई कानून के पहला मकसद जुर्माना के पैसे के जमा करे या फिर गाड़ी के जब्त करे के नई बातें, नागरिक के जिंदगी बचाना मकसद बातें। डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलनबा की ई एगो बुनियादी जिम्मेदारी है। राष्ट्रसभा के कार्य अब 20 अक्टूबर 2026 के लगावल जाला। हई बरिस के पहला 6 महीना के दौरान निर्यात के सतह पर नीमन नतीजा दर्ज होल बाते, लेकिन दूसर पहलू के भी मद्देनज़र रखल जाल बाते। मुर्शस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिग्जा के मुताबिक 0.25

0: फीसद के बढ़ोतरी नोट कर गल बाते 54 बिलियन रुपए के कारोबार होल बाते। हर साल की तरह हजारों मर्शन 8 सितंबर के सैयद क्वामी फौदर लावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करल जाए। ऊ राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीब के मसीहा रहलन बाते है। बरिस से ई तीर्थ यात्रा का विषय औसा माविक पे लावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजी सिख फाते अनिल बाते। विदेश में अमेरिकी ताकत काल ईरान पर हमला फिनों से शुरू कर देवल कर रहल बाते। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेटकम कहेला कि अब नए हॉर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमला के कोशिश के जवाब में अमेरिका ई कदम उठावेला। द ई रहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

मरनी के खबर सुने जा चांद लेन आले तमागे पिछी त्रिविया में तीन कोरी 16 बरिस के स्वसन सेजों के श्री जगदेव सुंदर जिन बाजे के नाम से जस्ती जाने जात रलन गुजर गल हवन इनकर माथी आज एक बज के आधा इनकर माती आज एक बज के आधा इनकर बेटा उमदत सुंदर के घरे चांदलीन आली तमागे पिछी त्रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सेंट जॉर्ज पिछी त्रिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टू डी एट हाफ पास्ट 1 PM लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान में दुकुरी 6 बरिस के 41 सीजों श्री महेंद्र लकी जो दीपू के नाम से जस्ती जाने जात रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज एक बजे इंकर घरे लाल बहादुर रोड ब्रह्मस्थान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावोंचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टुडे एट 1 PM प्लाटो रोड गुडलैंड्स में दुकुरी 5 बरिस के 45 श्री प्रवेश सिंह सुरजी जिन शैलेश के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर घरे प्लाटो रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टुडे एट 11 AM गांधी रोड लाल माटी में 3 कोरी 12 बरिस के 72 सौ श्रीमती शीला सिकिसुन पैदायशी नाम बंधन जिन शोभा के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर घरे गांधी रोड लालमाची से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिजीन कौंदे मास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM आपियाने निकवाइयों में 3 कोरी 19 बरिस के 67 सौ श्रीमती चंपा कार्तिक जिन बड़की के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर बेटा मानू कार्तिक के घरे आप्याले ने ख्वानियों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्रह्मस्थान के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टुडे एट 2 PM स्कूल ने ख्वानियों में 2 कोरी 18 बरिस के 57 सौ श्री प्रेमदत्त रामधुओ जिन विश्वजीत के नाम से जस्ती जाने जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर पत्नी अलका देवी रामदुआ के घरे स्कूल लेन इकवाइयों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्रह्मस्थान के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टू डेट 11 AM आबेदु इलाकाई क्यूपिप में 3 कोरी 12 बरिस के 62 सौ श्री मुनेश्वर द्वका जन धीरज के नाम से जस्ती जान जात्रलन और जन MBC के पूर्व कर्मचारी रहलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दस बजे इनकर घरे आबिद इलाकाई क्यूपिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेकागा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टुडे एट 10 AM बासा रोड काथोबोन में 3 कोरी 4 बरिस के 67 सौ श्री बसंत राव बापामा जन वसंत के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर गल हवन इनकर माती आज दस बजे इनकर घरे बासा रोड काथोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रीमेशन टुडे एट 10 AM दिकोम रोड कारोलिन में 4 कोरी 10

बरिस के 90वें श्रीमती राबी शांति भोजा, श्रीमती राबी शांति भोजा पैदायशी नाम झरी जन शांति भोजा के नाम से जस्ती जाने जाता लन गुजर कल हवन इंकर माती आज 10 बजे, आज 10 बजे इंकर घरे डिकोम रोद काहोलिन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्वा इलो ओलिविया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 10 AM। लोगाते रोद मोताई ब्लॉश में एक कोरी 15 बरिस के थोनसाइकों श्री अरविंद मंकू, श्री अरविंद मंकू चुनचिकोल के नाम से जस्ती जाना चात्रा लन गुजर गलहवनी करमाती आज 12 बजे, आज 12 बजे इनकर घरे लोगाते रोद मोताई ब्लॉश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई ब्लॉश के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट नून। प्याती लेन कास्टेल में 3 कोरी 5 बरिस के सशासन सैकों श्रीमती धन कुमारी चुनी, श्रीमती धन कुमारी चुनी पैदाशी नाम रामचरण जन सर्विता चुनी के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर कल हवन इंकर माती आज 10 बजे, आज 10 बजे इंकर बेटा हरीश चुनी के घरे प्याती लेन कास्टेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आली बहियों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे 10 AM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमनी संवेदना प्रकट करत है जा बातें।

सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सवेरे के 8:15 बज रहे हैं और अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो पता ही है, हर बुधवार को एक छोटा सा क्विज हम लेकर आते हैं और जिसमें बड़े ही प्यार से आप सभी साथ देते हैं। तो आज का क्विज बहुत ही दिलचस्प होगा और हमें यकीन है कि बहुत ही आसान होगा, इसका जवाब आपके पास होगा ही होगा। तो चलिए, आज बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही है जिन्होंने 60 के दशक में लगभग अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ बेहतरीन फिल्में दी थी। ऐसे तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके फिल्मों के जरिए, उनके गानों के जरिए हम उन्हें याद करते हैं। 2 सितंबर 1941 को इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 2025 को वो चल बसी थी। ये अपनी सुंदरता के लिए, अपने एक्टिंग के लिए तो जानी ही जाती थी, लेकिन फैशन स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती थी। सोचिए, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने 60 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती थी। इनका जो एक हेयर कट था वो बहुत ही पॉपुलर था और हमें याद है कि 70-80 के दशक के जो बच्चे होते थे, खासकर लड़कियाँ, उनके इस हेयर कट तो होना बनता ही था। आई होप हमने आपके आज के सवाल को थोड़ा सा और आसान कर दिया है इस हेयर कट को लेकर, इस हेयर स्टाइल को लेकर। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने जो जवाब है हम तक पहुँचाइए। 4028085 है नंबर हमारा। आज कौन सी एक्ट्रेस की जन्मतिथि है? ऐसे आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन बहुत ही पॉपुलर है। और ढेर सारे फ़ोन कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं, चलिए मिलते हैं।

0: है हमारे पहले कॉलर से, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार,
1: हेलो नमस्ते,
0: आपका स्वागत है जी। कौन बोल रही है?
1: मैं सुमति हूँ वाकवा से।
0: कैसी है सुमति जी?
1: अच्छी हूँ, और आप?
0: बिल्कुल ठीक। और बताइए क्या है जवाब?
1: जवाब है साधना।
0: साधना, आप साधना जी की फिल्में या गाने पसंद करती है?
1: जी हाँ, फिल्म है एक फूल दो माली,
0: ओके
1: इंतकाम,
0: ओके।
1: और बहुत सारी फिल्म है।
0: कौन सी ऐसी बात है जो साधना जी की आपको बहुत पसंद है?
1: जो आपने कहा है उसका हेयर कट।
0: आप इस बात से सहमत है जो मैंने
1: जी,
0: कहा?
1: बहुत ही सुंदर थी वो एक्ट्रेस।
0: ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमति जी
1: और
0: आपके
1: एक
0: जवाब के
1: फिल्म
0: लिए।
1: है आप आए बाहर आए,
0: ओके
1: मैंने देखी, बहुत अच्छी है।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए, थोड़ी देर में बताएंगे कि सही जवाब क्या है। धन्यवाद, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: चलिए एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
2: हेलो हेलो सुमित जी, नमस्कार।
0: नमस्ते राधा जी, कैसी हैं आप?
2: जी मैं अच्छी हूँ।
0: बिल्कुल धन्यवाद,
2: आप अच्छी हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और बताइए जवाब क्या है?
2: जी जब आपने हेयर स्टाइल कहा तो मुझे तो साधना ही याद आई।
0: क्योंकि इस बात को हम नजरअंदाज ही नहीं कर सकते हैं।
2: बहुत सुंदर थी और हमेशा वो उसके बाल ही लोग पसंद करते थे।
0: हाँ।
2: वो अपने बाल को
0: और पहले के एक्ट्रेस की यही एक्ट्रेसेस की यही खूबियां हुआ करती। हर एक का एक अपना यूनिक स्टाइल होता था।
2: हाँ,
0: फिर
2: हाँ।
0: चाहे वो साड़ियां पहनने का हो या वो टाइट चूड़ीदार पहनने का हो या
2: हाँ,
0: वो
2: हाँ।
0: घने घने बालों को बनाने का, है ना?
2: हाँ, बहुत ही मशहूर, मैं पसंद करती थी उनकी फिल्मों को देखने की। और वो गाना याद आ जाता है, चेहरे भी खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है।
0: चलिए यहाँ तो खुशी हमें भी हो रही है क्योंकि आप लोग इतने
2: हाँ,
0: प्यार से जुड़ रहे हैं।
2: हाँ बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई है आपने इस एक्ट्रेस के बारे में पूछा।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन कहेंगे राधा जी आपको।
2: शुभ दिन आपको भी। हाँ
0: ओके, तो चलिए आज एक ऐसी अभिनेत्री का नाम हम ढूंढ रहे हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रही है, जन्मतिथि कहे। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी फिल्मों से जुड़ी उनकी जो यादें हैं वो अपने आप में बड़ी कमाल की है। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
3: हेलो नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते भाई जी, आपका स्वागत है।
3: मैं हूँ धनेश्वर चौबाजवील सिंह
0: जी। धन्यवाद भाई जी, बताइए क्या है जवाब?
3: मेरा जवाब है साधना बहन जी।
0: ओके, कुछ जोड़ना चाहेंगे साधना जी के बारे में भाई धनेश्वर?
3: अभी तक जो नारी लोग है, जो लड़की लोग है, वो उनकी तरह बाल काटती है सुवीर।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
3: धन्यवाद
0: भाई जी आपके इस जवाब के लिए। यकीनन, चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ेंगे। हेलो नमस्ते।
4: नमस्ते
0: जी, कौन बोल रही है?
4: हम तारा बोल रही हैं।
0: कैसी है तारा जी?
4: हम ठीक हैं, आप ठीक हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। और क्या है जवाब तारा जी?
4: हमारे जवाब है साधना।
0: ओके,
4: लेकिन उसको हम लोग बहुत छोटे से हम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
4: हमको एक भाई है, वो भी उसको बहुत पसंद करते
0: अच्छा।
4: हैं। वो पहले के जमाने लामुद के
0: हाँ हाँ।
4: उसको बाल काट देते हैं ना, तो
0: जी।
4: वो बहुत बढ़िया लामुद होते हैं वो साधना
0: जी।
4: हाँ, उसका फोटो खरीद कर घर में रखते हैं।
0: ये आपने सही कहा। हाँ। पहले के समय में ये अपने आप में एक ट्रेंड होता था कि आपके
4: हाँ।
0: जो पसंदीदा एक्टर है एक्ट्रेसेस है उनके जो फोटो बिकते थे हम लेकर
4: हाँ।
0: घर में चिपकाते थे, अपने कमरों में चिपकाते थे।
4: हाँ, पहले सब कोई घर में छिपता के।
0: हाँ तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी आपके जवाब के लिए। चलिए आज हम एक ऐसी अभिनेत्री का नाम ढूंढ रहे हैं जो आज ही की तारीख यानी कि 2 सितंबर 1941 को इनका जन्म हुआ था। 60 के दशक में इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और क्या शुरुआत थी, क्या इनका सफ़र था। लव इन शिमला, मेरे महबूब, वो कौन थी, आरजू, मेरा साया, एक फूल दो माली जैसी कामयाब फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से इन्होंने जो है इनका जो नाम है अपने आप में अमर हो गया था। और चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर दीपा कॉन्टोरियल से साथ दे रही है, कह रही है कि उनका आंसर है एक्ट्रेस साधना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज यहाँ पर शिमला जी की ओर से आया है, ट्रियोले से हमें सुन रही है, कह रही है कि उनका जवाब है साधना। आपके भी जवाब के लिए धन्यवाद। यहाँ पर अनीता जी की ओर से मैसेज आया है, लिखती है कि साधना है इनका जवाब और बहुत इनकी फिल्में इन्हें अच्छी लगती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जवाब यहाँ पर आया है साधना, शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, कह रही है कि इनके गाने बड़े कमाल के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी आपके जवाब के लिए भी। एक और कॉलर की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
5: नमस्ते सुमित जी, कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वस्ति जी आप कैसी हैं?
5: मैं भी ठीक हूँ।
0: और

0: क्या है जवाब स्वस्ति जी?
1: जवाब है साधना।
0: ओके, कुछ जोड़ना चाहेंगी साधना जी के बारे में?
1: हाँ, उनके ऐसे फिल्म हैं जैसे राजकुमार, वो
0: जी
1: कौन थी,
0: जी
1: और वक्त जैसे फिल्म
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: ओके
1: और उसके हेयर स्टाइल भी ये
0: बहुत
1: तो सभी को
0: धन्यवाद।
1: पसंद है।
0: हाँ, ये आपने सही कहा, और आज भी ये हेयर स्टाइल अपने आप में बहुत पॉपुलर है। हाँ
1: है। हाँ
0: तो चलिए,
1: ओके,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: स्वस्ति जी
1: आपको
0: आपके
1: भी।
0: जवाब के लिए। चलिए एक दो और फोन कॉल लेते हैं, और फिर साधना जी पर पिक्चराइज एक दो गाने भी हम चलाएंगे। एक और श्रोता, हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्कार सुनील जी।
0: नमस्ते धनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अच्छी हैं ना?
0: बिल्कुल ठीक है जी, बताइए क्या है
2: आपको
0: जवाब?
2: तो जवाब मिल ही गया है, परंतु मैं ये
0: जी
2: कहूंगा, जो हमने दास्तां सुनाई,
0: जी
2: आप क्यों रोई?
0: बिल्कुल
2: हो सके तो ये गीत चला
0: ठीक
2: दीजिएगा।
0: है, हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद धनी जी आपके जवाब के लिए। बिल्कुल, धनी जी ने सही कहा, जवाब तो हमें मिल ही गया है। इनफैक्ट ये इस छोटे से क्विज का कहीं ना कहीं सही या गलत जवाब देना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि थोड़ी बहुत एक दूसरे से हमारी बात हो जाती है ना, बातों के जरिए थोड़ी हंसी हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, और कितने उत्साह से आप साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैसेजेस तो अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जवाब है साधना, उसके गाने पर्दा हटा दो। ओके, ये है माला जी, धन्यवाद माला जी। और ये साधना जी की ओर से जवाब आया है, जो रिवेदे क्रियोल से हमें सुन रही है और कह रही है कि जवाब है साधना। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साधना जी। चलिए एक अंतिम अंतिम कॉल। हेलो, नमस्ते।
3: हेलो, नमस्ते सुनिए।
0: नमस्ते नीता जी, कैसी है आप?
3: मैं ठीक हूँ। साधना के बारे में बहुत चर्चा हो गई है ना, तो
0: जी
3: मैं ये थोड़ा सा जोर देती हूँ।
0: बिल्कुल जी।
3: साधना के बाल जानती है किसने काटा था? नवीन शिमला में उसकी दादी ने काटा था
0: अच्छा,
3: उसकी।
0: ओ माय गॉड, ये तो हमें नहीं पता था, अच्छा लगा आपसे जानकर।
3: वो तभी छोटी थी, उसकी दादी ने
0: हाँ
3: उसकी सुदीर काटी थी, तब से
0: ओके।
3: साधना के सभी वर्ष नवीन शिमला की बात है।
0: और
3: ये मैं
0: सोचिए,
3: ये
0: लव
3: फिल्म
0: इन
3: मैं ये
0: शिमला
3: सभी
0: जो 1960 के दशक में आई थी, और उनका वो हेयर स्टाइल आज भी पॉपुलर है।
3: हाँ, उसकी दादी ने काटी थी।
0: ओके,
3: बाय।
0: बाय, धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन। तो चलिए, जवाब तो हमें मिल ही गया है। बिल्कुल, आज जो है साधना जी की जन्म तिथि है, आज ही की तारीख 2 सितंबर 1941 को इनका जन्म हुआ था, और ये जो है 25 दिसंबर 2015 को चल बसी थी, लेकिन आज भी जो है हम इन्हें याद करते हैं। ऐसे श्री 420 में इनका एक छोटा सा किरदार था, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में की थी। लव इन शिमला, जिस फिल्म की बात अभी नीता जी ने कही, फिर परख, हम दोनों, असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, और ऑब्वियसली कौन भूल सकता है मेरा साया, वो कौन थी, और वक्त जैसी फिल्मों को, इंतकाम जैसी फिल्मों को, और एक फूल दो माली। चलिए, अभी के लिए बातें हम कम करेंगे, और वो कौन थी फिल्म का ये जो सदाबहार गाना है, ये आप सभी के लिए हम चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वो है भाग्यश्री। नहीं, ये जवाब तो एक गलत मिला। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर वो कौन थी फिल्म का ये गाना आप सभी श्रोताओं के नाम, जिन्होंने इतने प्यार से इस आ खेल खेले हम क्विज़ में पार्टिसिपेट किया।
4: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, सुबह का नजराना इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, इतने प्यार से इस क्विज में आपने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और चलिए, गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं, और दरिया दिल फिल्म का ये जो तराना है आप सबके नाम करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

बुधवार 2 सितंबर आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। फिनिक्स के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। फिनिक्स के खासकर इन इलाकों इन गलियों में रहने वाले ग्राहक फिनिक्स के रॉयल रोड, फिनिक्स इकबाल रोड, QFC, लूल बेकरी, हसन राफा रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 2 सितंबर को दोपहर के 3 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति CEB की ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 2 सितंबर सवेरे के 8:00 लगभग 50 मिनट और अभी के लिए समय हुआ है हम बड़े कार्यक्रम हमारी धरोहर की ओर, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। 1 सितंबर के दिन विश्व पत्र लेखन दिवस मनावल जाला, वर्ल्ड लेटर राइटिंग डे। और यही विषय पर आज हमने बात करब जा, कहे कि पत्र लेखन भी विरासत और धरोहर के गिनती में आवेला। 2014 से रिचर्ड सिमकिन ई दिन मनावे के शुरू कर ले रहलन। फोटोग्राफर, ऑथर, लेखक, कीनोट स्पीकर और विश्व पत्र दिवस के संस्थापक हवन रिचर्ड सिमकिन। 1990 के बरिस में रिचर्ड सिमकिन जे बरतानी रलन, उ ऑस्ट्रेलिया के उ हस्ती लोग के पत्र लिखले रलन जेके उ ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड्स मानत रलन। और जब ई लेजेंड्स उनकर पत्र के जवाब देलन स, तो उ एकदम उत्सुक हो गईलन। 2005 में सिमकिन एगो पुस्तक रिलीज करलन, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स। बड़ा बड़ा लेजेंड्स से अपन पत्र के जवाब पाके जन खुशी, जन जोश सिमकिन रिचर्ड के मिलल, ओकर बाद उ खाली ई पत्र विश्व दिवस के मनावे के स्थापना ही नहीं करलन, बल्कि उ स्कूल में पत्र लेखन पर वर्कशॉप के आयोजन भी करे के शुरू कर देलन। और बड़ा आदमी लोग से सोशल मीडिया से हटके पत्र लेखन खातिर प्रोत्साहित करलन। पत्र लेखन एगो ऐसन विधा है जोन में कितने जानकारी रहेला, जेकर अध्ययन से इतिहास सकबर रचे। पत्र आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स में भी गिनल जाला। 1 सितंबर आदमी लोग के प्रोत्साहित करल जाला कि चिट्ठी लिखियन जा और चिट्ठी लिखे के कला पर जानकारी बटोरियन जा। आज के डिजिटल युग में, ईमेल के युग में, चिट्ठी लिख के और चिट्ठी लिखे के बारे में कहाँ सुनाला, न कोई लिखेला, न कोई एकर बारे में बतियाला, तो ई धरोहर बन के रह गल बा। बाकी रिसर्च के अनुसार पत्र लेखन के नहीं छोड़े के कितने अच्छा कारण बा, और वो अच्छा

कारण है चिट्ठी जब लिखबा अपन प्रियजन के त ई सोच विचार करे के अच्छा मौका आपके देवेला उ व्यक्ति और आपके संबंध के बारे में आप एगो नोस्टाल्जिया के दुनिया में चल जाइबा जेके पत्र लिखबा उ व्यक्ति बरिसन आपके चिट्ठी संभाल के रखेला जे लोग चिट्ठी लिखेलन जा उ लोग खुश और संतुष्ट रहेलन जा कोनो संबंध के और गहरा बनावे खातिर चिट्ठी लिखला बेहतर माध्यम मानल जाला चिट्ठी से आपके नजरिया इंसान बेहतर रूप से समझेला पुराना मित्र या संबंधी ई परंपरागत संपर्क के साधन के आनंद उठावेलन जा और अगर आपके लिखावट सुंदर बा त आप सकबा अपन पेनमैनशिप कला के प्रदर्शित करे और ई पत्र लेखन दिवस पर हम आप सबको एक धन्यवाद देवत है जे लोग यहाँ पर नियमित रूप से पत्र लिखते रहे लजा और अपन स्नेह और अपन आशीर्वाद व्यक्त करे लजा आप सबको एक पत्र लेखन दिवस के बहुत बहुत शुभकामना जो उनकी हमनी मनैली जा पहला सितंबर के धन्यवाद नमस्ते।

0: तो चलिए किरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धरोहर इस कार्यक्रम के अंतर्गत इतनी सारी जानकारियों के लिए जो आप हमें देती हैं। और इसी के साथ धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं का जो हमेशा हर एक प्रोग्राम में साथ देते हैं, दिन हो या रात हो, हमेशा हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और यहाँ पर सभी कार्यक्रमों को पसंद भी करते हैं। तो इसी के साथ समय हुआ है एक भोजपुरी गीत के साथ आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। आपको बता दें ये जो प्रोग्राम है रेडियो मॉरिशस के साथ साथ इसका सीधा प्रसारण जो होगा MBC के चैनल 3 पर भी, तो ज़रूर साथ दीजिएगा आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। हमारी आपकी भेंट दोबारा होगी 10 बजे, तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं सुमेरा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुमेरा।
2: नमस्कार राधाब, सभी को मेरा नमस्कार और राधाब। कर राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये जुर्माना का पैसा जमा करने ना ही गाड़ी जब्त करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों की हिफाजत और ज़िंदगी को बचाने के लिए ये कानून लागू किया गया है। इस नए कानून का मकसद ये है कि ड्रग नोश खासतौर पर और शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाने वालों को एक सख्त पैगाम देना है और सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी। देश में 500 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 634 बिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। इन परियोजनाओं के मुकम्मल होने पर 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलेगी। कल प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया। आपको बता दें कि राष्ट्रसभा के कार्य रात 7:30 बजे ख़त्म हुए हैं और 20 अक्टूबर को राष्ट्रसभा के कार्य फिर से लगेंगे। हर साल की तरह हजारों मुर्शिद 8 सितंबर को सैन क्वामी फौजलाबाद के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों का मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय औसाम अवेक पेयर लावाल पोन सोसाइटी प्लीजीस एक फ्रैटर्नल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पोलिडोहा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टलुई के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसिया जॉन मिकाएल जोन एक न्यायपूर्वक मुर्शिद की इच्छा रखते हैं, जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता है। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब

0: में अमेरिका ने ये कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है जिनमें एक बच्चा शामिल था। 50 से ज़ायद लोग घायल हुए। अमेरिका का मिसाइल ईरान के दक्षिण में घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था। जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। राधा।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और MBC 3 पर हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आज की चर्चा के इस कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पर हम सेहत को लेकर कुछ बातें करते हैं। और बेशक आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ काविश है टेक्निक पर, और प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इस वक्त आज हम बात करेंगे विश्व सुसाइड प्रिवेंशन दिवस पर, यानी आत्महत्या को किस तरह से रोका जा सके, इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जो मेहमान हैं, डॉक्टर आर्य कुमार जगीसर जी, जो कि एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है SSRN अस्पताल में। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत। बा
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और
1: नमस्कार।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम बात करब जा वर्ल्ड आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। तो डॉक्टर जी, पहला तो हम हये पूछब कि हई कब मनावल जाला और एकर मनावे के पाछे कौन उद्देश्य बाटी।
1: देखो, ई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एगो और एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ई दोनों मिल के हर 10 सितंबर को ये दिन घोषित कर लें, जोन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये 2003 से ये मनावल जाला और ये एकर एगो लक्ष्य बहुत ही रहल कि आज भी दुनिया भर में 800,000 लोग, यानी कि 800,000 लोग सुसाइड करत हो जा, यानी कि हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड करता। तो ई के बचाए से, इकर से आदमी के छुटकारा पाए से, एक है जन इतना से के कमती करके, जितना कमती हो सके, या तो बीजों की एको से सीतें हुई मैं तब भी जितना कमती हो सकी ओके कमती करे खातिर है एगो दिन घोषित कर रहा, ताकि एगो अवेयरनेस कैंपेन सकी चलावल जाए। जैसे हमने अभी राज्य में तेवे में बताते जा, ऐसे और लौगाज में, और कितना सिप्टोजम, कितना पोस्टर्स, और हर जगह हर देश में एक बारे में जानकारी लोगों के जनाए की, ताकि लोग एक समझे सकी, जाने सकी कैसे सकल जाए सुसाइड रोके। आखोज एगो चीज ई हम जाने बोले चाहब सबसे कि एगो एकर में ढेर बहुत पैसा नहीं लगी, एकर में ढेर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं बा, एकर में ढेर बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहेला, एकर में ढेर बड़ा लापागई नहीं चाहेला,
0: इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए,
1: बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एकर में सिर्फ जानकारी चाहेला कि कैसे ये थी। और इस साल हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एगो टॉपिक देवे ना, और इस साल जो टॉपिक दिले बा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन, यानी कि इसके बारे में बात करेगी, ओकर जो नजरिया बा देखे के वो लोगों को चेंज करेगी, सब जो सोसाइटी बा, जो सब समाज बा, सबके एकर बारे में अपन नज़र चेंज करेगी और बात करेगी। जब कोई दिक्कत बा, कोई कोई के बा लीदे से सीधे, कोई के मन में कुछ गलत विचार आता, तो ओकर बारे में बात करेगी,
0: ओकरा कैसे समझ बा, कैसे बचाई बा, कैसे ओकरा एदे कर बा, हाँ।
1: हुए तो इस सब के बारे में बात करेगी, बोले के और ओकर हेल्प, ताकि लोग सकी और सब आदमी की हेल्प करे और हेल्प से सकब से जिमिंदे करे।
0: तो डॉक्टर जी, हैजा पर आत्महत्या के जब हम बात करते हैं, सुसाइड के जब हम बात करते हैं, तो अगर मेन कॉजेज कौन बा, काहे कौन कौन सिचुएशन में कुमाजे एगो आदमी के दिमाग में चला वेला अपन सुसाइड करे के।
1: देखो, एक कॉज ढेर बा, पहला मीन्स के एक पहला तो सब ले पोतों कोजेस बा, जो जो मलाद है डिजीज है, जो मेंटल डिजीजेस है, मेंटल डिजीज किसे डिप्रेशन बा, सिजोफ्रेनिया बा, बाइपोलर बा, ये सब बा, ये सब से जो लोग थोड़ा सुफिया होलन सा, वो लोग के गोतौदों से लीदे सीधे वो लोग के दिमाग में आवे के, तो सब तो इतमों से सकल जाए काम ले करी। अब दूसरा बा, जो लोग है ड्रग से, लालकोल से, ये लोग फंस गल वन सेकंड में, तो वो लोग के कोनो सीमा नहीं लौकेला, वो लोग के लौकेला कि मजे, वो लोग के हाँ ये गो एंड करे
0: अपन, डेड एंड नियर।

0: केला केला कि अब हमने कि अपन समाप्त कर जाना। अब दूसरा बात को यह जो क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित रहना सर कैसे बा कौन से बा प्रॉब्लम लेके बा प्रॉब्लम दूसरा जो प्रॉब्लम ना सोते बा जो से कौन जी काफी हो जाना सर तो इस सबसे वो लोग के एगो तौदौस है सोचे कि अब हम के जेल से क्या हुई। अब दूसरा आउडी लोग बा जो लोग कोनो बिजनेस में असफल हो ढेर पैसा बिला गए तो वो लोग के लिए आई लगे कोई जुआ में एक साथ ढेर पैसा बिला गल कोई काजिनो में लेकुस में सब में बिला गए तो वो लोगों के लिए से सीधे आई लगे तो ये सब जो है ये सब मेन कॉजेज है। अब दूसर बात लड़का लोग ढेर लड़का लोग अपन के बना लन कि पढ़ाई सबसे अति है कहाँ एग्जाम में फेल हो या जितना सोच ले उतना नहीं आने सके तो लोग के सोचे कि अब हमने क्या करब सर जी के तो है सब मेन कॉजेज बा जो लोगों के दिमाग में आवेला निदेश सीधे देने चाहिए।
1: तो डॉक्टर जी जहाँ पर हम अभी थोड़ा घर पहला जब तू बोलन डिप्रेशन एंग्जाइटी अकेलापन ढेर कोई अकेला रह तो है में भी ढेर कोई के ऐसा हो जाला कि अब हम कौन चीज करब कहाँ जाम तो है में सुसाइड के कोनो कनेक्शन बात है कि है सब जो मलाद मजा एगो डिप्रेशन कोई के डिप्रेशन जब चलावेला कोई के एंग्जाइटी के प्रॉब्लम रहेला कोई के ऐसा जैसे तू बोलत हवा तो है में को मजा कैसे ओकर कनेक्शन रहेला।
0: ह्यूमन बीइंग जो है आदमी जो है आदमी एगो सोशल बीइंग है जिनके सभा में समाज में जिए चाहे ना अकेले में नहीं सके ना जिए
1: सच्चे की बोले
0: तो है सबसे पहला आदमी के समझे चाहे ना कि वो के जिए चाहे ना सोसाइटी में तो जब बहुत लोग है डिप्रेशन में चल जान सर डिप्रेशन में क्या होला डिप्रेशन एंग्जाइटी सब में सबसे डिप्रेशन में चल जान सर डिप्रेशन से वो लोग अपने आप के निकले लगे सर लोगों से हटे लगे सर समाज से हटे लगे सर काम में रुचि नहीं रहना उन लोग के अब कुछ करे के नवा चीज करे के नहीं अब जहाँ पे कोई चीज होता है जहाँ पे थोड़ा प्लेजर बा उस सबसे हटे लगे सर उन लोग उदासी में जिए लगेला अपने आप के अकेले महसूस करे लगे सर तो ये सब अकेलापन वो लोग के तब आने लगेला गलत लीडे की ओर कि अब हमारे कोई यूज नहीं बा हमरा अपने जिए के कोनो
1: मकसद
0: नहीं बा कोनो विजन तो उस सब छोड़ के तब वो लोग सोचे वो लोग में गलत विचार आए लगेला निदेश सीधे आए लगेला तो हई सब चीज़ जब कोई देखी अपन फैमिली में कोई एक बार थोड़ा ऐसे हो ही लगल बा तो ये सब आदमी के ज़रूर चाहे ना थ्रितमों की ओर ले जाएगी।
1: तो डॉक्टर जी जैसे अभी तू बोला था मान ला अभी कोई के तू देखबा काम में एगो आदमी बहुत पहला हसत रहलन खेलत रहलन बतियात रहलन अभी कुछ शांत हो गल चुपचाप हो गल लैकवा भी कबो कबो लेकोल में तू देखबा एक कुछ कोना में रहे के शुरू कर देवेला नहीं कोई के संगे बात करेला तो है में जब तू सुसाइड के बारे में ओकर से कैसे बतियाएबा मतलब मान ला अगर कोई ऐसा व्यक्ति बा तो जब तू बतियाए के शुरू करब तो है ओकरा जस्ती उकसावेला या बात करे के जस्ती ओकरा एदे करेला
0: नहीं पहला ये समझे चाहना कि जो आदमियों के से बतियाए जाए तो ये जाने चाहना कि वो अपने आप के प्रोफेशनल नहीं समझे लगी कि अब वही ओके ओके लगी थ्रेते करे नहीं पहला ओकर संगे ओके ओके घुल मिले परी ओकर संगे ओके ओकर जो नोकर दिल में बा उन ओकर से हेल के निकाले परी ओके अकॉम्पाइन करी परी ओके अकेले नहीं
1: छोड़ेगी
0: प्रॉब्लम जाने परी ओके देखे ओके अकॉम्पाइन करी ओके अकेले नहीं छोड़ेगी तब जैसे जन्म का प्रॉब्लम तब ओके प्रोफेशनल के यहाँ आने चाहना ताकि ओके निमन से ओकर जो जो दिक्कत बा क्योंकि बहुत लोग सोचेला कि नहीं हम दिक्कत बा से नहीं सकब निकले उन्होंने कोनो चीज के कोनो एगो प्रॉब्लम के फिनिशो नहीं है प्रॉब्लम बाकर सोल्यूशन बा सब एगो प्रॉब्लम के सोल्यूशन बा वो देखल देना कि है सीमा नहीं बा तो दूसर सीमा खोजल देना तो सब कुछ के एगो सोल्यूशन बा तो वो जब आदमी को दिक्कत में बा तो वो लोग के हाँ जब वो लोग प्रॉब्लम में रहला तो वो लोग के नहीं रोकेला सोल्यूशन तो ये सब के दिखाए खातिर ये सब खातिर पड़ेगा कि आन दुखते या तो ओके ओके अकॉम्पाइन कर तब ओके समझावल देना तो सब यहाँ लीडे जो ओके रहेला कि नहीं अब हमारे फिनी बा तो वो सबसे वो लोग निकले सकेला।
1: तो डॉक्टर जी मान ला अभी घर अभी लाइकवन के जब बात करत है आजकल के जितना युवा वर्ग हवन जितना यंग जनरेशन हवन ओकर में कौन ऐसा सेंटम तू देखे सकब या बड़ा आदमी में भी कौन ऐसा सैटम तोरा लौके के तोरा तू चीन जाइब कि ओकरा तनी तनी को मजे प्रॉब्लम चलाल बा कैसे कैसे तू जानब बस कि जाने ला आजकल के जो समस्या अभी जैसे समाज में चलता सब कोई अपन अपन

0: में खोजला, सब कोई अपन अपन स्पेस खोजला, तो कैसे तू जनब की कोनो कोई के मजे कैसे उस सेंटो मक चिनब?
1: पहला तो अभी जाने चाहना कि लड़का लोग जस्ती अपन पागो संगे रहना,
0: हाँ
1: तो पागो लोग के रोल सब ले आप होता होगा, सबसे आप होता होगा पागो लोग जब देखी लड़का में कोनो सॉन्ग मो आल बा वो अभी चिरा संगे बैठ के खाई की है, संगे बैठ के ब्रेकफास्ट लेके जीने लेके दिन के तक लेकोल में रहना था, तो एक उन्हें अपने आप के खिचे कर लग अपन आसाम में बैठा रहता वो खाई के लेके चल जाता है अकेली,
0: नहीं बतियात संगे, कोई संगे, हाँ
1: कोई से बतियात नहीं बा वो खोए बा खोया रहता नहीं अपन के एक्सप्रीमेंट नहीं करता वो जो चीज खुशी रहल कहूँ खुशी रहल जाए के फिल्म देखे ओके बोला तो चला फिल्म देखे तो बता नहीं हम नहीं जाब वो खुशी रह शादी में जाए के कहूँ घूमे जाए के तो ओके बोला चले के तब बता नहीं जाए तो है सब एगो बहुत ऐप होता हूँ सैतुम है और देखब कि वो जो रुचि रहा लोग के पढ़ाई में रुचि रहा जो काम में हम रुचि नहीं लगता और फिर देखब जो जो सुय सब बहुत रमास के रखा था लू वो सब छोड़े लगल कोई आवता तो दे देवा था
0: ऐसा छोटा छोटा चीज
1: है सब चीज चीज आप है है सब छोटा छोटा चीज देख के पाओ के समझे चाहना कि कोनो दिक्कत बा
0: कोनो चीज बा जे ओकरा तनी था जस्ती फाची के करत
1: फाची के कहता तो है सब ले प्रॉब्लम है पूतो है कि पाओ के समझे चाहला कि एके एगो कहूं अपने नहीं समझाए लगे कि अपने थोड़ा समझाए कि देख ले प्रॉब्लम हुआ तो ओके कोनो पोजिशन है नहीं ले जाए कि कहीं हो नहीं समझे कि एगो स्टिग्मा है कहूँ कोई क्या ले जा देनी एगो सिकोलोग यहाँ ले गई नहीं कि एगो सिक्यात यहाँ ले गई नहीं तो गलत हो गल कि ओके लड़का के काहे हम सब यहाँ ले जाते नहीं वो लड़का के कोनो एज चाहेला तो ऐप होते हैं प्रोफेशनल लोग सकियन सा ओके गीदे करे ओके समझाए ओके दिखाए कि कौन रास्ता अच्छा बा कि काहे उलाको सब चीज अपन पाओ से नहीं सकेला बोली
0: तो लापोश जैसन रहेला मतलब अभी मान ला आजकल के जितना लाइक वालों के जब बात करीला तो कबो कबो ऐसन बुझाला जैसे नहीं बतियाई खोजत हवन तो ओकर में कैसे तू टैकल करब ऐसन सिचुएशन के पस कि ढेर कोई लाइकन लोग नहीं खुशी रहेलन से ओकर जो स्पेस है ओकर में तू इन्वेड करब जैसे तू ओकर लासाम में हेल जाइब तो खिसिया जाला गुस्सा करेलन से तो कैसे तू ओकर संगे बतियाई के शुरू करब?
1: नहीं देखा जब देखब तो उदास रही
0: हाँ
1: और सबसे पहला लोग में देखब उस सुतत ने वंश रात भर बहुत देर जातवन से सुते जाता फजीर के उड़ जातवन से और वो लोग में देखब थोड़ा इगितासों चलावेला
0: खिसियालन
1: से जल्दी से खिसियालन से तो उन लोग के सपोर्ट करे खातिर उन लोग के समझाए कि पहला तो याद है गुजरे खाली स्वे आने जा के को दुखते हैं यहाँ तब वो कर बाद सीवेगो सिकोलोग यहाँ चाहे ओके ओके अपने से नहीं समझाए लगा लाखों बहुत पागों जो है वो लोगों कर संगे खींच कर देवेला या तो वो लोग बना लीजिए कर देवेला क्या बोली हम तेरा दिक्कत में हमारा नहीं अच्छा लगा था तो लोग वो लोग ओके बना लीजिए कर देवेला तो है गलत है जब बना लीजिए के आंसर जब ओके ओके समझ ओके दिखलाए के आंसर कि नहीं कहा तू कहा बतिया तू नहीं एग्जिस्ट तो उसे लेकर आउरी अपन में खो जाला तब ओके डर लगे आप बोले कि तो नहीं तो उसे नहीं करे कि लेकिन आगे सुने कि जो बोलक तो ओकर पर सोचे कि समझे कि और ओके वो सुने आने जाए कि लाखों जब सुतत ने बैगो लेका तो है नहीं अच्छा बा कोई प्रॉब्लम बा तब भी नहीं सुतेला लाखों जो लेका कि एगो डिसिप्लिन दो मी चाहेला है वो नहीं सकी कि एगो ये चीजों जो है तो वो एक बजे रात के दो बजे रात के जाता सुते
0: तो कहूँ ना कहूँ जब वो नहीं सुतेला तो ओकर कपार जस्ती फाची गे होला और हई को मजा एगो ट्रिगर करेलन से ओकर जो कपार के जितना भी प्रॉब्लम रहेला वो ओकरा ट्रिगर करेलन से
1: हाँ तब उदासी आए लगेला जब सुतेला नहीं तब उदासी तब ओकर में तब भाव जब अब पढ़े नहीं सकेला निमन से तब कौसौत नहीं सकेला हुई तब वो एगो जाल में फसल जाला
0: एगो दलदल नियर
1: फंसते जाना तब वो सोचेला कि अब हमर आगे नहीं सकब बढ़े अब हमर यही अंत बा अब हम कुछ नहीं सकब करे तो हई एगो एगो एतिबा कि आदमी के चाहना समझे के चाहना पागल लोग के सेतु सोचे के और समझे के कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है कि एगो सर्टिफिका एगो लड़का ने जस्ती बढ़ा नहीं सकी रही
0: काहे के आज देखब तू एक के गो घर में मान ल दू गो भाई या दू गो बहिन रही तो एक जस्ती माला रही और एक उतना पढ़े में उतना निपुण नहीं रही मेसेल में दूसर बगल में ओकर जोन खयाची विते हा ऊ में ऊ जस्ती निपुण रहेलन
1: देखनी छी हाँ। कहियो एगो लड़का के एगो दूसर लड़का से नहीं कंपेयर करे की कहियो एगो लड़का के अपन संगतिया लोग से नहीं कंपेयर करे की कहियो एगो लड़का के ओकर वाजा से नहीं कंपेयर करे की एगो लड़का हर एगो लड़का अपन ई नीख उ सकी को एगो चीज में ज्यादा अच्छा बा एगो चीज में नहीं

0: अच्छा बा तो ओकर जो ने अच्छा बा ओकर ओके वालों इसे करेगी नहीं कि जो में नहीं अच्छा बा उस उमे ओके ओके
1: शुरू कर देवे ला और हई कहू ना कहू लैकवा के जो अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उ लेवल के उ तनी कमती कर देवे ला और कहू ना कहू हई सब फैक्टर्स है कि उ बढ़ावा देवे ला डिप्रेशन के एंग्जाइटी के और बहुत कालिते के मेंटल इलनेस खातिर। तो आज हम बात करत हई वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जे 10 सितंबर के मनावल जाए और आज हमने के संगे डॉक्टर जागेसर रहैजा पर उपस्थित होल हवन। बिल्कुल 9:30 बजे के बाद तू हमने के संगे जुड़े सकब कोनो सवाल रही तो आज के कार्यक्रम के जारी रखब जाएगो गीत के संगे और बेशक आज के कार्यक्रम में और भी ऐसा दिलचस्प सवाल जोड़ल जाए अभी थोड़ा घड़ी में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है और बेशक इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें इस तकनीक पर सहयोग मिल रहा है कविश का, साथ ही साथ उरुसा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर शीतल लोबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट SSRN अस्पताल के डॉक्टर जग्गी सर, जो हमें किस प्रकार से सुसाइड का रोकथाम के लिए कौन से कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और क्या गतिविधियां की जा रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां जो हमें कहीं ना कहीं जानकारी देती है कि किस प्रकार से इस जो सुसाइडल टेंडेंसीज है या किस तरह से सुसाइड करने का मन में विचार आता है, कौन से लोग किस सिचुएशन में जाकर ऐसा करते हैं, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर जी से। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जी से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर जी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस का क्या कहता है कि कितने मतलब हमारे जो परसेंटेज है किस तरह से वो दिखाता है कि लोग कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं?
2: देखो ई जैसे बा हर पी में एगो तौदौस है कि सीसी जस्ती है मेल में फीमेल ले थ्वाफा जस्ती है और मोरिस में भी हवे तो दो सौ
1: अच्छा
2: में तो ताचीव सिसी जस्ती है फीमेल में मेल ले
1: अच्छा
2: हाँ वो थ्वाफा जस्ती फीमेल में है
1: फीमेल में जस्ती रहेला
2: जस्ती
1: अच्छा।
2: रहेला हाँ और देखा एक बार हर साल अभी कैसे मोरिस में गत बरिस 133 जीवन सिस देवल बा अभी हाई बरिस मेल एक 160 जीवन सिस देवगल बा
1: यानी अभी तक
2: अभी मेले के स्टैटिस्टिक्स बा ईरान पुलिस से जो नहीं थी बा तो ई में भी है ये तौदौस देखा गल बा कि मेल थ्वाफा जस्ती बा फीमेल ले और मोइस में एक तौदौस बा देखे के कि जेन में लास वेन लास 15 से 24 में और लास 25 से 45 में जस्ती है।
1: अच्छा
2: एगो पीक हई लोग जस्ती से देवलन से तो जी के इंटरनेशनल में देखल गल बा कि जस्ती है लास 15 से 29 में और लास अवांसे में तनी 65 से लाओ में जस्ती है और बीच में थोड़ा कम दिया मैं ई सब एगो स्टैटिस्टिक्स है देखल गल बा उस औरी कि ज़्यादा जैन में काहे से सीधोला जैन में लास 15 से 29 में देखल गया बाहरदम कि ट्रोजियम कोज मोर्टालिटी है सिसिड ला कोज है लेयर सबसे ज्यादा फिस्ट्रेशन वाला लड़का लोग में सबसे ज्यादा वो लोग पढ़ाई में रहन सा जहाँ वो लोग के एग्जाम में फेल होलन सा वो लोग गलत सीमा में पढ़ जालन सा वो लोग गलत काम में पढ़ जालन सा या तो कोई काम बिला जाला या पैसा बिला जाला है लाज वा उन लोग के लाज सब ले फाजिल लाज है जो में बहुत लातों शो चाहे
1: जहाँ पर एगो डेवलपमेंट हो वा तालिको हाँ। में हाउ जा पर एगो
2: सब इतनी रहा हाँ। आउडी ओकर आउडी प्लीज है ये लाज है जैन लाज में लाज कैस आप ऐसे वो में है ये सब लाज में कोनो मलाद मोताल जो है कैसे डिप्रेशन वा या तो बिपोलर बा या मैम सिजोफ्रेनी बा ये सब है ये लाज में शुरू होला तो जब शुरू होला तो है लाज में कौन एगो तौदौस पारों लोग के नहीं एक्सेप्ट होगी एगो एगो फास्ट डिनायल में रहना सा तो जब वो लोग नहीं एक्सेप्ट होला तो क्या ट्रीटमेंट वाने दे वेलन सा ओके डॉक्टर यहाँ नहीं ले चालन सा तो हाउ लोग है लेकिन अपने में है सैनवन अपने में रॉफेमे हो चालन सा और फिलहाल में वो लोग में है गलत लीडिया है लगेला और जाके अपने आप के समाप्त कर देवलन सा तो है पागल लोग के बहुत ऐप होता है कि देखे के है

0: में जब लड़का बोलता है नहीं छवा और लड़का में सोच में होता जब लड़का डिप्रेशन में जाता है या तो बतियाता चीज जो समझ में नहीं आता का ही ऐसी बतियाता तो ऐप होता हूँ कि ओके डुबते यहाँ ले जाए ना।
1: तो डॉक्टर जी बहुत घर में है भी समस्या बात है कि जब लड़का एक्सप्रीमे करे खोजेला तो कबो कबो ऐसा होला कि माता पिता लोग नहीं समझे खोजेलन से और कबो मान ला जा एगो एगो लड़का जब सच्चे के एगो कोना में बा एक अकेले हो गल बा नहीं है कोई कोई संगे बतियाता तो ढेर कोई पाहुन लोग समझेलन सा कि उतर झूठे झूठे करता झूठ बोला था तो हई में कैसे एगो पाहुन डील कर सकी या कैसे तू पाहुन लोग के कौन चीज बोलबा जैसे कि मान ला ऐसा समस्या घर में उत्पन्न हुआ था तो कैसे एगो पाहुन के डील करे के चाहिला।
0: हम पहला तो पाहुन लोग के बोलब जहाँ कोनो सोच में दिख बजा पर नहीं काम है
1: हाँ
0: तो जस्ती निमन से देखे चाहेला और फिर ई खाली पाहुन के थी नहीं खाली शिशिर बचाए खातिन एगो गोल बा पाहुन के फामी के जोन पोस फामी लोग बा जोन पोस वाजे लोग बा जोन पोस कमरात बा या तो लेखा लिखो जाए तो प्रोवेश लोग बा इस सब के रोल सोसाइटी के रोल बहुत ऐप होता हो लाख जब समझ में आवेला तो ये लोग सब के लोग केला तो ये जब पारों मैम जे पारों तो नहीं सुन वो नहीं चाहे आगे बढ़ के तो फामी लोग के समझाए जाए ना पागो लोग के समझ जाना कि एगो सर्टिफिका ओकर लड़का ने जस्ती बड़ा नहीं बा और सब ऐप होते बा कि प्रोग्रे खाली पढ़ाई में पोगे करत से पोगे नहीं हो जाना
1: बहुत बहुत चीज है ओकर संगे संगे
0: संगे संगे जो सकी लड़का आगे बढ़े लड़का सकी प्रोग्रे करे लड़का सकी डेवलप हो दूसरा सोच में तो है सब में एक में सोसाइटी के और फामी के रोल ऐप होते बा पागो नहीं हूँ समझी तो समझाएगी कि लड़का के एक चाहे ना कि बचाई में एक जना के बचाई में खाली नहीं सब वो बोले कि एक जना के याद रह जाना
1: सच के। और जैसे डॉक्टर जी मान ला जा कोई जेनेस हवन कोई युवा हवन कबो कबो ऐसा भी हो जाला कि ओकर संगतिया में या कबो ऐसा हो जाला कि तुगासली कुल में कबो बुलिंग के समस्या उत्पन्न हो जाला था हई में भी लाइक वो नहीं खोजेलन सा एक्सप्रीमे करे या नहीं खोजेलन सा बतावे अपन पाहुन लोग के तो हई में कौन चीज तू बोल पा
0: नहीं तो हई में सब ले पूता हूँ कुल निकुल के समझे चाहेला कि हई सब चीज निमन से दिखेगी और जब जब ओकर प्रोवेश दिखाता कि लड़का में सोच में आवता और प्रोवेश से पहला लड़का के जब कोनो प्रॉब्लम बुलिंग होला तो वन प्रोवेश से जाके बोलेला तो ओकर प्रोवेश के हई चीजवा के बनालीजे नहीं करे चाहना हई सब के एनालिजे नहीं ली चाहना एक पर एक्शन लेके और समझाए के लड़का लोग के क्योंकि एगो लड़का जब सीसीटीवी जाला तो हम सब लैकपन जो न कर लो तू आज में रह सब आफिकते होला एगो सीसीटी से मिनिमम 15 जना आफिकते होला सोचवा ओकर फामी ओकर पोस्ट है ये बा ओकर सितना संगतिया बा ओकर सब उस सब आफिकते होलन सर मतलब है कि जब कोनो ऐसा एगो चीज लड़का आके कोनो बोला था तो ऐप होता हूँ कि लिकुल के समझे के पोसा के समझे के पोसा के जो नक्शों ले के बाद ले के जब मैं लड़का सोची हो कि ओकर बात ऐसने में नहीं चल गल
1: मतलब ओकर एक्शन लेवे के बहुत जरूरी हो चला
0: हां वो कितना परिथी हुई मैं लड़का के समझे ओके सोची हो चाहे ना कि ओके देखल जाता
1: और जैसे आजकल तो डॉक्टर जी जैसे सोशल मीडिया बहुत जोर शोर में है तो लाइकवन लोग ढेर इन्फॉर्मेशन को लेते करे लन सर ढेर चीज अपन कपार में डाले लन सर जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है जो कबो कबो हो जाला कि सोशल मीडिया के भी कोनो लैम्पैक रहेला लाइकवन के कपार पे
0: रहेला जरूर रहेला पहला तो लड़का लोग के ढेर सोशल मीडिया पर नहीं रह जाना सेतु जब बड़ा होता सर जब लड़का लोग पढ़ता तो सोशल मीडिया से दूर हुए रह जाना जितना हो सकी मैं जब रहत हुआ सर तो दिखे चाहना पागो लोग के अपन एगो एगो रही चाहना ओकर सोशल मीडिया कौन कौन सोशल मीडिया है कहाँ पे कैसे एहतियात करता लोगों से और कौन ओकर रहती अब जब देखब सोशल मीडिया में लड़का लोग जब और जो कमागत लोग से एहतियात करत हुआ सर जब लड़का के कोनो जब ओके गलत बुद्धि आए लगेला तो इस विचार में वो सोशल मीडिया में पहला लिखेला कि अब ओके जिए के नहीं मन बा कि अब ओके आगे जाए के नहीं मन करता कि अब ओके सब कुछ छोड़े के मन करता तो ऐसा ऐसा चीज जब
1: काहे के कोई ओकरा नहीं ओ कोई कोई संगे पोता से नहीं कर सकता था, तो डाली सोशल मीडिया पर। हां
0: उ लिख देवेला। त ऐसा चीज जब कोई देखला

0: तो ऊ लेकिन की बहुत ऐप होता हुआ वो लोग की सुने की और वो लोग की औकात गई करेगी ये बहुत ऐप होता हुआ नहीं तो वो लोग आगे बढ़ते जाना वो लोग अपने आप के आउड़ी गौफे में कर ले जान सर आउड़ी वो लोग के अंधकार में चल ले जान सर।
1: तो डॉक्टर जी जैसे अभी सोशल मीडिया के बात करत हई तो मीडिया के एगो है बहुत बड़ा लैंपैक बहुत बड़ा रोल रहेला तो कबो कबो ऐसा भी हो डाला कि मान ला कोई परिवार में कोई सुसाइड कर देले हुआ तो है बतवा के तनी जस्टिस सेंसिटाइज कर देवेला तो है भी कोनो कोनो तरह से अफेक्ट करेला उनकरा उनकर परिवार पर कोनो एगो मानसिक प्रेशर डाले लन सर
0: जरूर है मैं बहुत ऐप होता हुआ कि जो सुनानी लोग हैं वो लोग के रिस्पॉन्सिबल रह जाना है सब चीज़ के देखे जाना लाखों सब जो जो फामीवा अफेक्टिव और बायोगोसिसिट से ओकर सोची में वही जाने ला कितनों आदमी ओकर काहे हमने रिचुअल सब करी ला सर काहे सब बना के आदमी लोग के सब लापरिया सब बोला वो सब ताकि वो लोग के सूचिया मिली एगो सूचिया है एगो सौदे सूचिया है मैं हई लेवा में जब तू ओके सूचिया दे दे अलावा ओके आउड़ी प्रेशन डालत होगा पर तो हई से दीजा वो एगो प्रेशन पर रहेला सेतु का पोस फैमिली लोग सेतु का पोस कामराद लोग लाइक जो एक जना शिष्य दे रहेला ओकर तो वो लोग बहुत अफेक्टिव जानन सर तो हई बहुत राहुल बा जब इतना लेकर अफेक्टिव जाना लोग कितने वो लोगों आगे जाए कि तब उन लोगों के डर लगे लगेला घर में से निकले की लाखों की जन से वो लोग के अब डर लगेला आदमी कैसे फास कर ऐसा चीज नहीं करे चाहना जितना हो सकी आदमी के गाँव पहुँच चाहना लाखों शिशित जो है कोई की सकी अति एगो महाराज से जैसे जैसे देख रहा सर कोई खिस गौजाक से मर गल खिस गौजाक से मर गल एगो एगो एगो मर नहीं है तो उसने शिशित से कोई मरेला तो पारे ही हवे नज़र से देखे चाहना कि ओके बनानी से नहीं करेगी ओके ऐसा नहीं करेगी कि लोग उसे डर
1: आगे बढ़े के तकलीफ हो
0: नहीं करे चाहना
1: तो है कहीं ना कहूँ ना कहूँ है भी मान ला एगो परिवार में एगो शिशित चलावेला तो है समस्या के साथ साथ परिवार जितना संगतिया हवन जितना रिश्तेदार हवन सब कोई के एगो मेंटल थाका भी चलावेला एगो दबाव चलावेला जेकर में समाज के है ये एगो रोल है कि ओकरा स्टिग्मेटाइज नहीं करे के ओकरा बहुत जस्ती सेंसिटाइज नहीं करे के काहे के मीडिया के भी एगो रोल सोशल मीडिया के एगो रोल रहेला और हैजा पर है सब कारण भी कहूँ ना कहूँ एगो दबाव खे कर देवेला उ परिवार खातिन उ व्यक्ति के जितना संगतिया हवन जितना रिश्तेदार हवन उन सब कोई खातिन। और आज हम बात करत हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटिव डे प्रिवेंशन डे कैसे तू है के रोकब कैसे रोकथाम करब है में समाज के जितना रोल है बहुत ऐप होता रोल रहेला उनकर परिवार के उनकर समाज में जितना भी लोग हवन सब कोई के जिम्मेदारी निभाए के बहुत जरूरी हो। और आज के कार्यक्रम में जे तू भाग लेवे खोजत हव तो 4082-8085 पर तू हमने के टेलीफोने करे सकब। अभी थोड़ा घड़ी में जानब जा कि एगो साइकोलॉजी या एगो साइकोलॉजिस्ट या एगो साइकैट्रिस्ट के कौन रोल रहेला इस सब में कैसे ओकर जिम्मेदारी निभावेलन सर। एगो गीत के ब्रेक के बाद फिर उसे कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा।

0: आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे, सुसाइड प्रिवेंशन डे, रोकथाम किस तरह से करनी है, जिन्हें आत्महत्या के विचार भी आते हैं, किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं, किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि इस साल का जो थीम रखा गया है वो है बात करिए, बिल्कुल आप शांत ना रहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका सोल्यूशन भी है, और उसे ढूंढने में बस हमें उनकी मदद करनी है जो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। और यहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका एक बहुत अहम भूमिका होती है समाज में। आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर सर से कि क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोफेशनल्स का, जहाँ पर हेल्पलाइन का क्या रोल होता है, जो लोग ऐसी समस्या से गुजरते हैं वो किस तरह से आप तक पहुँच सकते हैं।
1: देखा, सबसे पहले समझे चाहला कि लैका लोग के का दो चीज है,

यो हो जुन एकादु लोग नै सकेला न पागौँ से बोली न सकेलन छ अपन भविष्य लोग से या बडा लोग हुन्छ कितने अपन फामिमे अपन चित नै सकेलन छ बोली त ओ लोग के परेला कोमिया त एगो सिकोलोग के देखिन्छ त सिकोलोग अकेलेमा लोग से बात करेला ओ लोग के जुन दिल में बा जुन लोग के दिक्कत बा जुन है वो अपन वॉइस आउट करेला त लोग जुन

0: चाहेला कि दवा लेवे की तो सिक्यात्या भेज देवेला पहला सिक्यात्या भेजे कि या तो जेने आलिस्वे कहियो जेने डॉक्टर जेने आलिस्वे देखेला देखेला कि नहीं कोनो कोनो हवन से कोई बा जोन बोला था कोई चीज बोला था तनी कॉम्प्लिके बा तनी चीज बा जोन में कि दवा चाहेना तो सिक्यात्या भेजेला और आज हम निकी जाने चाहेना कि मोइस के जोन पहुंच को बड़ा लोपिताल बा सब में सिक्यात बा सिक्यात बा सिकोलोग बा सोशल वर्कर बा वो लोग के सबके सुतनिया करेगी और सिक्यात आज सब जितना एरिया हेल्थ सेंटर बा वो पे कौन से दाशों दिवा था
1: अच्छा मतलब सगरो
0: सगरो बस के सगरो ओकर जितना हो सके बाला कोस आज हवे पॉलिसी बा कि तो लोग के भीड़ आवे की त आदमी के समझे चाहना जब कोनो दिक्कत बा त एजिते नहीं होगी ई एगो मालाद है कैसे डिप्रेशन हुए बा या तो कौन जितना मेंटल डिजीजेस बा या तो कभी कोनो तनाव में रहन से उसके लागू एगो मलाद नहीं है वो आके बचेन से खाली सिक्यात से या सिकोलोग से तो वो लोग सुलाजे सोचियो ला लोग के को सीमा लग जाना वो सैम पोजन से एगो सैम बोला अभी कि एगो एक एक जना कि अभी एक आध दिन होला कि लोपिताल में आदमी थोल कुछ खातिन एक अजमो ऐसा कर लक वो के लीदे सीधे आवत हल वो आके बोलक कैजुअलिटी में तो के आदमी का दिलन सा तो ओकर प्रॉब्लम कुछ रह खालियो का मैडम को से नहीं बतियाता
1: अच्छा
0: तो ओके बला के ओकर मैडम से बतियो नहीं सा ओकर मैडम बोलक नहीं पेनो प्रॉब्लम बतियायो का संगी रही ओकर सब लीदे चल गल ओकर जो उदासी रह चल गल वो अच्छा खासा मन करे चल गल
1: यानी एगो ब्रिज क्रिएट करे के चाहिला कि कौन समस्या बा ओकरा सुन के
0: ओके समझा के ओके जने को चीज सॉल्यूशन हो के आन दे अब सर त ओ सुलाजे हो चला ओकर सब कुछ चल जाला त ये जब ओ नए आवत लोपिताल तक कुछ गलत कर देवत त सब कोई की दुख होत ओ एगो एगो आदमी जैन में जोन काम करता सब में पेजिया त ये एतिया कि कहियो नहीं सोचे के कि कोनो चीज सैंपन तो ओके इसने रजाब नहीं सगरो आज तो दुखते बा सिक्यात बा सिकोलोग बा मैम कोई डरे ला लोपिताल आई कि प्रीवे ओ में बा सिक्यात प्रीवे ओ में सिकोलोग बा ओ मैं जाके बतिया
1: पर ढेर कोई डॉक्टर जी जैसे अभी स्टिग्मा कर के बात कर ली तो ढेर कोई है ये सोचेला कि जब हम एगो सिक्यात हियाँ जाब हियाँ सिकोलोग हियाँ जाब तो हमने के आदमी बोली हम पगला गल हई है ये से को मजे ढेर कोई डिराला जाए के तो ओकर बारे में तू कुछ बोलब
0: है ये सब ले समझे के कि जो मेंटल डिजीजेस है इहो पागे एगो एगो एगो माला जो दूसर माला दीदे कर कैसे लीदे सीधे वो कॉम्प्लिकेशन कैसे कोई के डिप्रेशन आवेला तो पारे ओकर कॉम्प्लिकेशन है लीदे सीधे तो ओके पहला लीदे सीधे वो एगो येजों से रात खेते करे तो उसने कैसे कोई के ओके हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन वहाँ पहला खेते करे के जब मैं ओके क्रिस कॉजाक नहीं हुई तो क्रिस कॉजाक होला तो एगो येजोंस हो जाला पहला ओके आने के लोपिताल पहला ओके खेते करे के येजोंस पे तो उसने कोई के डिप्रेशन बा या सिजोफ्रेनी बा तो ओके कोनो लीदे सीधे होता है तो एगो येजोंस हो जाला तो येजोंस वहाँ पहला खेते करे के तो ये सब एगो स्टिग्मा सोचब ये सोचब कि नहीं पगला गल नहीं आज हाउ एगो लेपोक रहल आज जो है डिक्शनरी में से पगला जो है मुआ फू जो बन से है निकाले चाहे आगे रहल कि ट्रीटमेंट नहीं एग्जिस्ट रहल आगे रहल कि सब समझत नहीं रहन से आदमी समझे नहीं आगे रहल कि एक कोनो प्रिजन सॉस नहीं चाहतन से कैसे ले विचार में हई सब में बहुत काम होल बा और आज जो है समझल गल बा समझल गल बा कि एगो मलाद जैसे सब मलाद और इहू अपन थ्रेटमो में अच्छा रहला जैसे कोई के को जाबित हो गल तो अपन थ्रेटमो लेवेला तो अच्छा रहला ओका जाबित कंट्रोले रहला तो ई कोनो कोई सोचला कि नहीं हम कोनो प्रॉब्लम मोहताल हो तो हम दवाई लो अब तो लाभी भर पड़ी ले के तो ई अथी आदि खोजाब खोजाब तो ई समझे चाहे ना कि अरे जाबित हो तो जाबित के दवाई लो अथवा तोशो हो तोशो के दवाई लो अथवा तो वो आदि कोई लगा वो लेव अथवा जब वो कंट्रोल में रही तो उसने हटे जब एक कोई डिप्रेशन में बा खोनिक हो गल तो दवाई लेवी लॉन्ग टर्म भी लेवेला जब मैं कंट्रोल में रही
1: तो वो एगो थेरेपी करता और आज ओकर नाम देवल गल बाते थेरेपी
0: थेरेपी करता तो आवली हमनी ऐसा नहीं थी बाकी कातले जब देखी लासा तो वो कहियो पहला ट्रीटमेंट के संगे ओके सिपो साइकोलॉजी को देके तो साइकोलॉग को संगे ओके सपोर्ट करेला और दवाई लेवेला तो वो अच्छा रहेला अपन काम करेला अपन सब लावी नॉर्मल ले जाला जैसे सब आदमी ले जालन सर।
1: तो डॉक्टर जी मान ला कोई के घर में सुसाइड के एगो केस बन गल बा तो उनका परिवार के भी चाहिला एगो थेरेपी।

0: कंटिन्यू करे के एगो काउंसलिंग लेवे के
1: देपो कैसे शुरू में डेफिनेटली मो पहला एगो काउंसलिंग दे के लोग के ओ लोग के समझाए के ओ लोग के ओ लोग के सुटेनिया करे के तो है लंतुराज पर है पोतों जब ये अंतुरे वन सा लोग के लंतुराज अच्छा बा उन लोग के सपोर्ट सिस्टम अच्छा बा उन लोग के लंतुराज कॉम्प्रेंड है कि एगो प्रॉब्लम चला बा उन लोग के सिपोटे करे चाहना उन लोग के हाउ सुचेवा देवे चाहना नहीं कि आके किचके करे चाहना नहीं कि आके ब्लामे करे चाहना कि तोरे खातिन होगल हई खातिन होगल हाउ खातिन होगल तो हई थी तो जब हाउ सुचेवा रहला तो कितने कोई कि नहीं सेहत मैं कितने कोई हाँ मैम सुचेवों के बाद भी कहीं होला कि वो लोग थ्री सौ जान से नहीं सकेल से एक्सेप्टे करे कि
0: ऐसा
1: का होगा उन लोग के घर में तो उन लोग के लोग की वजह कभी उन लोग के दिमाग में यू आए लगेला कि ओकर प्लास में काहे हम नहीं चले नहीं
0: हई
1: सब ऐसा ऐसा जब आवे ना दिमाग में तो उन लोग के चाहेला आके सुचे लेगी उन लोग के चाहेला दुखते हैं आके उन लोग के परेला थोड़ा दिन पे दे कभी खाली सीको खाली सुचे साइकोलॉजिक से नहीं एथी होना पहला कहियो थोड़ा दवाई दे के थोड़ा दिन दवाई पर रहना सर तो समझाओ जरा जब तक वो लोग रे से अपन लाभी नॉर्मल में जो रे से नहीं अपन लाभी ले ले सर नॉर्मल जैसे अपन नाभी ले चला तरन सर तब जाके वो लोग के तब सकेला दवाई आ गई थी वो चला
0: तो डॉक्टर जी मान ला कोई के ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी एगो एगो ऐसा प्रश्न मन में आवा था उनका बहुत डिप्रेशन चलाल बा एंग्जाइटी चलाल बा तो कैसे तू उनका गाइड करबा कि ओकर अलावा जीवन में बहुत चीज है कैसे उनका तू एगो थेरापी या एगो ट्रीटमेंट द्वारा तू कैसे सीखेबा कि कैसे कौन सी चीज अपनाई के कैसे करबा आगे लेके जाए के जीवन
1: देखो हर एगो का से पा गया हर एगो का जो नावेला जो उनके भाव सब तो पहला एनालिस करेगी पहला उन लोग की सुने की पहला सब ले आप होता है उन लोग की सुने की उन लोग की अपन जो उन लोग के दिल में बाप बोले दे के जब बोले लन सर तब समझे पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम हुआ बा तो कहाँ उन लोग के सकब सा एदी करी कौन एदी में ना कुछ देर रहा है जो वो लोग एगो चीज के इतना लेकर लोग सोचे लगेला कि सोचे लन सर है ये लोग के फिनाल तब पहला लोग के समझाए कि नहीं है के अलावा आवरी चीज बा कैसे एगो चीजों के लोग कहता कि नहीं हम एग्जाम में नहीं पास हुई नहीं तो है ये हमारे अब का कर बराबी में नहीं अभी पागों लोग के समझाया चला जाएगा लोग के कि फेल हो जाए तो का करे भाई कि खाली नहीं बताया कि नहीं पास हुई बे हई कर देवे तो आवरी हई कराओ से तो उसे हाउ कराओ से ओके हईयो समझा चाहेला कि
0: ओकर भी भी सीमा बा
1: ओकर कौन सीमा बा फेल हो गेले तो पेन प्रॉब्लम कि हई तोरा हईयो सब करे
0: एगो कहे के जब नहीं बतावे लन सा नहीं जाने लन सा कि जब ऐसा चला तो अब कौन सी करेगी कौन सी
1: करेगी तो वे तो लोग के भविष्य वो लोग के समझाए जा रहे लोग के कि हई में नहीं रेसी हो तो आवरी चीज बा सीमा खाली एगो नहीं बा जब फेल हो तो हई चीज वहाँ हई बहुत ऐप होता है वहाँ हई मौत आई थी वहाँ आने की नहीं तो बहुत सब हमने के पहला हुए सुन के लोग के पोषण लोग सुने लन सा लोग के समझे लन सा तो लोग के गीदे कह लन सा और पहला लोग के जब कोनो लीदे सीसी दिया बात तो लोग के थोड़ा दिन आदमित्व का दिला सा लोपिताल जब मैं लोग के पोष रहा सा लोग के सेवैये कर सा ना कुछ वो लोग के हाउ ले आको पाइमो चाहना वो लोग के चाहना कि कोई वो लोग के संगे बा वो लोग अकेले नहीं बन सा तो हाउ जब आवे लन सा लोपिताल रहे लन सा तो लोग के रेगिलिया मो देखी ला सा लोग के सुचिया साइकोलॉजिक सुचिया सिकियाट्रिक थोड़ा दवाई वो दे पहला ला कुछ देर ला होला कि निमन से वो सोच में वो लोग सुते ला नहीं निमन से तो लोग के वो लोग के नींद रे से आनी ला सा वो लोग के समझा के तब वो लोग हो दिक्कत वहाँ से निकले लन सा
0: था डॉक्टर जी आज के कार्यक्रम के लगभग समाप्ति ले चला ही नहीं सर तो डॉक्टर जी जाते जाते हमने के श्रोता लोगन से हेल्पलाइन के नंबर या कोनो ऐसा नंबर रही जेकर से वो कॉन्टैक्ट करे सकी तो हमार श्रोता लोगन के जरूर बता दें
1: देखा हमने के मिनिस्टर ला सोंते के ओकर हेल्पलाइन बाटे जो वैनकाट तो वैनकाट काम करेला वो एगो निम्बो बा जो मिनिस्टर के बा कतो वैने वैनकाट सगान सिस सोसन सेस वैनकाट तो वैनकाट ये मिनिस्टर के मिनिस्टर ला सोंते के बा एगो बा एसओएस एसओएस ऑफो जो 800 30 30 और फिर ब्रीफेंडर्स वो बा जो के ओकर ओकरो हेल्पलाइन बा जो ओहो एड देवेला 893 93
0: तो हाई
1: नी में होबा पर इस पर जब टेलीफोन है करियन सा कोनो दिक्कत बा कोई अकेले समझता कोई के ऐसा निदे आवता जब सुने के लन सा तो प्रोफेशनल लोग ओ लोग के सुनेला ओ लोग के समझेला ओ लोग के अकॉम्पाइन करेला ताकि ओ लोग के समझावेला कि कोची करे के

0: और ऐप होता हूँ कि ये लोग कोई से बात करियन सा
1: है बतिया के बहुत जरूरी है जी हाँ। आज के कार्यक्रम रहल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर जो 10 सितंबर के मनावल जाए और एक पर ढेर कार्य करता पर बेशक एगो सितवाइये एगो जिम्मेदार नागरिक के नाते हमनियों के भी एगो जिम्मेदारी चलावेला कि हमनी के लौतुगाज में कोनो भी व्यक्ति ऐसा समस्या के सामना करत हवन तो कैसे तू उनकरा एगो एड देब कौन ची देब कौन कौन एडवाइस देब कहाँ जाए के चाहेला जैसे डॉक्टर जी हमनी के बोलन है नंबर वा वेनकट सेट उपलब्ध रहेला जहाँ पर जे तोहरा कोनो सवाल रही तो तू टेलीफोने करे सकब संपर्क बनावे सकब तो एक से एकर संगे हमनी के टेक्निकल टीम काविश संगे रहल उरुसा और शीतल लोबिन हमनी के प्रोड्यूसर और साथ ही साथ डॉक्टर जागेसर तोहरो और तोहर सब टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और बिल्कुल एगो और नवा कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहब जा तबले हमनी के बस अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुभ दिन सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार राधा। पोटली में एक धार्मिक स्थल पर चोरी के मामले में 39 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कल मेट्रो साउथ में सीआईडी टीम ने उसे गिरफ्तार किया और ये बताया जाता है कि वो 100 डोमिसाइल फिक्स हैं। उसे पोटली जिला अदालत में पेश किया गया और उसे पुलिस सेल में भेजा गया है। चोरी किए गए सामान को वापस लिया जा सका है। आपसा बैंकिंग ग्रुप ने विज्ञप्ति जारी की है। ग्राहकों से मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है। बैंक ये दरखास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 402-1000 पर फोन करके बैंक से संपर्क करने की जरूरत है। कल राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया। परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि इस कानून के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब और ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को। नए कानून के तहत इस जुर्म के लिए गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है। इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी, वो भी सख्त। पुलिस अफसरों के पास कैमरे भी होंगे। ये जाने की राष्ट्रसभा के कार्य अब 20 अक्टूबर 2026 को लगाए जाएंगे। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेक्सा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई, 54 बिलियन रुपये का कारोबार हुआ है। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से

0: शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अब नए होर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया है। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था, और जवाब में ईरान ने इराक और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार, आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 2 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:05। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन, सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर हम आपकी सेवा में आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपके साथ के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक चलेगा यह भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। और आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो चलिए, भगवान गणेश का नाम लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

जी हाँ, बस कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हम मनाने वाले हैं। इसकी मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों को। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर सदा बनी रहे।

जी हाँ, ईश्वर का नाम लेते लेते अभी के लिए समय हुआ है कि हम भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े कार्यक्रम विनय अंजलि की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हम विनयांजलि का शुभारंभ कर रहे हैं प्रकाश आर्य के गाए एक भजन से। आप इस भजन का रसास्वादन करें। प्रकाश आर्य।

0: श्रोताओं, आज का संदेश आप सुनने जा रहे हैं आदरणीय पंडिता प्रेमिला सिरतन जी से। हम उनका अभिवादन करते हैं और उनसे निवेदन करेंगे एक मंत्र का पाठ करें और उस मंत्र पर अपने विचार व्यक्त करें।
1: ओम वीतिहोत्रा कृतद्वसुदशस्यन्ता मृतायकं समुधोरो मशंहतो देवेषु कृणोतु सुव ज्ञानयुक्त विशेषो वाणी का उच्चार हो उत्तम संतान और अमर प्रेम व्यवहार उत्तम धन का दान कर रहे आनंद विशेष अमर अमरता प्राप्त हो कृपा करें विश्वेश। श्रोताओं, दंपति अपने दाम्पत्य जीवन में विशेष ज्ञान युक्त वाणी का उच्चारण कर सुखी जीवन जीना चाहते ताकि उनके प्रेम का व्यवहार सबसे होता रहे। प्रभु से प्रार्थना करती कि उन्हें उत्तम संतान भी चाहिए जो हमारे गृहस्थ में उथल पुथल की विकृति नहीं मचा सके। अमर प्रेम व्यवहार से तनाव चिंता बेचैनी असंतुष्टता से बचे रहते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान युक्त वाणी होगी, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार हो तो जीवन में भटकाव समस्या उलझन अशांति खालीपन कहाँ महसूस होगा। हम तो सशक्त और सद्व्यवहार वाली संतान का धन प्रेम पूर्ण से पाने की याचना याचक से करते हैं और उत्तम सत्पात्रों में अपना उत्तम धन दान कर विशेष अगाध आनंद

पाने का प्रभु निवेदन करते हैं, जिससे पाकर स्वयं को बदल सके। ऐसे प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक मंत्र के बोल ही जीवन में उमंग उत्साह का रंग भरते, शांति संतुष्टि की अनुभूति कराते, जो वेद की चमत्कारी को उचार कर तेजस्वी बनते। ऐसी बलवती वाणी चखने से मानसिक स्थिति शांतिपूर्ण और अविचलित रहती। अनश्वर ईश्वर से हमें मुक्ति पाने का उद्देश्य होता, जो हमारे साथ है, जो डरने की क्या बात, जिसके साथ होने से विघ्न अर्चन में दृढ़ निश्चय हमें सुखद अनुभव करा सके। वेद की वरदानी वचन विजय का रास्ता भी आसान करता, आनंद देता, अतिन्द्रिय सुख शांति साहस आनंद ऊर्जा का अनुभव कराने का सहयोगी बनता, ताकि हम ज्ञान रत्नों से खेल सकें, ज्ञान रंग संग चल सकें, जिसे आस पूर्ण होवे और प्यास भी बुझ जाए। इसलिए ऋग्वेद की ऋचा पहले पड़ाव में पुकार उठती, वीति होत्रा कृतद्वसु दश्यंत तामृतायकम। हे परमात्मा, हम दंपति को यज्ञ प्रिय बनने की कामना है, जिस उपास्य की उपासना वेद के ज्ञान युक्त वाणी से विशेष होती, योग युक्त होकर सुनते, जो सबके लिए सत्य प्रिय हैं, जिसे उपासक सुनने के लिए ललायित रहते, चाहे दुख भरे दिन क्यों न हो या उदास भरी रातें क्यों न हो, मन की आँखों से देखने की चाह रहती, क्योंकि वेद के ज्ञान युक्त बोल से परमात्मा ही नजर आते। वीति होत्रा, जिसकी वाणी हमें सुनने की चाह रहती, चाहे हार हो या जीत। दूसरा शब्द है कृतद्वसु, हमें उत्तम संतान की मांग है, जो हमारे लिए सत्पात्र बने, प्रेम सहयोग के व्यवहार उसमें पूर्ण रहे, हमारे लिए ऐसा सत्पात्र का धन बने जो हमारे संग तो रहे, जो विश्वेश हैं दशस्तयंतु, जो सबको सुखी कर गदगदाने वाली संपत्ति हो, जिससे हम संपन्न समृद्ध तो रह सकें, जिस ज्ञान धन से ऐसी लगन लगे कि परमात्मा खेवैया बन हमारे नया पार लगा सके। ज्ञान रत्न का स्वभाव भी हमारी कमाई की सबसे बड़ी दौलत होती, जो लोक परलोक से साथ देती, विरोधी भी सहयोगी बन जाते, और तो और परमात्मा सुख और खुशी का भंडार खोल देते, जिसके पाने के पुरुषार्थ से सारा वातावरण बदल जाता, यजकर्म सफल हो जाता, सत्पात्रों का धन विपत्ति परिस्थिति में अद्भुत शक्ति से पार लगा देता, जिसे नम्रता धैर्य मधुरता सहनशीलता सरलता शांति आदि के स्वर्गिक सुख तो अनुभव कर सके। आगे ऋचा का स्वर्णिम कथन है, समृद्धो रोमशम हतो देवेशु क्रीणोतो दुवह। गृहस्थ जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें उपकारी पशु की याचना करते हैं, जो घास खाकर दूध दही मक्खन घी से हमें तृप्त कर समृद्ध बनाए, खेती एवं दूसरी जगह जाने का साधन बने, जो हमारे लिए हितकारी होवे, हमें देवेशु देव समान माता पिता आचार्य गुरु पुरोहित शिक्षक अध्यापक समान दाता की चाह है, जिनकी सेवा ईश्वर तुल्य हमारे लिए होवे, जो दंपति सत्पात्र में अपने धन का दान कर सकें, ज्ञानी जन की सेवा होती रहे, वे यज्ञ प्रिय होकर सदा सफल गृहस्थी कहलाते, जिनको मंत्र वेता पंडित महात्मा सहयोगी बनकर वेद वाणी विशेष सुनाते, जिसके व्यवहार से सबके अंदर प्रेम शांति सहनशीलता मधुरता निर्भयता धैर्य आदि दिव्य गुण धारण करते, मनुष्य से मानव एवं देव बनाने में लगे रहते, ऐसे सत्पात्र को ज्ञान धन माता पिता गुरुजन देकर संतुष्ट रखते और उस

0: की प्रजा ऐसे बड़े जन की सेवा कर सुखी रहते। माता पिता सदा सुसंतान की प्रभु से याचना करते, क्योंकि माता निर्माता भवती। माता गर्भ से अपने बच्चे को सजाने संवारने और सुरक्षित रखने की प्रार्थना करती है। अपनी गुदगुदाने वाली गोद में कुल दीपक बनाती। पिता आचार व्यवहार पालन पोषण एवं अनुशासन पर विशेष ध्यान देते, जिससे माता शत्रु पिता वैरी न कहलाए। ईश्वर भक्त माता पिता को भली ही संतान मिलती। आचार्य अपने आचार्यत्व से विकारों को मुक्त करते। गुरु अपने गुण विचार से अंदर की शुद्रता को नाश करते, जिसे बुरे विचार हृदय में प्रवेश न करे, जिसके द्वार पर ईश्वर विचार के पहरेदार खड़े होते। उसे ब्रह्मज्ञानी बनकर ब्रह्म की ओर ले जाने वाले ब्राह्मण होते, जिससे संतान में शैतान न पैदा होवे, पुत्र परिवार के लिए न रह जाए बल्कि प्रजा बनकर विश्व की सेवा में जुट जाए, सत्पात्र बनकर यज्ञ प्रिय ऐश्वर्यवान सुखदायक पशु रक्षक बन प्रेम का व्यवहार करे, जिस दीप से सत्य का प्रकाश होता रहे। इस प्रकार वेद के मूल मंत्र का उद्देश्य है कि गृहस्थी अपने उत्तम धन सत्पात्र के को देते हैं, जो लेने की योग्यता तो पा सके, आगे बढ़ने के सहयोग पाकर अपनी कमी की पूर्ति कर सके। प्रभु हमें अविनाशी सहारा देते, जिसे विचार कर्म महान एवं निर्मल तो रहे। जैसे क्रीनोतु दुबह प्रजा से ईश्वर निमित्त सेवा के लिए माता पिता ही सहायक बनते, अपने पैर पर खड़े होने लायक बनाते हैं। सरताज बनाने के लिए अविनाशी सहयोग की आवश्यकता होती, जिसे अंधेरा दूर हटकर बुद्धि संशय रहित हो जाए। हम बड़ों की सेवा कर सुख भोग तो सके, क्योंकि सुंदर वस्त्र व्यक्तित्व को बदल सकता, पर सुंदर व्यवहार सारी जिंदगी ही बदल देते। प्रभु के पास कागज न किताब रखता, वे तो सारे विश्व का हिसाब रखता। इसलिए हम दंपति उत्तम संतान के लिए अमर प्रेम और सद्व्यवहार की याचना करते, ताकि उसके अंदर पवित्रता की शक्ति का जोश भरा रहे। उत्तम धन से शिक्षित कर शासन करते, ताकि सत्य मार्गदर्शन पा सके। सौभाग्यवश स्नेह की सरिता और करुणा के सागर बहे, बुराई का बलिदान कर सके। सुख शांति से भरपूर सफलता का चिराग परिश्रम से जलता रहे, निराशा हट जाए, खुशी भर जाए, आनंद से जीवन सफल बन जाए, जिसकी विशेष कृपा की विनय है। श्रोताओं, अच्छा दिल संबंधों को जीत सकता और अच्छा स्वभाव उसे आजीवन निभा सकता। आशा है कि मंत्र के विचार से हम सब लाभान्वित होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोतागण, अभी आपने पंडिता प्रेमिला जी श्रीरतन को सुना। आशा है आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। हम उनका आभार मानते हैं। इस कार्यक्रम को सजाया श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, उनको धन्यवाद। आपने सुना, आभार। अंत में आप पंडित वाल्मीकि महेश जी के स्वर में एक भजन सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे। हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं विनय अंजलि इस कार्यक्रम के लिए। के 10:37 होने को है, भक्तिधारा इस कार्यक्रम से हम जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के साथ हम ईश्वर से भी जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम के साथ हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, इस कार्यक्रम के साथ हम ईश्वर का स्मरण करते हैं और इस कार्यक्रम के साथ हम ईश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत दिया है। ईश्वर ने हमें जैसे भी रखा है बहुत अच्छे से रखा है। ईश्वर हमारे जीवन को जिस ओर भी ले जा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है अगर उसमें हम अच्छाई ही देखने का प्रयास करें तो कभी बुराई अगर उसमें हो भी तो बुराई हमें उतनी हानि नहीं पहुंचाती है। इसलिए बुरी परिस्थिति में भी मन को सशक्त रखना, विपरीत परिस्थिति में अच्छा सोचना, सकारात्मक सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना से मिलती है, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से मिलती है।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

तो श्रोताओं, जब भी जो है धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है, बुराई बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं मानव जाति को हानि पहुंचती है, तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं मानव कल्याण के लिए और सबकी भलाई के लिए। और ईश्वर जो है अपने भक्तों का भी सदैव साथ देते हैं, किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहायता वो अपने भक्तों को अवश्य पहुँचाते हैं। और कभी भी कोई भी भक्त ईश्वर की कृपा से अछूता नहीं रहता है। ईश्वर जो है अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं और सदैव मार्गदर्शन करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी फिनिक्स के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। फिनिक्स के खासकर इन इलाकों गलियों में रहने वाले ग्राहक रॉयल रोड फिनिक्स, इकबाल रोड, क्यूएफसी, लुल बेकरी, हसन राफा रोड, यहाँ पर आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार दो सितंबर को दोपहर के तीन से साढ़े चार बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो श्रोताओ, भक्ति धारा इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने इतने प्रेम से हमारा साथ दिया, सवेरे से रेडियो मॉरिशस पर आप साथ साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस अंतिम आरती के साथ आज के भक्ति धारा कार्यक्रम का हम समापन करते हैं और जाते जाते मन में यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखे, ईश्वर जो है सदा आपका कल्याण करे और ईश्वर जो है सदा आपका मार्गदर्शन करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ श्रोताओं, हम आपसे लेते हैं। 11 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद 11 बजे के समाचारों के बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम, और हमारी आपकी भेंट होगी कल आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तो आज इतने प्रेम से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अंतिम प्रस्तुति के साथ हम आप

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। पोटली में एक धार्मिक स्थल पर चोरी के मामले में 39 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई मेट्रो साफ CID ने की है। ये बताया जा रहा है कि कई सामानों को की चोरी की गई थी जिसे वापस कर लिया गया। मुजरिम को पोटली साउथ की अदालत में पेश किया गया और उसे पुलिस सेल में भेजा गया है। तहकीकात जारी है। आपसा बैंकिंग ग्रुप ने एक विज्ञप्ति जारी की है। ग्राहकों से एक मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है। बैंक ये दरखास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 4020100 पर फोन करके बैंक से संपर्क करने की जरूरत है। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए हैं, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेगजा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई है, यानी 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। हर साल की तरह हजारों मोशन 8 सितंबर को सेंट क्वा में फौदलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों के मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय ओसामा विक्पे अलावाल पुएन सोसाइटी प्लीजिस एक फ्रैटर्नल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पोलिडोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोटली के बिशप के संदेश से प्रेरित है। मोसियो जॉन मिकाएल जोहन एक न्यायपूर्वक मॉरिशस की इच्छा रखते हैं जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने कहा कि अब नए हॉर्मुज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने यह कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, एक बच्चा शामिल था, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका का मिसाइल ईरान के दक्षिण में एक घर की तरफ दागा गया जहां एक शादी समारोह चल रहा था, और जवाब में ईरान ने इराक और जोर्डान में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। कुवैत और बहरीन में भी हमलों की रिपोर्ट है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेयकीनी के किसी हर्फ को छू भी नहीं सकती, मैं बेयकीनी के किसी हर्फ को छू भी नहीं सकती कि मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया है, कि मैंने यकीन के हर दर्जे पर अपने अल्लाह को पाया है। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैरवाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द, बयान, नात सलाम और आपके पैगाम। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल अनआम की सिलसिलेवार तिलावत से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अल अनआम का पांचवा हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनसे दरख्त वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान का जानदार से निकालने वाला है, यही तो अल्लाह है। फिर तुम कहां बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को मूजिबे आराम ठहराया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बना दिया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं, जो गालिब है इल्म वाला है।

और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं।

की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब सब्ज पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं।

और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि इनको भी उसी ने पैदा किया, और बेसमझे झूठ बोहतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो उन बातों से जो उसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है, और उसकी शान इन बातों से बुलंद है।

0: वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उसकी औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं, और उसने हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज से बाखबर है। यही औसाफ रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज का पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो और वो हर चीज का निगरान है। वो ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है, और वो भेद जानने वाला है, खबरदार है।
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये न कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि हम समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें।

0: और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसी की पैरवी करो, उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से किनारा कर लो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया और न तुम उनके दारोगा हो।
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह बैठे। इस तरह हमने हर एक उम्मत के आमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं, फिर इनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वो इनको बताएगा कि वो क्या क्या किया करते थे।

और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कसमें खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो उस पर जरूर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं, और मोमिनों तुम्हें क्या मालूम है, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आ भी जाएं तब भी ईमान न लाएं। और हम इनके दिलों और आंखों को उलट देंगे, तो जैसे ये इस कुरान पर पहली दफा ईमान नहीं लाए वैसे फिर न लाएंगे, और हम इनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें।

और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये अक्सर नादान हैं। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वह ऐसा न करते। सो इनको और जो कुछ ये इफ्तिरा करते हैं उसे छोड़ दो।

0: और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर मायल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे।
1: अफ़ग़ैर

जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है, सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है जानता है।

0: और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। हज़रत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है ताकि हम उसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल है। बहवाला इब्ने माजा शरीफ।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:26 हो चुके हैं। बुध का दिन है, सितंबर की 2 तारीख है और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 20 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251705। ताखीर ना करते हुए हर बुध की तरह अब आप समाअत फरमाएंगे खतीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم ولكم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا। जिस सुहानी घड़ी चमका तेबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत बसआदत हुई मक्का की ज़मीन पर अब्दुल्ला के घर में आमिना खातून के बतन मुकद्दस से 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए। ऐसा सुहाना मौसम है, न रात मुकम्मल है न दिन का उजाला मुकम्मल है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त जलवा अफरोज़ होते हैं। ज़हन व फ़िक्र में एक सवाल आता है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप सुबह सादिक के वक्त क्यों तशरीफ़ लेकर के आए? अगर आप रात के 12 बजे आ जाते तो, या रसूल अल्लाह आप दिन के 12 बजे आ जाते तो, या रसूल अल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम आप ये सुहाने वक्त में क्यों आए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा से जवाब आता है कि अगर मैं सुबह सादिक के वक्त नहीं आता, अगर रात के 12 बजे आ जाता तो रात का अंधेरा दिन के उजाले को चैलेंज कर देता कि ऐ दिन तुम्हारी कोई हकीकत

नहीं है जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह मेरे अंदर जलवागर हुए हैं, और अगर हम दिन के उजाले में आ जाते तो दिन का उजाला रात के अंधेरे को चैलेंज कर देता कि ऐ रात तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह मेरे अंदर तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए हम ऐसे वक्त में जलवागर हुए हैं कि न रात का मुकम्मल अंधेरा है न दिन का मुकम्मल उजाला है, बल्कि ऐसा सुहाना वक्त था कि जब हम दुनिया में आए अपनी माँ के पेट से बाहर निकले तो दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा है और रात का अंधेरा जाते जाते रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहा है। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तेबा का चाल, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई है तो आज मक्का के हालात बदल चुके हैं, मक्का के दर दीवार से खुशबू आ रही है, मक्का के दर दीवार जो है महकते हुए नज़र आ रहे हैं। सवेरे सवेरे हुए तो लोग अब मामूल के मुताबिक अपने घरों से उठे और उठने के बाद मक्का के चौराहों पर आकर खड़े हुए, एक दूसरे से मुलाकात हुई, सलाम और दुआ होने के बाद एक दूसरे के हालात पूछने लगे। आज का माहौल तो अजीब व गरीब हो गया है, लोग ये बातें आपस में करने लगे, भाई आज क्या हो गया है, ये मक्का में ठंडी ठंडी हवाएं क्यों चल रही है, ये दर दीवार क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये गलियों से मुझको खुशबू क्यों आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतने में एक सरदार आया, उसने कहा ये इनकलाब जो देख रहे हो आप, जो मौसम बदला हुआ देख रहे हो, इस इनकलाब के बारे में मैं बताऊँ आपको क्या हुआ। लोगों ने कहा बताओ, उसने कहा मैं अपने घर से आ रहा हूँ, मेरे घर में जितने भी जानवर थे मैंने देखा वो कल तक दूध नहीं देते थे, आज मैंने देखा उनके थन दूध से भरे हुए हैं, मैंने जब दुआ तो घर के सारे बर्तन भर गए। उसने में एक सरदार ने कहा हाँ हमने भी देखा है, क्या तुमने क्या इनकलाब देखा, उसने कहा मैंने ये देखा कि मेरा बाप बहुत ज़माने से बीमार था, ला इलाज हो गया था, मुल्क शाम और मिस्र शाम की मैंने दवा कराई लेकिन मेरा बाप अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आज सवेरे देखा तो मेरा बाप मुझसे पहले उठ करके तंदुरुस्त सेहतियाब होकर के काम कर रहा था। मैंने कहा अब्बा जी तुम कैसे ठीक हो गए, उसने कहा पता नहीं कैसे मैं ठीक हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा मेरा बाप बिना दवा के अच्छा हो गया। इतने में एक सरदार आया, उसने कहा हमने भी इनकलाब देखा है। क्या इनकलाब देखा, उसने कहा हम सवेरे सवेरे जब उठते और अपने दरवाज़ा खोलते और दरवाज़ा खोलने के बाद में हम जो है दरवाज़ा खोलते तो गरीबों यतीमों की हमारे दरवाजे पर लाइन लगी होती, लेकिन आज जब दरवाज़ा खोला तो कोई भी भीख मांगने वाला हमारे दरवाजे पर नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतने में एक सरदार आया, उसने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो, उसने जवाब दिया हम अपने खेत और बाग बागीचों से घूम करके आ रहे हैं, हमारी सवेरे सवेरे आदत है क्या जब सुबह होती है तो सबसे पहले हम अपने बाग बागीचों का जायज़ा लेकर आते हैं, लेकिन आज हमने अजीब व गरीब इनकलाब देखा, आपको बताएंगे तो हैरत में पड़ जाओगे। लोगों ने कहा बताओ क्या बात है, उन्होंने कहा हमने देखा ये है कि जब हम अपने बाग में गए तो जो कल तक जो है दरख्त सूखे थे वो आज हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और जिनमें फल नहीं थे बेमौसम फल दिखाई दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सरकार की आमद पुरबहार की बरकतें हैं जो मक्का के लोग आपस में बता रहे हैं। ये सारे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में हरम शरीफ की तरफ से एक सरदार तेजी के साथ कदम उठाता हुआ आया, उसने सोचा पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, उसने आकर सलाम दुआ की, कहा क्या बातें कर रहे हो, कि कारोबार की बातें कर रहे हो या कहीं का सफर बांधने की बातें कर रहे हो। लोगों ने कहा भाई तुम नहीं देख रहे ये इनकलाब कैसे बरपा हुआ, हर एक ने अपनी बात बताई कि मेरा बाप बिना दवा के अच्छा हो गया, दूसरे ने कहा मेरी बकरियों के थनों में दूध आ गया था, किसी ने कहा कि मेरे दरवाजे को कोई फकीर और गरीब दिखाई नहीं दिया, फिर एक ने कहा मेरे बाग में जाकर के देखा तो बेमौसम फल दिखाई देने लगे और सूखे हुए दरख्त हरे भरे हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतने में ये सरदार ने कहा तुमने तो ये बात सही देखी है लेकिन जो मैंने देखा अगर बताऊंगा तो हैरत ज़दा रह जाओगे, ताज्जुब में पड़ जाओगे, जो मैंने देखा वो तुमने किसी ने नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतने में सरदारों ने कहा बताओ तो सही तुमने क्या देखा, उसने कहा नहीं हमने जो देखा वो सबसे अलग देखा है। अल्लाहु अकबर, सारे सरदारों ने इस पर प्रेशर डाला, कहा बताओ तुमने क्या देखा है। इतने में ये सरदार बोलने लगा सुनो मेरी ये आदत है कि मैं सुबह को उठता हूँ तो सबसे पहले काबा शरीफ का तवाफ़ करने के लिए जाता हूँ, मैं आज भी अपनी आदत के मुताबिक काबा शरीफ का तवाफ़ करने के लिए गया था और जैसे ही मैंने काबा शरीफ का तवाफ़ किया और तवाफ़ करके बाहर आने लगा तो जैसे ही मैं हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था मैंने देखा कि सरदार कुरेश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक हसीन व जमील बच्चा लेकर के काबा शरीफ के तवाफ़ के लिए जा रहे हैं। तो क्या इसमें हैरत की बात क्या है, क्या हैरत की बात यह है कि इतना हसीन व जमील बच्चा आज तक मैंने देखा नहीं है, मक्कातुल मुकर्रमा की ज़मीन पर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतने में सरदार कहा हैरत की बात यह है कि जैसे ही वो कदम उठा करके हरम शरीफ के करीब जा रहे थे काबतुल्लाह के करीब तो मैं देख रहा था मेरी निगाहों की हैरत ना रही, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो खाने काबा चल करके इनकी तरफ आ रहा है या ये खाने काबा की तरफ चलकर खुद
रुक जा रहे हैं।

अल्लाहू अकबर, जब वो सहने काबा में दाखिल हुए हैं तो मेहराब काबा झुक करके उस बच्चे को सलाम करती हुई नजर आई है और मेहराब काबा से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजले बरेलवी फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ऐसे हैं हमारे आका व मौला हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की विलादत बसआदत की खुशियां मनाओ और खुशियां मनाते रहो। ये सरकार की माँ और सरकार के दादा से हुजूर का मिला सुनते जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कराते हैं सरकार के दादा, और खाने काबा झुक करके सलाम करता है तो सरकार के दादा हैरत में पड़ जाते हैं, मौला क्या कयामत आने वाली है जो ये काबा अपनी जगह से झुक रहा है, क्या मामला है। तब तक के हातिफ गैबी से आवाज आती है, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी गोद में कोई आम बच्चा नहीं, रबियों का सरदार रहमतुल आलमीन है। अल्लाहू अकबर, ये इनकी ताजीम के लिए झुक रहा है। तमाम बुताने बातिल जो उसके अंदर थे वो सारे के सारे मुंह के बल गिर जाते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहि सलातु व तस्लीम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसाद होती तो मक्का भी झूम उठा था और खाने काबा झूम कर कह रहा था आज हमें बुतों से पाक कराने वाला आ गया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा वक़ार और अज़मत है वो दिलाने वाला आ गया है, जो अल्लाह ने हमें मनसब अता फरमाया वो मनसब अता कर रहने वाला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब ये बात बताई सरदार ने, सारे सरदारों ने सुना तो उन्होंने कहा हो न हो, ये बरकतें जो देख रहे हैं हो सकता उसी बच्चे की आमद की बरकतों से हो, ये जो आज बेमौसम जो आप फल देख रहे हैं ये हो सकता उसी बच्चे के आने की बरकत से हो, ये आज जो दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं हो सकता उसी बच्चे की बरकत से हो। लोगों के दिलों में इश्तियाक पैदा हुआ, चलो उस खुश नसीब बच्चे को, खूबसूरत बच्चे को देखे तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सारे सरदार तेजी से दौड़े हरम शरीफ की तरफ और खाने काबा के दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। तब करके सरकार के दादा ने सरकार को तवाफ कराया और घर ले जाने लगे। जैसे ही दरवाजे पर देखा तो सारे सरदारों ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद सरकार के दादा ने क्या मामला है, खैरियत तो है सब। उन्होंने कहा सरदार खैरियत से है, आप हमारे सरदार हैं, सरदार कुरेश हैं, हमें यह बता चला है कि आपकी गोद में जिसको आपने तवाफ कराया है जजीरतुल अरब में किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया है, हम देखना चाहते हैं ये जो दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं क्या इसी बच्चे की बरकतों की बुनियाद पर तो नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा, सरकार के दादा से इसरार हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर चादर पाक पड़ी हुई है। तब तक के सरकार के दादा जान ने वो चादर को हटाया और सरकार का नूरानी चेहरा जब सरदारों ने देखा अल्लाहू अकबर कबीरा, तो गोया आला हजरत की जबान में उन्होंने कहा होगा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, ये कमाल वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शमाए के दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जबा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने पाक मुलाजा करो। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो जो फितने मिटाकर चले, अब मेरी निगाहों में जस्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाहू अकबर कबीरा, उनका चेहरा ऐसा है खुर्शीद था कि जोर पर क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, उनके चेहरे पाक की शान ये है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में है जमाना तारीख हो रहा है महर कब से निकाब में है, उनके हुस्न का आलम ये है लमयाति नजीरु कफी नजरिन मिसले तु न शुद पैदा जाना, जब राज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना, सारे हसीनों के हुस्न को जमा कर दिया जाए तो मुस्तफ़ा के तलवे मुबारक के हुस्न का भी मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की खैरात दुनिया में तकसीम होती है। अल्लाहू अकबर कबीरा, तभी तो हसान बिन साबित ने मुस्तफ़ा जान अहमद के सहाबी रसूल ने, जो मुस्तफ़ा का सब मुस्तफ़ा के दरबार का शायर है और जिसने नबी का हुस्न देख करके मुस्तफ़ा की तारीफ की तो कहा था वह हसन मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमल मिन कलम तली दिन निसा खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आई बिन का अन्न का कद खुलिकता कमाता शाहो, जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा था तो देख करके कहा था कि मेरी आंखों ने या रसुल्ला आप जैसा हसीनो जमील देखा नहीं है और आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, या रसुल्ला अली का सलातु व तस्लीम आप सरापा हुस्न है, और क्यों ना हो जिनके हुस्न की कसम खुद रबी इरशाद फरमाता वद्दुहा
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من

0: उला वला सौफ योती का रब्बू का फतरदा, जिनके हुस्न की कसम अल्लाह इरशाद फरमाता, व शमशी व दुहा वल कमर ईदा तला व नहार ईदा जल्ला वल्लैल ईदा यग्शा, अंदाजा करें कि वो मुस्तफ़ा जाह रहमत कितने खूबसूरत होंगे, अल्लाह ने कितना हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा जाह रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न व जमाल जब देखा तो सारे सरदारों ने कहा इनसे ज़्यादा हसीन बच्चा हमने आज तक नहीं देखा है। सरकार के दादा जान ने दिखा दिया तो सारे सरदारों ने कहा ये जो आज माहौल बदला है ये इन्हीं की आमद की बरकत से बदला है, ये इन्हीं की पैदाइश की बुनियाद पर है जो अल्लाह के इनाम हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सरकार के दादा जान ने सरकार की माँ की गोद में जाकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया। सरकार की माँ फरमाती है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई जैसे औरतों को तकलीफ़ होती है, और सरकार की माँ फरमाती है मुझे कोई ब्लीडिंग भी नहीं हुई जैसे औरतों को होती है, बल्कि जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने मक्का में बैठ कर के मुल्क शाम तक के ऊँटों को देख लिया था। अल्लाहु अकबर। सरकार की माँ इरशाद फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में जलवागर हुआ था तो उसने अपनी पेशानी को सजदे में रखा था, और सजदे में रखने के बाद उसकी जबान से तीन कलमे लिख ले। पहला जुमला निकला अल्लाहू अकबर कबीरा, और दूसरा जुमला निकला वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, और तीसरा जुमला मेरे बेटे की जबान से निकला था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर कबीरा। सरकार की माँ फरमाती है मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो उसकी एक उंगली शहादत वाली उठी हुई थी, गोया दुनिया को बता रहा था कि अल्लाह एक है। मुस्तफ़ा जाह रहमत ने पहले आने के बाद ज़मीन पर सजदा किया है और अपनी पेशानी को सजदे में रख करके दुनिया को यह बताया है कि खुदा की बारगाह में पेशानी झुकेगी, किसी और की बारगाह में यह पेशानी नहीं झुक सकती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी को फरमाते हैं पहले सजदे पर रोजे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत है, यह मुस्तफ़ा जाह रहमत की आमद है जो सरकार की माँ फरमा रही है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके आगे बयान करेंगे कि हुजूर का बचपन कैसा गुजरा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा खातरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद सुनहरी बातें। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और इखलाक ही काफ़ी है। शीरी यानी मीठा कलाम, नर्म ज़ुबान इंसान के गुस्से पर आग पर पानी का असर रखती है। मुसीबत के आलम में भी मुतमईन नज़र आओ और मुश्किलात के बावजूद भी हमेशा खुश रहो। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है।

मौज़ सामीन, माहे रबीउल अव्वल रहमतों, बरकतों और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा करने का महीना है। हर तरफ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक हो रहा है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत सिर्फ़ आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ तक महदूद नहीं, बल्कि इस मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इज़हार ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत, रहम, सब्र, दरगुज़र, सच्चाई, अदल और इंसानियत

का अंदर्ज दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि किसी का दिल ना दुखाएं, कमज़ोर का सहारा बने, मोहताजों की मदद करें और अपने अखलाक से दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। मौज़ सामेईन, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, प्रोविडेंस से समीमा इसाले सवाब

हैं अपने वालिद मरहूम मुस्लिम रसूल के लिए, जिनकी पहली बरसी है, उनके लिए दुआएं मगफिरत की गुजारिश भी कर रही हैं समीमा पोविदों से। इसके अलावा पेचीवेजे सैंपिया से बीवी फ़ेरोज़ा, बेटियां ज़ैना और फरहीन, मरहूम अशरफ पीरबख्श, जहाँ मरहूम अशरफ पीरबख्श के लिए दुआ मगफ़िरत की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा वाकवा से मुस्लिम चिबाई भी हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं।

मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें सिर्फ ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाला नहीं बल्कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने वाला भी बना दे। हमारी ज़ुबानों को दुरूद व सलाम से, हमारे दिलों को इश्क़े रसूल से और हमारे किरदार को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: ले।
1: मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बाबरकत माह रबीउल अव्वल के सदक़े हमारे दिलों में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद

थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर

नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो AM2 के साथ, जी हाँ रेडियो मॉरिशस के साथ। और आज बुधवार 2 सितंबर 2026 और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028085408 और मैसेजेस आप कर सकते हैं 5251700।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए बढ़ते हैं आगे। 2:40 हुए हैं और यहाँ पर अगला गाना विश्वानी डुमन जी के लिए जो रहती है वाक्वा, और गाना खासकर वो मांग रही हैं अपनी बहन इंदिरा शारदा, सहेली है नीला, प्रतिभा शोभा और गीता गजाधर के लिए।

तो बजकर 42 मिनट हुए हैं, चले बढ़ते हैं आगे। और ये गाना द बर्निंग ट्रेन से लिया गया, और आशा जी की आवाज़ में, खासकर ये गाना अक्षय और रीना के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बासा रोड का ट्रिब्यून। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर

0: बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक पूल मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे सरकारी धन निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। आलबियों के फिशरीज रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक समय में की जा रही है। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। और मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी आगुआ के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मॉरिशस के विदेश मामलों क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रितेश रामफोल ने स्वागत किया है। उनके अनुसार ये परिणाम उनके प्रशासन के तहत शुरू की गई बातचीत और वार्ताओं का नतीजा है। खासतौर पर थर्ड कंट्री फैब्रिक व्यवस्था यानी किसी तीसरे देश से प्राप्त कपड़े के इस्तेमाल की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है। ये प्रावधान मॉरिशस के स्थानीय कपड़ा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और उधर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और आपदा लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4,500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों की तलाश कर रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है, जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रासुवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई दी। वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: Radio Mauritius.
4: Aapki pasand.
5: 3:05 हो गए हैं। श्रोताओं एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है और आप लोग सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम 4 बजे तक और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 4028085402808। हमें आपका इंतज़ार है, धन्यवाद। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे अनीता जी के लिए जो रहती हैं मोडालबिया, और वो इस समय हमें सुन रही हैं और गाना खासकर वो मांग रही है अपने भाई की शादी की सालगिरह, भाई और भाभी, भाई का नाम है संजीव और भाभी चंदा के लिए। जी हाँ, सभी ईटू परिवार की ओर से, नागेश्वर परिवार, लाल जी परिवार की ओर से बधाई हो आपको। हमेशा आपकी

0: की पसंद।
1: तीन बजकर 11 मिनट हुए हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं माधुरी और परी के लिए। जी हाँ, दिल की बातें दिल ही जाने, क्या बात है। और हमारे सब रेडियो मॉरिशस के सभी लिसनर्स के लिए रूप तेरा मस्ताना। चलिए खूबसूरत गाना हो जाए और आप लोग भी साथ मिलकर एंजॉय कीजिए।

आपकी पसंद। सवा तीन बज चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमें सुन रही है हमारी प्यारी विद्या जी जो रहती हैं यूनियन पार्क, और गाना वो मांग रही हैं अपनी बहनों के लिए, सटी, सुरेखा, बबीता, चाची कुमारी के लिए।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

आपकी पसंद। 3:23 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रही हैं अनीता जी, और गाना खासकर वो मांग रही हैं अपने पोते अंश के लिए। आज वो 1 साल के हो गए हैं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद प्यटुब परिवार और राम की सुन परिवार की ओर से, और साथ ही साथ में कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वालों के लिए और खासकर हमारी पूरी एमबीसी टीम के लिए।

3:41 हुए हैं। यूनियन पार्क के रहने वाली खास गाना हम चलाएंगे, प्रीति मयूर आदर्श वेदना विमला विवेक और केनिठा के लिए। चलिए ताल से ताल मिलाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

की पसंद। ताल से ताल मिला जहां टाइटल सॉन्ग, और यहां पर हमें सुन रही है सिमला जी और वो रहती है बेलरोज। गाना खासकर वो मांग रही है अपनी बहन रूमा आरती, बहन इंदिरा, भाई जो है राकेश धीरज, बेटे नमलेश, बेटियां जो है बेटी उनकी बेटी कीर्तिना के लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए। सत्य पे सत्ता फिल्म से लिया गया।

आपकी पसंद। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया है दोस्तों। जी हाँ, चलिए यहाँ पर अगला गाना खानदान फिल्म से लिया गया और ये गाना हम चला रहे हैं सरिता जी के लिए। वो रहती है कठुबोन और साथ देने के लिए हम आपको कहते हैं धन्यवाद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और साथ में है साथियों और गाना खासकर उनके लिए। और चलिए तमाम सुनने वालों के लिए

चलिए यहाँ पर बड़े दिल वाला फिल्म से लिया गया. चलिए ये खूबसूरत गाना उदित नारायण और बेबी प्रीति की आवाज़ों में, और ये गाना खासकर बंधु परिवार के लिए जो रहते हैं थयोले.

आपकी पसंद। जहाँ प्यारे दोस्तों आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना, दहलीज फिल्म से लिया गया, 1986 से लिया गया, जी हाँ। और गाना गाएगा खुशी, अर्जुन, वीमा, कुनल और केशवि के लिए, और वो लोग रहते हैं मेबर्ग और इस समय हमें सुन रहे हैं। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी गीत के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे और आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और हमारी मुलाकात होगी शाम के 5:15 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी हाँ, ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे मराठी प्रोग्राम शीर्ष की प्रस्तुति में। और चलिए, हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस गीत को आप लोग एंजॉय कीजिए।

0: जब जब तुझको बीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: जी हाँ, पुन का अंदाज तो है बड़ा ही मस्ताना और इस प्रोग्राम का तो हमें बड़ा ही दीवाना 5:15 हो गए हैं।
0: अंताक्षरी

प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। एक और मुलाकात के लिए हम कब से थे बेताब। बुधवार की है शाम और आपके लिए अंताक्षरी प्रोग्राम। आपका सेवक रोशन आपके खिदमत में उपस्थित है। थोड़ी देर में उषा जी भी यहां पर आ जाएंगी और आज आपके लिए जो विषय हमने चुना है बड़ा ही आसान सा है। 27 अगस्त को मुकेश चंद्र माथुर जी यानी मुकेश दा जी का निधन हुआ था और उसी उपलक्ष में हम आपसे सुनना चाहेंगे। जो पहला गाना आपकी ओर से होगा मुकेश दा पर, आप कोई भी गाना गाएंगे, और जो दूसरा गाना आपको गाना पड़ेगा हम एक धुन चलाएंगे, उसे पहचानिए सही तरीके से और शुरुआत से आपको गाना पड़ेगा। तो नंबर वही है 402-808-5100-2100 पर आप लोग प्लीज हमें फोन करें, इस प्रोग्राम में भाग लें और पहला गाना मुकेश साहब पर आप गाइए और दूसरा गाना हम आपके लिए धुन चलाएंगे और आप पहचानने की कोशिश करें और गाने की भी आप कोशिश करें। तो चलिए पहला गाना आपके लिए हम चलाते हैं और जल्दी जल्दी आप नंबर मिला दीजिए 402-808-5100-2100।

0: जी अंताक्षरी में प्रेम का सागर पाना इतना मुश्किल तो इतनी मुश्किल तो नहीं है। चलिए हम स्वागत करते हैं अपने पहले श्रोता का। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते श्यामा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप भी कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं श्यामा जी, आपका स्वागत है। तो चलिए, आज आप पहली श्रोता हैं इस प्रोग्राम की और आपको गाना पड़ेगा पहला गाना मुकेश साहब पर। ओके
1: मुकेश, हाँ जी। तो आज साधना का भी जन्मदिन है तो उसी पर।
0: नहीं जी, मैंने आपसे मुकेश साहब का। ओके गाइए।

0: रहा था।
1: बहुत सुंदर सा गाना शमा जी ने गाया हिमालय की गोद में फिल्म से, बहुत ही सुंदर। मुकेश डा की आवाज़ में आपने श्रद्धांजलि अर्पित तो कर ली मुकेश साहब को। चलिए, आपने कहा साधना जी का आज जन्मदिवस है, 2 सितंबर 1941 को उनका जन्म हुआ था, तो आपके लिए हम एक धुन चलाएंगे जिसमें साधना जी नज़र आई थी। ओके, इस धुन को आप पहचानिए और गाने की आप कोशिश करें। ओके, सुनिए।
0: ओके।

0: चलिए शमा जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। बताइए हमें ये कौन सा गाना है, बताइए हमें। तो चलिए शमा जी, हम आपको सुन रहे हैं और लगे हाथ हम उषा जी का यहाँ पर शानदार स्वागत करते हैं। वो आ गई हैं। उषा जी, आपको नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्ते सबको।
0: कैसी हैं आप?
1: हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और
0: हाँ,
1: आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। जानते हैं कि अंताक्षरी प्रोग्राम चलता है तो आप कभी मिस नहीं करती हैं।
1: बिल्कुल कभी मिस
0: कभी
1: नहीं करती हूं।
0: कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि
1: चाहे हम यहाँ स्टूडियो में नहीं है लेकिन घर पर बैठे बैठे हम सबको सुनते हैं।
0: बिल्कुल। शमा जी, शमा जी, हेलो शमा जी। ओ शमा जी तो चली गई, कोई बात नहीं। ये गाना है। जी हाँ, आजा आई बहार, साधना जी पर ये गाना हुआ था फिल्म राजकुमार से। चलिए हम दूसरे श्रोता का इंतजार करते हैं। नहीं, वो तो चली आई है। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कौन है?
2: नमस्ते जी,
1: नमस्ते आपको।
0: क्या नाम है आपका
2: जी?
0: क्या नाम है?
2: सुदेवी जी।
0: सुदेवी जी फ्रॉम ओका। ओके सुदेवी जी, आपका स्वागत है।
2: ठीक है ना?
0: ठीक है जी, बिल्कुल।
2: उषा जी ठीक है ना?
1: हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बस ठंड है और ठंड के सिवा कुछ नहीं है।
0: क्या करें, इस ठंडी का मौसम का आप भरपूर मजा लीजिए। ओके सुदेवी जी, आप गाइए पहला गाना मुकेश साहब पर।
2: मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों ने जाने समन्ना, तू ही नजारों में।
0: जी हाँ, ये गाना साथी फिल्म से लिया गया है। उषा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं?
1: मेरा यार भी तू है, मेरा प्यार भी तू है, और यहाँ हम हमेशा प्यार बांटते हैं चाहे रेडियो के माध्यम से, और यहाँ पर हमने लाइव टिकटॉक भी शुरू कर दिया है। अगर घर पर बैठे बैठे आप लोग हमें देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और एम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन जी नहीं,
0: रेडियो
1: रेडियो क्या करें, आदत से मजबूर, रेडियो मॉरिशस पर आप

0: हमें देख सकते हैं लाइव।
1: बिल्कुल।
0: और चलिए
1: व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिए आप।
0: व्हाट्सएप नंबर है 5251 7005।
1: okay.
0: आप इस पर भी हमें फोन कर सकते मैसेज कर सकते हैं।
1: ओके okay, सुदेवी जी, और हमारे सारे श्रोताओं को पता चल गया कि कैसे भाग लेना है। तो चलिए सुदेवी जी, आपने गाया फिल्म साथी का गाना। अब आपके लिए जो हम म्यूजिक लाए हैं, धुन, इसे पहचानिए। और ये धुन उसी फिल्म पर है जिसमें शक्ति कपूर नजर आए थे, और शक्ति कपूर का जन्मदिवस भी सितंबर महीने में है। तो सुनिए।

0: जी सुदेवी जी, बहुत आसान सा धुन है ये तो। गाइए। जितेंद्र हैं इसमें और जया प्रधा भी है। याद आया?
1: नहीं
0: याद आया, लेकिन आपके पास समय है अभी। नहीं, अगर आप उषा जी को सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा।
2: तोफा तोफा तोफा लाया लाया लाया।
0: सुना आपने? दिल पे छाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपके लिए।
2: अरे यार,
0: ओके, धन्यवाद आपको सुदेवी जी, बाद में मुलाकात होगी, बाय।
2: शुभ रात्रि। और यहाँ पर जुड़ चुके हैं, हाय हेलो टू यू, आप है मीनाक्षी और साथ में है जय श्री कृष्णा उषा जी और रोशन जी। जय श्री कृष्णा।
0: जय श्री कृष्णा आपको
2: मिस्टर लव। हेलो चाची, हेलो चाचा, कैसे हैं आप? और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं इतने सारे लोग और कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ नर्मदा जी, नमस्ते आपको। शारिश हेलो, तो आप प्लीज़ इस लाइव को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और जी हाँ अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकें
0: और वो लोग भी शेयर करें।
2: जी हाँ बिल्कुल। और हम यहाँ देखते हैं कि लाइन पर कौन है।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी,
3: नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई जी,
2: प्रणाम आपको।
0: क्या नाम है आपका?
3: मैं हूँ शोभा पोपड़े मुझसे जी।
0: शोभा जी, आपका स्वागत है। शोभा जी पोपड़े मुझसे, कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं?
2: हम भी बिल्कुल ठीक हैं।
0: चलिए आपका पहला गाना मुकेश साहब पर आप गाइए प्लीज।
3: जी हाँ। आप लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत पुकारे है, तेरा सुना परा रे संगी, तुझे मेरे मीत बुलाते है।
0: जी हाँ, आ लौट के आजा मेरे मीत, रानी रूपमती फिल्म का गाना, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है। अब आपके लिए जो धुन हम चलाएंगे वो आधारित है किस पर, यानी विधु विनोद चोपड़ा पर। एक डायरेक्टर है, बहुत ही बड़ा निर्देशक है, उसका जन्मदिन भी सितंबर महीने में ही है। हाय हाय नहीं, बहुत आसान सा है।
2: हाय रे हाय, नींद नहीं आई।
3: अरे वाह,
0: नींद आ जाएगी आपको अगर ये आपको पता चल जाएगा तो। ओके, सुनिए सुनिए शोभा जी।

0: बहुत आसान सा है, अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, गाइए।
1: जी हाँ जानती हूँ, लेकिन इस टाइम पर नहीं आता।
0: टाइम पर नहीं आता है, लेकिन टाइम है आपके पास।
2: टाइम पर नहीं आता, कहाँ नहीं आता है।
0: आता है, लेकिन आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा दिमाग पर। चलिए उषा जी से हम मांग करेंगे,
1: जब हम फॉर्म पर आते हैं ना
0: तो सब भूल जाते हैं,
2: तो ब्लैंक।
0: यही परीक्षा है आप लोगों का, आप लोगों की परीक्षा है, क्योंकि हम कहते हैं हमेशा की रेडियो सेट के साथ आप जुड़ते रहे। चलिए उषा जी, आप ऑन द जॉब।
2: कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। जी हाँ, क्या कहना है, क्या सुनना है आपको, सिर्फ सुनना है अंताक्षरी ऑन,
0: कहना नहीं है, गाना है
2: रेडियो मॉरिशस।
0: बिल्कुल।
2: और यहाँ पर बेबीज एंड किड्स कलेक्शन मेरा ख्याल से एक शॉप है,

0: हाय टू यू इंदिरा लोटन जी है, हेलो टू यू, और शेना भी हेलो बोल रही है. हेलो
1: हेलो शेना जी,
0: आप दोनों को मेरा नमस्ते फ्रॉम निशा. हाय निशा, हाउ आर यू? तो प्लीज ये लाइव शेयर करे, लाइक करे और फॉलो करे, और कैसे बोलते हैं तापोते करे, ताकि हमें और और शेना जो है हमें ईएलएन से सुन रही है, देख रही है ईएलएन. तो चलिए शेना, बहुत धन्यवाद आपको. और हम किसको लेंगे लाइन पर?
1: कुछ भी ना क्यों ना कहें,
0: कुछ तो गाना पड़ेगा आपको. हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: नमस्ते.
2: हेलो नमस्ते
1: देवी जी.
2: नमस्ते उषा जी.
0: नमस्ते आपको.
1: कैसी हैं देवी जी? ठीक हैं?
2: हाँ ठीक है.
1: ओके वेरी गुड. तो अगर ठीक है तो पहला गाना मुकेश साहब पर गाइए.
2: संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे है, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं हम, बहते धारे हैं.
1: जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गाना गाया आपने रफ्तार फिल्म से. आपने तो रफ्तार ले ली है. तो चलिए दूसरा गाना आपको गाना पड़ेगा. और ये जो म्यूजिक है, ये जो धुन है, ये राकेश रोशन साहब पर आधारित है. सुनिए और पहचानिए.

0: थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। ये तो मेरा फेवरेट गाना
1: पहली श्रोता है जिसने दोनों गाने गाए हैं विषय के अनुसार। आप
0: है।
1: बनती
0: खट्टा
1: हैं फर्स्ट
0: मीठा,
1: ऑफ द
0: खट्टा
1: खट्टा
0: मीठा गाना
1: मीठा।
2: खट्टा मीठा
1: बिल्कुल,
2: जहाँ।
1: कभी खट्टा कभी मीठा।
2: धन्यवाद आपको,
0: थैंक
1: धन्यवाद।
0: यू।
2: मिलते हैं बहुत जल्द, और यहाँ
0: ओके
2: पर हमें सुन रही है, देख भी रही है प्रेमिला फ्रॉम बेल्जियम, और प्रिंस एंजल हेलो टू यू। हम तो ठीक है, और आप लोग कैसे हैं? चलिए आप बातचीत भी कर सकते हैं। प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम माय हस्बैंड। नहीं प्रिंस, इट्स नॉट अ फरमाइश प्रोग्राम,
1: कोई बात
2: यहाँ पर
1: नहीं,
2: हम अंताक्षरी
1: कार्यक्रम कर रहे
2: कार्यक्रम कर
1: हैं।
2: रहे हैं।
1: कोई बात नहीं, अगर ये अगला गाना हम चाहेंगे थोड़ा एक टुकड़ा ही सही उनके नाम कर देते
2: तो चलिए
1: हैं।
2: गाना हो जाए,
1: हो रहा है।
2: आपके हो रहा है आपके हस्बैंड सुभाष के लिए। ही इज सो क्यूट। क्या बात है सुभाष जी,
1: क्या बात।
2: ऐसे क्यूट रहे हमेशा, हम ये कामना करते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बस ये जो पेज है उसको आप फेमस कर दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कौन है।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी।
2: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
1: नमस्ते आशा जी,
2: नमस्ते।
1: कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप दोनों अपने सुनाइए।
1: ठीक हैं जी, बिल्कुल। तो चलिए, मुकेश साहब की जबरदस्त फैन तो आप हैं ही।
0: जी बिल्कुल, ऑल इज गुड।
1: ओल्ड इज गोल्ड, तो चलिए शुरू कीजिए, बी ए बिट बोल्ड।
0: मैं मुकेश और ललिता जी पर एक गाना
1: कोई बात
0: गाऊंगी।
1: नहीं। ओके
0: ए शमा

सुंदर सा गाना कन्हैया फिल्म से, बहुत ही सुंदर। ओके, अब आपके लिए जो धुन हम चलाएंगे वो आधारित रहेगा विवेक ओबेरॉय पर। ओके, बहुत धन्यवाद, कोशिश ही करनी चाहिए। ओके, सुनिए।

0: जी आशा जी,
1: हाँ
0: विवेक ओबेरॉय पर, ये आफताब पर और रितेश देशमुख पर याद आ गए।

0: बहुत धन्यवाद आशा जी, थैंक यू सो मच,
1: पहचान लिया, ओके बाय बाय। जी हाँ, दिल दे दिया है, लगता है कि टिकटॉक पर बहुत से लोग हमें जवाब दे रहे हैं।
0: जैसे कहते हैं ना, तापोते करना है
1: तापोते, और बिल्कुल, अगर आपको दिल देना है तो प्लीज आप ये तापोते कीजिएगा,
0: तापोते कर कर के हाँ, हमको हॉट मिलता है, लाइक
1: हाँ जी, बिल्कुल हाँ।
0: तो यहाँ पर ये बर, बर,
1: बढ़ता जा रहा है,
0: बढ़ता जा रहा है,
1: अच्छा है तब।
0: और किसी ने कहा, समंता ने, कि फिल्म का नाम है मुझे हक है,
1: मुझे हक है, ये इस फिल्म का नाम
0: नहीं, वो फरमाइश कर रही है, नहीं समानता, ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है,
1: विवाह वाला गाना।
0: सो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया है। और धनिश जो है कह रही है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5251700 5 5 2 5 1 7 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 हेलो
2: नमस्कार उषा बहन, नमस्कार भाई रोशन,
1: नमस्कार
0: हरीश भाई,
1: बोबासे से आप बात कर रहे हैं। चलिए बोबासे ही से आप
2: मस्ताना है।
1: मौसम मस्ताने है बिल्कुल। तो इस मस्ताने मौसम में मुकेश दा का कोई गाना हो जाए।
2: अच्छा मुकेश की गाया हुआ।
1: हाँ गाई।
2: जिक्र होता है जब कयामत का

0: जो चाहे तो रात होती है। गुड।
1: बहुत
2: बढ़िया
1: ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने माय लव फिल्म का गाना गाया है, बहुत ही सुंदर। चलिए, ये तो हो गया आपकी ओर से ये गाना। अब आपको हम देंगे एक धुन, और अक्षय कुमार पर आधारित है ये गाना, सुनिए।

0: जी हाँ, हमारी चाहतों का
1: मिट ना सकेगा फसाना।
0: जी बिल्कुल, और आपने सही पहचाना। बहुत धन्यवाद हरीश भाई। ओके, बाय बाय।
2: शुक्रिया, बाय
0: बाय।

0: जी हाँ, अक्षय कुमार आयशा जुल का फिल्म खिलाड़ी, और यहाँ पर उषा जी तो बहुत हैं खिलाड़ी और मैं तेरा अनारी।
1: अरे नहीं, हम दोनों हैं खिलाड़ी
0: और हमारी जो श्रोता है सबसे बड़ा खिलाड़ी है, है ना। अगर भाग लेने के लिए, फोन लगाने के लिए, लाइन लगने के लिए
1: ऑफ कोर्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
1: घर पर बैठे बैठे हम आप हम

0: मैं टिकटॉक पर भी देख रहे हैं ना,
1: और
0: आप बोल रही है कि ये दोनों मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं?
1: जानती आप उठेंगे
0: उठाएंगे हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं तो एक एक करके
2: जी हाँ जिसका फोन सबसे पहले आता है ना जी उन्हीं का हम उठाते हैं पहले। चलिए बताइए हमें आप क्या गाएंगी मुकेश साहब पर।
1: हाँ जी एक गाना है।

0: सचमुच दीवाना कर देने वाला गाना है ये तो, है ना?
1: जी
0: बहुत ही सुंदर। आपका पहला गाना तो बहुत ही बढ़िया रहा। अब आपके
1: जी
0: लिए जो हम धुन चलाएंगे रणबीर कपूर पर है,
1: ओके
0: पहचानिए।

0: तस्वीरें मुझे नहीं मालूम।
1: सुंदर गाना
2: लेकिन
1: है,
2: आपने गाना पहचान लिया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।
1: बन जाती है।
0: ओके,
1: बाय
2: बाय।
3: क्या कहना है।
2: हेलो जी, यहाँ पर माला जी है। हेलो रोशन भाई, उषा बहन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप दोनों तो हमारे दिल में बसे हो। ओ थैंक यू,
1: सो स्वीट ऑफ यू,
2: थैंक यू सो मच
1: सो मच।
2: इसी पर आप इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, फॉलो करें, लाइक भी करें प्लीज। और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते जी, आपका रेडियो सेट बहुत ही ऊंची वॉल्यूम पर है। नमस्ते, रेडियो सेट को आप बंद कर दें प्लीज।
4: हाँ हाँ ओके।
1: श्रोताओं से मांग है कि जब वो फोन करें तो रेडियो सेट उनके करीब नहीं होनी चाहिए या उनका जो वॉल्यूम है बंद कर दे प्लीज।
4: ओके जी।
1: क्या नाम है आपका देवी जी?
4: जी मैं राधा जी बोल रही हूँ।
1: ओ राधा जी, मोचिदा से
4: नहीं,
1: कौन दिमाग से राधा जी का स्वागत है। अच्छा राधा जी, पहला गाना आप गाइए मुकेश साहब पर।
4: हाँ
1: गाइए।

0: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
1: सुंदर सा गाना आपने गाया, कभी कभी फिल्म से लिया गया है ना।
0: हाँ,
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये रहा आपका गाना। अब आपके लिए हम जो गाना चलाएंगे, जो धुन, ये शबाना आज़मी जी पर है। ओके, सुनिए।

0: गाइए, सुंदर सा गाना
1: हाँ
0: है
1: हाँ जानती हूँ, लेकिन आ नहीं रही है,
0: लेकिन
1: कोशिश कर
0: आपके
1: रही हूँ।
0: पास, हाँ जी कोशिश कीजिए क्योंकि आपके पास समय है।
2: कौन सा गाना है
1: यार, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है।
0: नहीं याद आ रहा आपको? अच्छा जी, चलिए हम उषा जी से गुजारिश करेंगे कि ये गाना आपके लिए गा
1: हाँ
0: दें।
1: दोबारा दोबारा, हाँ
0: गा दें
2: दोने ना

0: याद आया आपको
1: हाँ जी, हाँ
0: राधा
1: जी,
0: जी, कोई बात नहीं, कोशिश ही
1: ओके
0: करनी
1: ओके
0: चाहिए आपको, है?
1: ओके, बहुत बहुत
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: ओके,
0: बाय।
1: शुभ रात्रि।
0: ये फिल्म जितनी सुंदर है उतनी ही उनके जो गाने हैं बहुत ही हसीन गाने हैं, है ना? और राहुल डे बर्मन का संगीत
2: लाखों में एक,
0: लाखों में एक, लेकिन ये लता जी ने नहीं गाया, ये तो

0: आरती मुखर्जी ने गाया है।
1: हाँ। और यहाँ पर हम देखते हैं किसकी आवाज हम सुनने हाँ। जा रहे हैं,
0: सुनिए। हेलो,
2: नमस्ते उस्ताद जी, नमस्ते रोशन जी,
1: नमस्ते, नमस्ते हमारी प्यारी कविता जी, हाउ आर यू
0: जी? हंसती मुस्कुराती हुई कविता जी हमेशा आती है बहुत ही अलग तरीके से। कैसी हैं आप?
2: लाइन लगाते लगाते थक गई जब सप्ताह।
0: हम चाहते हैं कि आप थकें क्यों? क्योंकि एक तरफ से आपके जो कैलोरीज है ना वो घट जाते हैं, आप एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, इसीलिए थकना चाहिए। क्यों थकती हो? अच्छा तो बताइए हमें, मुकेश साहब का कोई गाना है आपके पास?
2: हाँ है।
0: गाइए
2: कोई कोई गा दिया है।
0: कोई बात नहीं, गाइए प्लीज।
2: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, गलत रहा खराब है कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, ठीक है ना?
0: जी हाँ बिल्कुल सही सही आपने गाया है मुकेश साहब पर, बहुत धन्यवाद। अब आपके लिए जो गाना हम चलाने वाले हैं वो है साधना जी पर। ओके
2: अच्छा।
0: साधना जी पर एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, आप इसे पहचानिए और गाने की आप कोशिश करें।

0: जी हाँ, साधना जी पर और सुनील दत्त साहब पर ये गाना था। कविता जी गाइए।
1: सोच रही हूँ, नहीं आ रही है।
0: कोई बात नहीं, और मौका है आपके
2: सोच
0: पास
2: के
0: अभी।
2: समय निकलता जा रहा है,
1: समय निकलता जा रहा है,
0: लेकिन सोचें, दिमाग पर जोर डालें। नहीं याद आ रहा आपको
1: जी? नहीं।
0: ओ सुनिए सुनिए ये गाना।

0: जी हाँ, जहां जहां पर आप जाएंगी हम दोनों को आप पाएंगी। धन्यवाद आपको, बाय बाय कविता जी, बाय। कितना हसीन गाना है, बहुत ही सुंदर। किसने क्या जवाब दिया बताइए हमें उषा जी, टिकटॉक पर?
1: टिकटॉक पर माला जी ने सही जवाब दिया है। नहीं सभी का, वो एक क्लू देना चाहती है। क्लू देते देते हमने गाना गा लिया है। लेकिन शोभा जी जो है, जो वाकवा रहती है, उन्होंने सही जवाब दिया है। और यहाँ पर यश सेज हेलो फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, हेलो टू यू।
0: इंग्लैंड से, आयरलैंड से सभी लोग सुन रहे हैं,
1: सुन रहे बेल्जियम से, थैंक यू सो मच। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कौन है। हेलो
0: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते
2: उषा जी को भी नमस्ते।
0: उदय भाई कैसे हैं आप?
2: ठीक है।
0: ओके जी, आज रफी साहब पर नहीं है बल्कि मुकेश दा पर है।
2: तो रफी साहब नहीं है तो शमी कपूर के सब पर गाएंगे।
0: ओके वेरी गुड, मुकेश साहब की आवाज में गाइए प्लीज।
2: सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार उस पे मरेंगे, फिर भी ये दिल तुम पे आ गया।
0: जी हाँ बिल्कुल, आपने शमी कपूर साहब पर गाया, ब्रह्मास्त्र फिल्म से लिया गया। और आपको कहेंगे बहुत ही धन्यवाद इस गाने के लिए, क्योंकि बहुत कम गाने हैं जो मुकेश साहब ने शमी कपूर जी के लिए गाया था। चलिए ये गाना तो हो गया आपका। अब आपके लिए जो धुन हम लाए हैं वो धुन शक्ति कपूर साहब पर है। ओके सुनिए।
2: Mm-mm.

0: नहीं बोल नहीं आ रहा है, लेकिन सती पे सता का क्या गाना है,
1: याद नहीं आ रहा आपको?
0: गौर से देखा जाए तो सतपति पे है पता, तोरी तरह
1: कोई फर्क
0: तरह
1: नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। हाँ ये गाना है
2: इज्जत
1: बिल्कुल।
2: औरतें दुखी पे दुखी
1: दुखी
2: हो
1: हो
2: या
0: ओ
2: सत्य
0: सही,
2: पे सत्ता, धुन
1: लेकिन आपने पहचाना तो सही भाई जी।
2: तो पहचान लिया है लेकिन बोल जो है। हाँ
1: कोई बात नहीं, लेकिन आपने
0: साथ देने
1: कोशिश
0: के
1: की है,
0: लिए
1: धन्यवाद आपको,
0: बाय।
1: बाय।
2: यस यहाँ पर शैलेंद्र गिल है, मेरा साया इज दैट टाइटल सॉन्ग, यस यही
1: यस
2: है,
1: ऑफ कोर्स।
2: ऑफ कोर्स यही है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कौन है, इतने सारे लोग हैं लेकिन समय बहुत ही कम
1: बहुत ही
2: है।
1: कम है।
2: हेलो,
3: हेलो बहन जी, नमस्ते उषा बहन और भाई रोशन को भी मेरी प्रणाम।
1: नमस्ते जी,
2: प्रणाम
1: ये तो अमृता
2: आपको
1: जी हैं
2: अमृता
1: फ्रॉम
2: जी।
1: ओकुले।
2: चलिए आपकी पसंद का एक गाना सुनाइए।
1: गाइए मुकेश साहब पर, गाइए।

जी हाँ, वक्त करता जो वफा, ये तो रहा आपका पहला गाना मुकेश साहब पर, बहुत ही सुंदर। अब आपके लिए जो गाना हम लाए हैं, जो धुन, इसे पहचानिए, और ये धुन राकेश रोशन साहब पर है। ओके, सुनिए।

0: बिल्कुल सही गाना आपने गाया है, पर याद है
1: रोज ने कहा आज उनसे पहले मुलाकात।
0: ओके धन्यवाद अमृता जी,
2: धन्यवाद भाजी, आपको शुभ संध्या, दोनों भाई बहन को
1: शुभ संध्या, आपको
0: शुभ संध्या। क्या होगा क्या पता, हमें जो होगा देखा जाएगा,
1: जो होगा देखा जाएगा, और यहाँ पर हम देखते हैं।
0: आपने कहा रोज ने सही जवाब दिया,
1: रोज ने सही जवाब दिया, ओ वाओ थैंक यू।
0: हेलो
1: हेलो जी, हाँ जी हम आपको सुन रहे हैं,
0: क्या नाम है?
2: जी नमस्ते, और रोशन को भी नमस्ते।
0: नमस्ते नीला जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
0: अच्छा चलिए मुकेश साहब पर कोई गाना गाइए।
2: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो।
0: जी हाँ बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया। चलिए ये जो गाना ये धुन आपके लिए हम चलाएंगे, ये है करीना कपूर पर। ओके सुनिए।

0: ओके
1: ओके
2: ओके
1: ओके नीरा जी, फिर से मुलाकात होगी, बाय
2: बाय।
1: चलिए इसी गाने के साथ, नीला जी के साथ ही अंताक्षरी प्रोग्राम यहाँ पर

0: समाप्त हो जाता है। आप लोगों ने साथ दिया, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को। और फोन कॉल्स आ रहे, लेकिन क्या करें उषा जी, नहीं ले पाएंगे। 5:52 तो हो गए हैं, 6 बजे आप समाचार सुनेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। और अभी के लिए हम उषा जी से मांग करेंगे कि आज आप विषय के अनुसार कोई गाना गाना चाहती हैं।
1: मेरा साया।
0: अच्छा जी, क्योंकि
1: से शुरू कर दूं।
0: अच्छा, क्योंकि आज साधना जी का जन्मदिवस

0: बहुत ही धन्यवाद उषा जी इस बहुत ही मधुर गाने के लिए, सुरीली आवाज में आपने गाया है।
1: धन्यवाद।
0: और मेरा साया फिल्म का गाना से ही के गाने से ही आज का ये प्रोग्राम समाप्त हो जाता है उषा जी, और श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: क्या कहें, हम आपको यही कहेंगे कि हमारी मुलाकात होगी
0: बहुत जल्द
1: और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और संगीत के साथ आप गुनगुनाते रहिए, यही है बेस्ट थेरेपी।
0: बिल्कुल, बेस्ट थेरेपी ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां पर आपको मिलता है संगीत रस। चलिए, नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि, बाय
0: बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। बुधवार 2 सितंबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दी। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का रुख मॉरिशस के साथ समझौते को लेकर बरकरार है। कल संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर सवाल किए। मुलाकात इस बुलेटिन में मॉरिशस के 2 ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुषा जीतन को अमरीकी कंपनी कोलोसल लेबोरेटोरीज एंड बायोसाइंसेस की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अमेरिका ने अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। पिछले 25 वर्षों से लागू ये व्यापार कार्यक्रम मॉरिशस समेत उप सहारा अफ्रीका के कई देशों को अमरीकी बाजार में तरजीही पहुंच प्रदान करता है। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। अगवा की अवधि बढ़ाने के लिए मॉरिशस ने इस साल मई और जुलाई में 2 बार अपनी दलीलें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखे थे। ये विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब मॉरिशस 6 से 9 दिसंबर तक होने वाले 18वें अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगवा का 2 साल का विस्तार मॉरिशस के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय पर आया है। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका स्पष्ट संकेत कल वेस्टमिंस्टर से मिला, जहां संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किए गए। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की कि मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल है और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सकर स्टार्मर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें बदलने के लिए जल्द ही एक उपचुनाव होगा, जहां वे 11 वर्षों से चुने गए थे और जिसे लेबर पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आज शाम मुलाकात हम करते हैं मॉरिशस के 2 ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुषा जीतन को अमरीकी कंपनी कोलोसल लेबोरेटोरीज एंड बायोसाइंसेस की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। दोनों छात्र इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जीनोम इंजीनियरिंग और संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। इस तरह मॉरिशस के इन 2 युवा प्रतिभाओं को हाल के वर्षों की सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक में योगदान देने का अवसर मिला है। डोडो को फिर से जीवित करने की कोशिश में अब मॉरिशस की भी अपनी वैज्ञानिक छाप दर्ज हो रही है।
2: ये दुनिया के वैज्ञानिक जगत की सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक है डोडो को फिर से जीवित करना। मॉरिशस का ये प्रतिष्ठित पक्षी जेनेटिक्स की मदद से दोबारा अस्तित्व में आ सकता है। और इस रोमांचक अभियान के केंद्र में मॉरिशस के दो युवा छात्र हैं। उन्हें अमरीकी कंपनी कोलोसाल लेबोरेटरीज एंड बायोसाइंस से शोध के लिए छात्रवृत्ति मिली है।
3: We welcome Arusha and Lakshay.
2: हम उरुषा और लक्षय को अपनी टीम में स्वागत करते हैं। उरुषा हमारे कंसर्वेशन टीम के साथ काम करेगी, जबकि लक्षय जेनेटिक मॉडिफिकेशन टीम के साथ काम करेगा। शोधकर्ताओं की टीम ने डेनमार्क के एक संग्रहालय में रखी दो की खोपड़ी से निकाले गए डीएनए का इस्तेमाल करके दो के जीनोम को पहले ही अनुक्रमित और पुनर्निर्मित कर लिया है। अब वे डीएनए के एक एक हिस्से को फिर से तैयार करके दो की विशेषताओं को दोबारा विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लक्षय बुदादू कहते हैं,
4: Nous vous prenons une bout de l'ADN du dodo qui nous pour injecter dans une cellule. Sa cellule là nous pour réinjecter lui dans le Nicobor pigeon. Et là quand ça pigeon là lui pour connaître 19, nous pour gagner une nouvelle génération. Sa nouvelle génération là lui pour énormément de changements. De sa petite boule ADN qui nous a ajouté là. Et là, ça disait là, nous a fait les clous, nous pouvons gagner un nouveau pigeon. Ça pigeon là, nous a grandi. Et là, au ça pigeon là, nous pourrions faire même affaire que nous pouvons injecter un petit bout de l'ADN encore là-dedans. Et petit à petit, de génération en génération, nous pourrions ici arriver à une affaire qui est closely related à nous deux qui nous tiennent.
5: Chaque fois qu'il nous peut prendre un petit échantillon de l'ADN, il peut coûter pour une petite caractéristique spécifique. Donc, il y a un bout de l'ADN qui peut plus pour se larbec, il y en a pour se liger, il y en a pour se grossir.
2: ये छात्रवृत्ति इस पक्षी को उसकी मातृभूमि में वापस लाने का रास्ता भी तैयार कर रही है। वहीं उरुषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता हासिल कर रही है, संरक्षण के पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी। उरुषा जीतन कहती है, इन जानवरों पर कैमरा डेटा बिठाए गए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अलग वातावरणीय स्थितियों में एक जानवर का बर्ताव कैसा है। जैसे एक दो की आवाज को हम ट्रैक कर सकते हैं। इस ध्वनि से हमें पता चल जाता है कि ये जानवर ठीक है या नहीं। दो की ध्वनि नहीं है हमारे पास, पर दो के आसपास मौजूद अन्य जानवरों पक्षियों के माध्यम से हमें दो तक जाने का रास्ता मिल सकता है। इन दोनों छात्रवृत्तियों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कुलुस

0: ताल कंपनी के बीच हुए एक समझौते के कारण संभव बनाया जा सका है। नंदिनी गुली गोपाला कहती हैं,
1: कोलोसल
0: और आईबीएल ने सहयोग और आदान प्रदान के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा उद्देश्य है दो दो परियोजना का हिस्सा बनना। अब फेलोशिप के माध्यम से ये परियोजना सफल हो पा रही है। इन दोनों युवा मॉरिशनों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से उनकी शोध छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
2: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागुस्की द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि बदलाव की मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल है और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद है। सुनते हैं।
3: संसद का कामकाज फिर से शुरू होते ही मंगलवार 1 सितंबर को शागस मुद्दे को लेकर नए प्रधानमंत्री एंडी बरहम की सरकार से सवाल किया गया। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस से जुड़े सवाल जवाब के दौरान कंजर्वेटिव सांसद डॉक्टर ल्यूक इवांस ने पूछा कि क्या यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के तहत भविष्य में होने वाले खर्च के लिए धन की व्यवस्था की गई है। एससीडीओ के पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरी उमा कुमारन ने कहा,
4: This is about the long-term safety and national security.
3: ये मामला यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश लोगों की लंबे समय तक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अड्डे पर लंबे समय तक संचालन संबंधी नियंत्रण और उसकी सुरक्षा बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते का पूरा आधार यही है। इस समझौते में वित्तीय व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस समझौते के लिए धन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और रक्षा मंत्रालय के मौजूदा बजट के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। कंजर्वेटिव सांसद वेंडी मोर्टन ने जब इस समझौते को लेकर अमेरिका के समर्थन के बारे में सवाल किया तो उमा कुमारन ने जवाब दिया, अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते का बार बार समर्थन किया है और जब से अमेरिका ने पहली बार इस समझौते को मंजूरी दी थी तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने हमेशा साफ कहा है कि समझौते को मंजूरी देने और इसकी पुष्टि करने से पहले अमेरिकी सरकार की सहमति जरूरी है। हम अमेरिका और मॉरिशस के साथ मिलकर आगे का रास्ता तलाशते रहेंगे जो यूके के हित में हो और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करे। अब अगला कदम न्यूयॉर्क में हो सकता है जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर बैठक होगी। नए बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात से शागस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाने और वाशिंगटन की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।
2: वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों ने कल शाम कैटरबोन में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया था। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जिनमें विदेशी श्रमिकों की स्थिति, ड्रग्स और नेपाल में घातक बाढ़ शामिल रहे। वॉइस ऑफ हिंदू के अध्यक्ष कृत मनोहर को सुनते हैं।
5: नेपाल dans sa situation très très difficile et nous remercier ban pays qui peut aider Nepal et mon pensée qui L'île Mauricie, pour donner un petit coup de main, ben, Népalais, Pessibir, il arrive près de 3000 disparus et nous pensons dans nous la prière.
2: और जैसे हम आपको बता रहे थे कि सुर्खियों में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन की राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहतकर्मी उन कामगारों को तलाश रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रही हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रसूवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई

0: थी, वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इससे सरकारी धन और निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी दमास्कस और नेशनल डिजिटल रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर शामिल है। परियोजना को ब्रिटिश हाई कमीशन का भी समर्थन प्राप्त है।
1: बाढ़, तूफान, पानी का उमड़ना, जलवायु खतरों के चलते एम्स्टर परियोजना को लॉन्च किया गया। एम्स्टर परियोजना के कोऑर्डिनेटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेन्स के डॉक्टर जय दुर्गा ने कहा, सैटेलाइट जानकारियों के आधार पर हम इनमें से कुछ डाटा का पता लगा रहे हैं। जलवायु केंद्रों की ओर से ये डाटा प्रोसेस किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लंबी अवधि के लिए पूर्व सूचना की जा चुकी है। जलवायु खतरों को कैप्चर किया जा चुका है, अब हम इनका मूल्यांकन करेंगे, वर्तमान एवं मूल ढांचों से संबंधित है। इस औजार की बदौलत महत्वपूर्ण मूल ढांचों की कमजोरी के बारे में जानने का और मार्गों तथा जल नेटवर्क और बिजली लाइनों का पता भी लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, इस परियोजना के तहत ये देखा जा रहा है कि विगत में यानी पिछले 30-40 वर्षों में किस तरह देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ, मॉरिशस में किस तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ा, मसलन मिट्टी का कटना जैसे कि माकोंदे सड़क के पास आदि। इन जानकारियों की बदौलत अधिकारीगण निर्धारित कर पाएंगे कि प्राथमिक तरीके से किन ढांचों को सुरक्षित रखना है और किस तरह बेहतर रूप से निवेश दिशा देनी है। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इलाकों को लेकर चिंतन कर रही है, ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के अनुकूल एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज है। ये रोड मैप है जिसके अंतर्गत सरकार को प्रस्तावित कर रही है कि कहां पर सही तरीके से निवेश करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित परियोजना एम्स्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कारेन्स और नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर की साझेदारी से चलाई जा रही है। बरतानी उच्चायोग का भी समर्थन प्राप्त है। अनुमान है कि एम्स्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह से कार्यरत हो सकती है।
0: नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के साथ मिलकर भावी दमकल कर्मियों को ड्रग ओवरडोज की स्थिति में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार कर रही है। इस पहल के तहत 70 से अधिक नए भर्ती हुए दमकल कर्मियों को ओवरडोज के प्रमुख संकेतों की पहचान करने और ऐसी स्थिति में तुरंत उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के लिए इस तरह का ये पहला सहयोग है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में मॉरिशस में ओवरडोज के करीब 60 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन भाषा के इस्तेमाल और उसकी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित सिलेक्ट कमेटी ने इस मुद्दे पर आम जनता से अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत करने की अपील की है। लिखित सुझाव, याचिकाएं या ज्ञापन संसदीय कार्रवाई के दौरान क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं, आधिकारिक कार्यवाही के रिकॉर्ड और संसदीय बहस को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने जैसे विषयों पर दिए जा सकते हैं। अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। सभी पत्राचार नेशनल असेंबली के क्लर्क के नाम भेजे जाने हैं। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्ट लुइस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रिहाना मंगली गुलबुल और न्याय मंत्री गाविन तथा अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में 1 से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं।

0: बढ़ती उम्र की आबादी के साथ बुजुर्गों की देखभाल मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगातार महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है। इसी दिशा में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के लिए तीव्र चिकित्सा देखभाल की नई इकाइयां शुरू की गई हैं। इन नई इकाइयों में जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य उपचार से जुड़ी सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप बेहतर और अधिक समर्पित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि क्षेत्र में कीटों पर बेहतर नियंत्रण के लिए मॉरिशस ने एक नई टेक्निक अपनाई है। देश में अब एक्सरे इरेडिएटर की सुविधा उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों को निष्क्रिय यानी बांझ बनाने के लिए किया जाएगा। इस उपकरण का उद्घाटन बुधवार को गजवी में किया गया। ये अब तक इस्तेमाल की जा रही गामा किरणों पर आधारित प्रणाली की जगह लेगा। ये नई टेक्निक अमरीकी ऊर्जा विभाग और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटोरी के साथ साझेदारी का परिणाम है। इस टेक्निक के जरिए बांझ नर फलों की मक्खियों को वातावरण में छोड़ा जाएगा ताकि उनके प्रजनन को कम किया जा सके और इस तरह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले इन कीटों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से एफ्रीसीज क्षेत्रीय परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत मॉरिशस के करीब 2,500 रोड्रिक्स के 1,700 मछुआरों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने को अधिक टिकाऊ, अधिक लाभदायक और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार गतिविधि बनाना है, साथ ही स्थानीय मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करना भी है। और इस क्षेत्र में रहते हैं समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्यवाही के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। एल्बियो के फिशरी रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक समय में की जा रही है। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाजों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका देश समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। अंत में एक सवाल, क्या हो अगर प्रकृति के रंग खुद एक कहानी कहने लगी? पिछले 2 वर्षों से शक्ति कालिकाओं ने मॉरिशस के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर पेड़ों की झाल, पौधों और प्राकृतिक सामग्रियों को तलाशा और उनसे प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट तैयार किए। इसी खोज से जन्म हुआ एमुवॉस नामक एक किताब का, जिसमें कला, कविता और प्रकृति का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। शक्ति कालिकाओं इस किताब का वितरण खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे संवाद और इस रचना को साझा करने का महत्व देना चाहते हैं। एमुवॉस का उद्देश्य हमें फिर से सुंदरता की ओर लौटाना है, उस प्रकृति और आसपास की उन चीज़ों की ओर जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में देखना भूल जाते हैं। ये किताब मानो एक नियंत्रण है, थोड़ा ठहरने, चीज़ों को एक नई नज़र से देखने और अपने आसपास मौजूद सुंदरता को फिर से महसूस करने का।
1: 2 वर्षों तक शक्ति कालिकाओं ने रंगों को निकालने के लिए सामग्री, वस्तुओं, पेड़ों की छाल और पौधों की तलाश में पूरे द्वीप का दौरा किया है। इस्तेमाल की गई हर सामग्री ने एमुवॉस नामक उसकी पुस्तक के पन्नों को संजोने में मदद की है। शक्ति कालिकाओं कहती है, इसकी कल्पना मैं करती रहती हूँ, ये सब सामान कोयला, लोहा, पौधा, इतिहास में कैसे इसका प्रयोग होता है। तब मैं इतिहास की खोज में निकली। मेरी खोज के दौरान मुझे पता चला कि मॉरिशस ने खुद अपने लोहे का उत्पादन किया है। शक्ति के पास बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। अपनी मुलाकातों और अनुभवों के दौरान उसने कई

0: खोज की है और अपनी इन खोजों से उसने कलाकृतियां तैयार की हैं। शक्ति कालिका कहती है,
1: मैं retrouve une plante qui appelle indigo, c'est une couleur qui bleu. Au fait sa couleur bleu là, indigo, living depuis une plante depuis ce feuille.
0: पाठक को इसमें कुछ लेख भी मिलेंगे जो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं।
1: Couleur qui me trouve l'eau du territoire, ça veut dire l'eau l'île même. Et à travers sa histoire Maurice, sa grande histoire Maurice là, raconte aussi une histoire tout sa bande d'immun qui travaille pour que Maurice vienne, ça qui nous connaît aujourd'hui.
0: ये पुस्तक स्वयं लेखिका द्वारा वितरित की जा रही है क्योंकि वो सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे जुड़ने और अपनी रचना साझा करने को प्राथमिकता देना चाहती हैं। एमवांस एक ऐसे गीत की तरह है जो हमें सुंदरता की ओर हमारे आसपास मौजूद उन चीजों की ओर वापस ले जाना चाहता है जिन्हें देखने के लिए हम कभी कभी समय निकालना भूल जाते हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र के पूर्वी हिस्से में आज बुधवार सुबह हुए एक भीषण बस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि 28 अन्य घायल हुए हैं। ये दुर्घटना दक्षिण सिनाई प्रांत में रेड सी के तटीय शहरों दहाब और नुवेबा के बीच सड़क पर हुई। मिस्र और जॉर्डन की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हादसे में मारे गए लोगों में 10 तक जॉर्डन के नागरिक शामिल हो सकते हैं। दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ये इलाका दुनिया भर में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि हादसे के समय बस में कुल कितने लोग सवार थे। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी घायलों को 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। बढ़ते हैं अब मौसम के हाल की ओर गीता सुनारायण के साथ।
3: हमारे इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में और दक्षिण के समुद्र में आज रात न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:17 पर सूरज निकलेगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और सहयोग देने वाले शिव का भी सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शुभ समाचार सुनिए। जगू रोड बेलमो में, जगू रोड बेलमो में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्री दिमनदेव मदन, श्री दिमनदेव मदन जिन्हें मनोज मासों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे जयप्रकाश मदन के घर बेलमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथकों को शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। मोसल मोराफ्री पॉइंट कानूनी में, मोसल मोराफ्री पॉइंट कानूनी में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री जनेश्वर केदू जिन्हें जोहर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर पॉइंट कानूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 1:30 PM। अब्दुल रजाक स्ट्रीट अपरवेल में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयरानी सौमी पैदाशनाम पोपिया जिन्हें देवी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विवेक सौमी के घर अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। जॉन की रोड कौंदमास्क पावे में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्रीजीत रामचंद जिन्हें प्रेम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौंदमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमोरो

Rothhof was 11 AM. आंकड़े मौसिया लोकुले में आंकड़े मौसिया लोकुले में 72 साल के 72 years old के श्री गुरुदत्त नन का जिन्हें गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सातना ननका के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। रायरोड रिविया जो पोस्ट में 65 साल के 65 years old के श्री सुदर्शन मोरिमुतु जिन्हें दर्शन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सरोजिनी मोरिमुतु के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। नंबर 33 पोपेनिसी स्ट्रीट बोबासा में 74 साल के 74 years old के श्री देवनारायण जिलाल जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे उनके घर बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबैल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 3 PM। थ्रेबो नंबर पांच वाकुआ में 81 साल के 81 years old के श्री सूरजलाल मानिक जिन्हें सोना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामामेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 2 PM। जुक्रे रोड नोटरडम में 92 साल के 92 years old की श्री रूप नारायण सिंह अजोदा जिन्हें किशोर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य ऋजेश अजोदा के घर नोथोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10:30 AM। ब्रांच रोड मौलाशो में 77 साल के 77 years old के श्री इंदरजीत तिलक जिन्हें सुब्रानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमा लुबीन बेलमाओ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। नंबर 30 मोसलमा वीओएस फोबाक ब्रांच रोड पुत्रदो हमलेट में 77 साल के 77 years old के श्री परानंदा नारायणन जिन्हें दासन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती राजमणि नारायणन के घर पुत्रदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो मोटेल एस्पेरेंस पीटों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8 नून। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: आर्य सभा मॉरिशस और वेद प्रचार समिति के तत्वावधान में श्रवानी मास के उपलक्ष में इन समाजों में श्रवानी यज्ञ का आयोजन कर रहा है। मोसलमों से तौंद्रे हमलेट रोड आर्य महिला समाज में गुरुवार 3 सितंबर को शाम 3:30 बजे और श्रवानी पूर्णहुति रविवार 6 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक फ्लैक आर्य जिला परिषद तथा डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज आश्रम के मिले जुले सहयोग से बेलमो में संपन्न की जाएगी और गुरुवार 3 सितंबर को दिन के 12 से 1 बजे तक हिंदू पब्लिक ऑफिसर्स कल्चरल एसोसिएशन पोर्टविस के विष्णु क्षेत्र मंदिर में 35वां वार्षिक यज्ञ का आयोजन कर रहा है।

毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台9月2号的节目，我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌

曲节目。今天所播放的歌曲有天空就是爱，常回家看看，365个祝福。希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ विश्वास है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सच्चे मन से भक्ति है वहाँ कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ आज का कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भजले प्रभु का नाम को हम प्रसारित कर रहे हैं। रात्रि के हम सफर, हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और सत्य की विजय का पर्व है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियों चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मन में विश्वास और कर्म में सच्चाई हो तो रास्ता अवश्य मिलता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में हम बात कर रहे हैं और मुरली का नाम न ले ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही श्रोताओं, श्री कृष्ण की मुरली प्रेम का संदेश देती है। उनका मुस्कुराता हुआ स्वरूप जीवन में आनंद भरता है और उनका गीता का ज्ञान हमें कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, दुनिया भर में साथ ही साथ मॉरिशस भर में हम कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी पर आइए अपने मन के भीतर की नकारात्मकता को दूर करें और श्री कृष्ण के प्रेम, करुणा और ज्ञान को जीवन में अपनाएं। तो श्रोताओं, जाने से पहले इस जन्माष्टमी बस इतना याद रखिए, कृष्ण को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सच्चे प्रेम, अच्छे कर्म और निर्मल मन में ही कान्हा की झलक मिल जाती है। मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए और कृष्ण के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाइए। तो चलिए, कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं एक आरती के साथ। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक अंजू को हम धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को

अली महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अंजू टेक्निकी मदद दे रही हैं आज की इस बाबरकत महफिल में। अल्लाह पाक और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने जा रहे हैं। आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं।

जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सरासर रहमत है जो अल्लाह की तरफ से जहाँ के लिए तोहफ़ा बनाकर भेजी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों की रब ने जिस घड़ी तजसीम की, दौर के हर गुल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरतरी तस्लीम की। हुस्न की फहरिस्त में यूसुफ़ का पहला नाम था अलैहि सलाम, दस्ते कुदरत ने फिर उसमें आखिरी तरमीम की। सल्लल्लाहु अलैहि व असहाबिही व बारिक वसल्लम।

जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, ताजदारे अरब पे हों अरबों सलाम, मजहरे ज़ात पे हों अरबों सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैह।

0: Continuous music. Music. RM3.
1: 7 days a week. 24 hours a day.
2: Live.
1: This is Radio Marxist.
3: रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सबके स्वागत बा। माइक पे हम हैं दिलों के संगत आवजी प्रताप सिंह। आज है बुधवार की रात 2 सितंबर साल 2026। अब इसे लेके रात के 11 बजे प्रस्तुत बा भोजपुरी तरह का कार्यक्रम। थोड़ा मन करता को भी भोजपुरी गीत सुने कहते नंबर वर्क में या जगह देवी जगोवी चैंक और टिकटॉक पेज हम ऑन करब रात के 10 बजे। और बेशक कोनो भी गीत हमारा मन करा था मांग के कोई के जन्मदिन बा शादी के साल गिरा जाए से कोई कैसे गीत मांगा था तो टेलीफोन गिरा का जगह दे वे जगह भी सैंक पर तो चल सुर प्रोग्राम के आगे बढ़ाओ जा बेचो बर जान गावल गीत के साथ आगल चेकन चांडो चलक साथ सुनाब जा गीतवा।

0: चलिए भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का।

0: सब जो जो गीत चलाता है रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन की लहरों पे, और अजय प्रताप सिंह के साथ रात भर ये ठंडा कर रहता बोले दिन से दिन की घामा करी कहाँ घामा कर लखो रात ठंडा ठंडा फर्जी से शान ने ठंडा और अब जो ठंडा छिसी जिसी पानी भी बरसा था बाप रे बाप के ठंडा पूछा था लिबिया में लिबिया चलाल बा और बेशक कह सको दे वे जो भी चैंक पर सब बजाय टेलीफोनी करे और अभी कुछ संगति आप लाइन पे और कैसे मिल अब जा शोभा जीवन पॉम्पले मुझसे हेलो शोभा जी
1: हेलो प्रताप जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: कैसे हवा
0: हम ठीक है तू कैसे हवा
1: हम बहुत ठीक हैं
0: तोरो बगल पानी पानी
1: हाँ पानी बरसा था
0: बाप रे बाप फुफ इतनी ठंडा
1: अच्छा
0: नहीं तो दे ठंडाओ करता से माँ
1: हाँ हाँ हाँ
0: एक कुछ दिख बा कोई मरात हो जाता ना
1: हाँ सौ मौसेसो है ना
0: और तोहर लगे सब ठीक ठाक
1: हाँ तोहर यहाँ परिवार
0: चला था धीरे धीरे
1: एक वो गाना मंगत है
0: हाँ बोला
1: ऐ पूर्णिमा फकीरा हाँ। पियागल परदेश
0: पियागल परदेश
1: हाँ भाई गीतवा ऐसनी ही हाँ पिया जला परदेश
0: गीतवा के कर खातिर
1: सब एक्टिंग

0: सबै खाटिन्छ आफै भोजपुरी के
1: शौकीन है कुछ है जसने की
0: हां
1: पियागढ़ प्रदेश है
0: हां हां जमिनी तराली
1: है आली खोज
0: एक
1: जोड़ी की दाल लिप्स
0: आली बाय
1: बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ल
0: अच्छा हां
1: इधर शोभा बॉम्बे मुझसे और कुछ संगत लाइन पे अगर सिमरन जी शांता सुकारी हेलो शांता जी नमस्ते हेलो कैसे शांता जी
2: अच्छा क्या हो कल हमार नहीं लीला कोलवा
1: तो हर राजू के बोली मध्य जोर दले हुआ चाची कमती कर दम की कान निकलाती होता प्लीज हमने हमेशा बोली रहता जब भी टेलीफोन कर बतल टेलीफोन वहाँ जो हर राज्यों के बोली माँ कमती कर दिया सुनन छिदंगी वाला इन पे तबले को समीन अब हेलो भाई सुनन
3: नमस्ते
1: नमस्ते भाई कैसे समाचार
3: अच्छा ठीक है आप ठीक है
1: एकदम ठीक ठाक बोला
3: आप जानते हैं ना मैं फरमाइश करता हूँ एक गीत सुनन वियन के
1: हाँ
3: हाँ अब एक गीत डाल दिया
1: सुनानुयन के कौन गीत
3: नेपोटी को गीत कोनो यो गीत
1: सुनानुयन के आई गीत के कर खातिर
3: अवर पत्नी माला अवर पांच दो बेटी बा नाम दिलाम सुनाम समावर्ती नाम
1: हाँ और अभी रात के तोहर बगल लेता कैसे बा होने
3: आप अभी बारिश
1: ना ठंडा ऐसे हाँ। करता बाप ठंडा हाँ, हड्डी ऐसे ठंडा करता भाई हड्डी हड्डी में ठंडा ही रहता एक दूसरे का ठंडा कर लग बा
3: ठंडा
1: एक घामा दिख बता एक गरम करे कब गरम कर ले रहा अब जगह ठंडा कर रहता
3: थोड़ा
1: ठंडा ठंडा कर रहता पूछा था
3: हाँ
1: हाँ जैसे ठंडा तो थोड़ी चार भैया थोड़ी देर में ओके
3: हाँ धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद सुनने कर ला और एक उस संगत या बा हेलो
2: हाँ बोलो नमस्ते कब
1: हाँ चाची राजवा कमती कर ला चाची
2: कमती कर ली हूँ
1: अच्छा ए तामर जोड़ी चाची मन निमान चाची अगर देखता राजवा कमती कर दिला
2: हाँ नहीं हम कमती ही कर ला जाने लगा हो एक कुछ जोर से राजवा हबिये डाला था
1: हाँ वो खातिर कैसे आज के दिन कैसे बीतल चाची बोले तो दिन कैसे
2: आई पानी पानी कर रे
1: बाल आयु बाबा से नागा से रे पनिया बरसे लगे
2: रे तो जब करेला से जे मिल पावे चाय ने के
1: बाप बात ठंडा के ठट रे बाप
2: ना देश बा ना देश बा
1: और
2: रो तो हर प्रोग्राम तू सुनी ला तो हर चटनी हाँ। तो हर तरकारी बड़ी मजेदार सब मजेदार
1: अच्छा लग
2: सुने ला
1: अच्छा लग रहा सुने के
2: हाँ तो हमार बेटा बोला था माँ हम बोली ये मन सुन भाई ला था पाइन पा जो जो मु पुरे सुने था भी सुना थोई
1: हाँ
2: तनी दूर में बा
1: हाँ तो आज दे प्रोग्राम के इंटरेस्टिंग बनाए ना सिद्धे चीज को खो
2: बहुत जल्द जाने ना बेटा हमार हम नहीं सकेला हाँ कौन सी में डाले हाँ
1: टिकटॉक का करबा चाची
2: आवत रली जात रली सब में
1: तू एमबीसी से बावत लागे ना आवत रह
2: नहीं खाली हम गीतवा गईले हैं
1: एटा
2: एथी में कोविड में हवे मंदिर में तब बोला खूब जोली रहल
1: हां के याद बा के याद बा
2: याद बा ना बेटा
1: एल्बम नहीं निकलला निकलला एल्बम नहीं
2: नहीं हम तो घर से गईले रही
1: हाँ हाँ क्या याद बा
2: हाँ
1: हम जानते
2: हैं कोविड रहा
1: कोविड बाप देखो कोविड सब लोग बंद कर रहे बाप ऐसे प्रॉब्लम होता है
2: तो हम तब राजो में सुनने बोला था जेकर खुशी जो दी एगो गीत हो किस्सा हो तब इतना हम उसे गईले तब मिला खूब जोली रहा बहुत जोली
1: सब कोई खुशी होगा चाहती तो अलावा सुन के सब कोई गद गद हो गए और अभी कौन गीत सुन बचाची बोले थे
2: ठीक है सुना लो यन के
1: कौन की था
2: घर में कदुआ रोटी बाहर में नहीं घर में लंबा हाँ कदुआ रोटी बाहर में लंबा धोती
1: सुना लो यन घर में
2: की गीत
1: हम जानते हैं

0: खाली
1: खोद के
0: क्या?
1: चला दियो अवसर के खातिर गीतवा मांगे थे वह।
0: हाँ हम गीतवा मांगे सब हमर परिवार के
1: और सब परिवार लोग खातिर।
0: हाँ
1: अरे बहुत खुशी से चाची सुने करला ऐसे ही इनके साथ देते रहिए।
0: हम रोज तोहर प्रोग्राम सुनी ला।
1: अच्छा प्रोग्राम अच्छा लगा एकदम एकदम चकाचक।
0: सकारी बोले ला चटनी बोले ला चिल में के पिसल चटनी।
1: बहुत धन्यवाद चाची आली। हाँ
0: हम खुश रह ला खाई के चटनी।
1: हाँ चाची का कर आली बाय आली बहुत धन्यवाद। तही रहन के चाची जुन बहुत प्यार से इनके सुनने करन का बोला ली न एमी लीला एक एक गो नंबर बा चाची माफ करिया एक गो नी में और बा जगते से बोला सर कि एक गो नी में और डाल दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमने की सकी टेलीफोन करे लोगों संग दे लाइन पर कुछ मिल जा। हेलो हेलो हेलो जी अभी आपको सभी लोग सुन रहे हैं। आफिज कहाँ से है आप?
2: हम लवेनिया से।
1: हाँ बोलो हैप्पी बर्थडे बोला था तो जन्मदिन के अवसर पर दे मना प्यार आशीर्वाद। हाँ तो अक्सर तोहर नाम आवेला ढेर कोई तोहर गीत तोहर का गीत मांग रहे हैं।
2: गुड मॉर्निंग आई लव यू।
1: कौन सुनते हैं? कौन सुनते हैं?
2: सलाम अलैकुम
1: विष्णु हरे नै सलाम वालेकुम नमस्ते बोंजू हाय हा गीत आले फिर तो गीत डाले से फिकर नहीं करिए ठीक बा। तो चला अब गीत से बाग टू बाग दू गाना एगो पूर्णिमा फकीरा गीत मांगले शोभा और एक जना मांगले आरगो गीत तो बाग टू बाग दू गीत सुनब जा एगो सुना नुयन के एगो पूर्णिमा फकीरा के। तो चला फकीरा पूर्णिमा फकीरा गीत पहले मोरे फुलिया कर बात सुन के बजा बोल सुनब जा बाग टू बाग दू गाना।

दुनिया बा चारों बगल गोल और हमने के जो देश है मॉरिशस से गो स्वर्ग जैसा देश है बरिये जोरी बा हमने के देश असल में लिखल जाए तो मॉरिशस से गो देश नहीं है हिंद महासागर के गो छोटा सन टापू है छोटा सन डॉट है और मॉरिशस के चारों ओर पानी ही पानी और दुनिया भर से पर्यटक लगावेरा मॉरिशस के भ्रमण कर बोलन से ए उपेई ब्याह जोरी जो हाँ हमने के पे बरिये जोड़ी बा बहुजातीय देश फिर हरियाली ही हरियाली और यहाँ के समुंदर यहाँ के बालू यहाँ के घाम यहाँ के मौसम आ हा हा तो हमने की देश जो है बेशक यहाँ पर इतना जोड़ी देश है कि बॉलीवुड से देखो यावे यहाँ पर शूटिंग करे जैसे फिल्म हम के शूटिंग हो रहा फिल्म साउथन के शूटिंग हो रहा कुछ कुछ होता है जैसे फिल्म के शूटिंग हो रहा यहाँ पर मॉरिशस में तो बॉलीवुड से भी लोग आवेदन से इतना हमने के देश के इतना जोड़ी बा तो यहाँ पर लैंडस्केप वगैरह खातिर आवेदन से यहाँ फिल्म ऑपरी करे तगला कि मॉरिशस देश निराबा त्रिलो गंगा की गई रहे वन है कि चलावत इस हमने बहुत बहुत प्यार के साथ हरियाणा जी के नाम आप फोन फेनिक से बेन जलीला साइदा जिया दरकर सब परिवार के नाम और है चली आशा जानू के नाम आप रहलन को तेज मामा कुमारी फिर शुभम दिद्यारती जीजा जी और सब जानू परिवार के नाम और रात की जीना को भी उनकी सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो

मनोरंजन पर है गीत तोहरो नाम प्रताप के उसका बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम हिरीश नारायण हेरन मिडलैंड्स तो चले सुने त्रिरोग गंगा के गावल गीत मॉरिशस देश निरालावा

हर दिन सास बहु के रिश्ता है बहुत ही अनोखा रिश्ता रहेला। सास के मनिय बात बात पर बहू के ताना देगे। बहू चाहे कितना भी अच्छा रही पर सास के चेहला कोनो न कोनो बात के लेके बहू के कुछ न कुछ बोले के। और जो आज के बहू है सास के मुंह तो जवाब देवेला है। तो सास बहू के लड़ाई अभी से नहीं सदियों से होता, जब रामायण के रिपोर्ट से महाभारत के समय से ऐ सास बहू के जो रिश्ता है। अब सास जो है उस चेला की बहू जो नगर बेटा के चोरी कर लेलक और जो बहू है वो सोचेला कि छोकरा खाली पर माँ के बात सुनेला। तही में लड़ाई झगड़ा होने लगेला। अब बेचारा दुल्हा का करी माँ के बात सुनी तब पत्नी नाराज़ हो जाए, पत्नी के बात सुनी तब माँ नाराज़ हो जाए। तो ऐसे में कुछ है करे

ऐसे में हम थोड़ा गुस्सा दे। जब माँ थोड़े से कौनसी बोली तो माँ की बात लेके अपन पत्नी से नहीं बोलिया, और जब पत्नी को न बात बोली तो अपन माँ से नहीं बोलिया। ये खाते जब जब नहीं बतो है कमान जोरी से करबा तो घर में महाभारत नहीं हुई। और अगला गीत कृष्ण जी के नाम, उनकर पत्नी आशा और उनकर सब परिवार के नाम, संजय बिहारी की उसे पत्नी सुरेखा और सब

0: continuous music.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: रात के 10 बजे पर टू सुनते हुए रेडियो मॉर्शस एएम मोड पर और रेडियो मनोरंजन एफएम मोड पर 94.96.98.2 एफएम पर एमबीसी के दुगु चैनल और वह रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस और प्रताप सिंह मिक्स भोजपुरी डर का कार्यक्रम और अगला गीत चार दिन की जिंदगी बा है गीत चली करुणा खातिर हेलो करुणा है गीत केशव नत्तू के नाम यश अश्विन मारी नेल जेलिन इंद्रानी लोनली फिर एक गीत चली शर्मिला विरार अनित्यानंद को क्वीन मिलियनेयर अश्विन अनि आई

सीताराम, नाचा, आलिन फूल, रोशनी, निर्मल रमन, कवि कविराज, असमद, गोहिम, फिर उमा, फुलचन, एडो फबरीना और हे गीत चली एडो फबरीना और राघवेन शिवरम केन दुखिया केम शिरीन राम जोन हेलो निशा नायक है गीतरो नाम रोशन साहब फिर नूश और फिर हवन सिमवन वेदिनो और फिरोजा ये सब संगत हमने देखा था टिकटॉक पेज पर और ढेर कोई हमके टिकटॉक पेज पर फॉलो करा था ढेर को रेडियो पर सुना था फिरोजा भी टिकटॉक पर आला वन हाय फिरोजा कैसे समाचार अगला की तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ चार दिन के जिंदगी सच्ची के संगत यारो है चार दिन के जिंदगी है फिर काज नहीं कौनची हो कौनची नहीं फिर कौन बात की घमंड कोई पैसा की घमंड करेरा कोई अपन सौंदर्य की घमंड करेरा है घमंड चुना बहुत बुरा चीज़ है रावण ने कहा आदमी के घमंड नहीं चलता हमने कौन चीज़ ऐसा इतना घमंड काहे छना करे के मिलो ने गीत मांगा था ओकर माता जी के नाम इंद्रानी बिहारी और सब परिवार के नाम जी भी है गीत और नाम और गीत खासम खास फिरोजा खाते जो बहुत प्यार से हमने की लिखा था टिकटॉक पर और सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर

रात के 10:06 हुआ था और अब थोड़ा सुन बॉलीवुड न्यूज़ तो की सुनाओ जा। हाल ही में आमिर खान जो है फिर से शादी कर लन, और बेशक आमिर खान जो है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हवंजा और ओकर जिंदगी में ढेर मना शादी होल बा, और वो अपन जिंदगी में दो बार शादी कर ले रहा। पहला शादी रीना दत्ता से होल, ओकर बाद किरण राव से शादी होल। दोनों रिश्ता में समय के साथ बदलाव आल, और बाकी आमिर खान हमेशा अपन परिवार और निजी जिंदगी के समान देत आल बा। और शादी के बंधन जुन है तो हाई बॉलीवुड लोग खातिर ए लोग खातिर बुझा लगे मजाक कह कि एक कुछ शादी करे रहन सा और फिर शादी नहीं चले रहा तो फिर से कोशिश करें सा शादी करे के, पर एक जन शादी को लॉटरी है सब कोई के नहीं मिल पाए तो जैसे मिलल बा तो अच्छी तरह से। पर सुनो के बाद कि आमिर खान की शादी शुदा जिंदगी अच्छी तरह से नहीं चलता, वो खातिर ओकरा पर और एगो शादी करेगी। तो अगला गीत बड़ी प्यारा सन गीत है उरी उरी, विश्वानी जी पाए गीतवा कहले हवन उरी उरी महिमा। और गीत चली खासम खास सुनीता कदारू के नाम, रागिनी बुधुआ, बाबिता, दिनेश यादव, आयशा और चांदनी, अनिता लाल जी, वंदना और उषा, संयोगिता, रामा कांजा, सुबुल, सुशील, रिशन, गीता देवी रागी, पूजा, उमिला तहालू और माला भी बहुत प्यार से उनके साथ देवतवन, थैंक यू। अक्षय भैया कैसे अक्षय जी और आयशा भी, तो चल एक साथ सुनब जाए गीत ओरी ओरी मामा।

0: बिल्कुल संगत या लाइन पे बात कर सी मिनबजा हेलो नमस्ते
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी
0: के हवजा
1: श्रीमती
0: सुयाक से कैसे समाचार सब ठीक है। अगला कौन गीत सुनबा?
1: संतोष महादेव का गीतवा डाल दिया।
0: कौन गीत?
1: मरमिट में चढ़ल गरम पानी।
0: मरमिट में चढ़ल बा गरम पानी।
1: गरम पानी चढ़ल बा भाई आल बा इटाली से। भौजाई आल बा, भाई आल बा, भतीजी आल बा।
0: अभी कितना दिन रहन से मोरिस में?
1: अभी तो जात हवन सर, दो तीन समय की।
0: ओके ओके।
1: महेश परिवार है ये गीत डाल दिया और सब महेश परिवार सब चंद्रमुनि परिवार खातिर।
0: ओके।
1: सब एमबीसी के स्टाफ लोग खातिर, सब जितना काम कर रहा लोग सब कोई खातिर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चाची, बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो प्रताप जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, के हवा जा?
2: मैं मनु।
0: हाँ मनु
2: बता। मैं बेटा काम करता बता तब गई लाली देख ला दुख लाती गई लाली
0: लाली नो मिल गया देख ला ना।
2: हाँ लाली नो मिल गया। हाँ कैसे सब करो एक बार?
0: हाँ चलो था तो हर बगल सब ठीक
2: था। भगवान के छोसे चला था धीरे धीरे। हमें को गीत मांगा राधा के सोभेला भर मांग सिंदूरवा कितना बजावे शुक्रवार के कृष्णा जन्माष्टमी बा।
0: हाँ
2: तो हाई कृष्णा के को गीत डाल दिया हमार नातिन, हमार नातिन बा किया और हमार नाती बा मिहान आ सब परिवार खातिर।
0: हाँ
2: कृष्णा जन्माष्टमी सब कोई के
0: अभिनंदन हो। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करला।
2: चलो के सब कोई के बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद। ओके शुभ रात्रि। तो चल से मरमीट में चढ़ल बा गरम पानी और एगो संगत या बामिले जा शोभा काठोबोन से। हेलो शोभा।
3: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे समाचार?
3: ठीक ठीक, आप ठीक है?
0: सब ठीक ठाक। हाँ और बोला अगला गीत के खातिर?
3: सब जितना कोई रात के काम करता जितना कोई सुनाता सब में जितना
0: सब कोई खाते
3: सुना
0: नयन की ललका छिड़ैया चार दिन से थोड़े समय में। ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा हमने से बात कर ला। और मरमित में चढ़ल बा गर्म पानी गीत शादी से रगिनी बुधवा के नाम बबीता दिनेश यादव डिम्पल बुधराम अक्षय सिद्दीक विराज प्रणेश भक्ता अनिजा।

Mohammed, Aryan, Priya, Ragini, Fair Savior Angel, Davi, Yusuf, Sil Milk, Rajavin Govind, Deepchan, Lalala, Sadna Algu, Adya Gokul, Ram, Kevin Vaidalingam, Haigichali, Jean-Alfred, Suman Rai, or Haigit Nitish Burton, Nitish Burton, or Haigit McVie, Bunny, Dinesh Hari, Sairun, or Haigit Ravati Sarina, Sant Baksh, or Kasam Khas, Sandhya Brinda, Soti Jitu, Haigit Chali, Rani Jai Suri Khatirbi, साथ में एंजो लेनो है नाम उमा शिनी स्वीति योवना खातिर भी फिर है गीत चलावते इस मिसी खातिर और है गीत चली ज्योति चमन जी बहुत प्यार से हमने के साथ देवथवन बहुत बहुत धन्यवाद कृषि फिर है गीत चली रुशन सुभाष मोती है गीत नाम नोआ माधवी भिषव जवाही और है गीत चलावस रिशन कृष्णी और वीआर है गीत हरो नाम दिव्या एम आर ए और आर वी आर यह रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन एम बी सी के दुगो रेडियो चैनल तो जितना कोई अभी हमने सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर टिकटॉक पेज पर हमने देखा था तो है गीत लोग के नाम मरमीत में चढ़ल बा गरम पानी अब मरमी पे कौन सी पकता अंगे तो बुझा था लिसुफले आलू मसाला पकता या फिर बैगन आलू मसाला खूब डबका था मैं गर्मा गर्म पूरी और कोतमीली की चटनी आ हा क्या बात है

रात के 10:26 होता, रात के 10:21 होता। और अब हमने थोड़ा सुना जाएगा कहानी। कहानी के शीर्षक है कंजूस पति। तो रामदीन एगो बहुत बड़ा कंजूस आदमी रहल। वो पैसा खर्च करे के डरत रहल और जैसे ही पैसा खर्च हो तो जैसे ओकर जान निकल जाता। रामदीन के ओकर पत्नी फूलमती बहुत परेशान रहे। एक दिन फूलमती बोललक और पति से, ए जी घर में सब्जी नहीं नहीं बा, जा सब्जी बाजार से सब्जी ले आवो। रामदीन तुरंत बोलक, सब्जी घर में अचार तो बा। फूलमती बोलक, अचार तो रोज रोज के खा के थक गल। रामदीन मुस्कुरा के बोलक, तो आज अचार के डब्बा दू रख के खाइया, स्वाद बदल जाए। फूलमती माथा पकड़ के हिल गल। कुछ दिन बाद रामदीन के जन्मदिन आल। फूलमती सोचलक कि आज तो वो जरूर कुछ खर्च करी। वो बोलक, ए जी आज तोहर जन्मदिन बा, कुछ अच्छा खाए के मन करा था। रामदीन ने घड़ी देख के बोलक, चला होटल के सामने से घूम के आयला सा खुशबू सूंघ के पेट भर जाए। फूलमती जो है गुस्सा, ओकर गुस्सा सातवा आसमान पहुँच गल। अगला दिन रामदीन के दोस्त ओकरा घरे आयल। दोस्त बोलक, रामदीन चला चाय पिए चला हो। रामदीन धीरे से बोलक, तू चाय पीब तोरा सामने बैठा के गर्माहट महसूस करब। दोस्त हंसते हंसते लोत प्रोत हो गल। एक दिन रामदीन बाजार गल तो रास्ता में ओकरा एगो बूढ़ा आदमी मिलल। बूढ़ा बोलक, बेटा भगवान के नाम पर कुछ पैसा दे दो। रामदीन जेब टटोल के बोलक, बाबा पैसा तो नहीं बाप, बाकी एगो बढ़िया सलाह दे तोहरा। बूढ़ा पूछला, कौन सलाह देबा? रामदीन बोलक, अगली बार जब केहू से पैसा मंगब तब पहले ये देख ल कि वो आदमी हम जैसे कंजूस बा कि नहीं। बूढ़ा माता पीट के हंसे लगल। पर लौटला पर फूलमती पूछलक, आज बाजार से कहाँ आनला हो? रामदीन घर से जेब में से एगो चीज निकाल के दिखैलक। फूलमती पूछलक, ई का है? रामदीन बोलक, बाजार में मुफ्त में मिलल मुस्कान। फूलमती हंस पड़ल, रोवा किससे शादी करके हमार जिंदगी में हंसी तो मुफ्त में मिलेला, बाकी खर्चा करे के मौका कबू ना मिलेला। रामदीन मुस्कुरा के बोलक, देखला शादी में भी फायदा ही फायदा। फूलमती हंसते हंसते बोलक, हे भगवान, ये आदमी कंजूस ना कंजूस के ब्रांड एम्बेसडर है। कहानी की सीख है कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी आदमी के पैसा तो बचा सकेला, बाकी रिश्तेदार या दोस्त ज़रूर गंवा देवेला। तो देखिए तू कंजूस नहीं बनिया है, थोड़ा लगे पैसा बात पैसा के सही इस्तेमाल करिया, ठीक बा? ऐसे में अगला गीत चली राधा मोरे अमाई किशोर खिमिया गेले वने गीतवा। और है गीत चली सिमी श्रीराम के नाम वनिता के नाम दियू है गीतरों का तेर। आशा रागिनी नगामत रीता जानबीब रोकस्टर ग्रास और लेस सिमी श्रीराम अक्षय सीता मोती शमिला दिनेश हरी गोकुल जानकी दुबराज वृंदा कालू रोजाना बुदन ललिता माया राम जग रघुमाला फ्लमी गोगल और राविश खतीर। तो चल एक साथ सुनब जा है गीत मोरे अमाई।

सब कोई बोले लंचा कब ने पिया के मामा अब ने पिया पर पीते रहे लंचा आई पिया के लट ले जब लग जाए तो बाप ही पिया के लट नहीं छुटेला। और इस जिंदगी के बारे में का सकब जा बोले चोला के ठिकाने बाज है सब काल के रही को के नहीं कल हो ना हो। और जिंदगी के बारे में सोचब तो सोचते रह जेब कबू कबू लाभी हम के दिखाऊँ सहते करा दे बेला जो चीज नया तान कर ऊ हो जाला। फिर भी भगवान के धन्यवाद बोलिए कि सकत ऐसे जिए हम के लड़का हम के औरत हम के पति लड़का सबको ये हम के आँख के सामने बा यही सबसे बड़ा बात है। तो ये जिंदगी जो है एक नहीं चाह ढेर सही ले गए सही ले बता कैसे हुई लग पा जिंदगी से जाता ओके जायदा धीरे धीरे हौले हौले। अगला गीत भी ना भैरव के नाम का घरवाला को दुगो बेटा और सब भैरव परिवार के नाम और है कि तो हमने चलावत तेईस वंदना कुमारी के नाम कर घर वाला और लड़का लोग के नाम साथ में बिना कबू स्वामी मेबक से वन सुरमा दुखित मेबक से रोक सब परिवार के नाम और विश्वानी बाबूला लागोसा सेवन गीत खासम खास तौर खातिर चल एक साथ सुने जिंदगी।

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

संगत लोग हाई सुखे सुख चार सप्ताह के अपनी मना कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार में से एगो है और कृष्ण भगवान की लीला के बारे में जितना भी बोल स कम है कृष्ण जुन है वो बाँसुरी बजैया है और जगत के पालनहार है और माँ देवकी भी है और माँ यशोदा भी और राधा भी प्यार है रुक्मिणी भी प्यार है और कृष्ण भगवान जुन है धेमा राक्षस के बध कर रख जैसे जरासन और धेमना जुन राक्षस लोग के बधोल पूतना जरासन कंस रेखा राक्षस के बध कर कृष्णा और कृष्णा के ओकर नाम ही है कृष्ण मतलब अत्यंत सुख ब्लिस सच्चिदानंद हवन कृष्ण भगवान।

और कृष्ण भगवान के जन्मदिन मनाओ शाही सुख के, और इस्कॉन में भी मनावल जाए, बोनाकई में भी और ढेर मना मंदिर में भी। तो कृष्ण के जन्म रात के हो रहल, और कृष्ण भगवान जो न जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेला तब तो कृष्ण भगवान अवतार लेके आवेला इस दुनिया में धर्म के स्थापना खातिर। और महाभारत में कृष्ण अर्जुन से ढेर कुछ बल्यवन ज्ञान भक्ति और कर्म के बारे में। तो चला जितना भी संगत्या लोग ईश्व के काहम रहें वृद्धारण करें कृष्ण भगवान के भोग लगें कृष्ण भगवान के गुणगान करब जाता सबको की सब कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। हावे पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

संगती आतिश भगीरथी के गे है गैला है गीत के संगे छोड़ के मोरिसवा है गीत संगे भोजपुर का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बज जाए और 11 बजे से सर्वे सुनने पर प्रोग्राम ये प्रोग्राम सुन बचा सुनने पर कार्यक्रम और कर बाद रात के 12 बजे से काफा जिसके 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने और हमने की तरह की मुलाकात यहाँ तक रहा। अब हमने की तरह की मुलाकात हुई शाम के फजर के 6 बजे से 9 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दा और जी प्रताप सिंह से तारुक की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का राइट नाउ इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्त, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक धुन सुनते ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, या कोई पुराना दोस्त, कोई अपना, या फिर वो वक्त जब लाइफ थोड़ी सिंपल हुआ करती थी। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं खूबसूरत यादों के पन्ने पलटेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और मेरा साथ बस यूं ही देते रहे यादों के सफर पर, बिल्कुल इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे दोस्त कहते हैं वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन कुछ पुराने गाने हमें उस वक्त में ज़रूर वापस ले जाते हैं। आज भी जब कोई पुरानी मेलोडी बजती है तो दिल कहता है अरे ये तो मेरी याद है। तो आज की रात उन्हीं यादों के नाम, उन्हीं एहसासों और उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के नाम आप सुन रहे हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

ऐसी मेलोडी जो आपके बचपन का साउंड ट्रैक हुआ करती थी। म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, लेकिन एक पुराना गीत वही फीलिंग वापस ले आते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत याद को जिंदा करते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे आज प्रेजेंट से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उन दिनों में जब एंटरटेनमेंट का मतलब रेडियो कैसेट और रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, जब एक फेवरेट सॉन्ग के लिए पूरा दिन इंतजार होता था, वो सिंप्लिसिटी, वो एक्साइटमेंट और वो म्यूजिक, सब कुछ कितना स्पेशल था ना। तो आज फिर से वही मैजिक महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड गानों के साथ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

0: पनवड़िया तो कन्या
1: बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस

वैसे दोस्तों, कभी कभी एक पुराना गाना सुन के हम स्माइल कर देते हैं बिना किसी रीजन के, शायद क्योंकि उस गाने के साथ एक ब्यूटीफुल मेमोरी जुड़ी होती है। शायद कोई ऐसा इंसान जिसे हमने कभी बहुत अपना माना था, या फिर बस वो वक्त ही था इतना खूबसूरत। आज उन्हीं मेमोरीज को दिल से सेलिब्रेट करते हैं आपका अपना नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल जर्नी सिर्फ सुनहरे पल में। गिनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस।

उम्मीद करते हैं कि दिल से आपने इस खूबसूरत शो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मिलने का हम वादा करते हैं एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum. Came to Mauritius.
3: Namaskar.
4: ஷோதரந்தரிக்கு ஹிருதய பூர்வக நமஸ்காரம்.
5: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
6: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
0: Radio Mauritius.
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस.
2: रेडियो मॉरिशस.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: देखो माइके नहीं, तू मत माइके माइके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: हूं लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।